सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:59 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज, इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यह यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है परमेश्वर को समर्पित भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। अब तो शरण तुम्हारी, जग से हारी तुमसे जीती, हे नंदलाल मुरारी, लाज रखो गिरधारी।

भक्ति में ऐसी शक्ति है जो मन को शांति देती है। हरि का नाम जो सच्चे मन से ली उसकी नैया स्वतः ही पार लग जाती है।

अभी तक आप सुन रहे थे परमेश्वर को समर्पित भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज आपने जिन स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी वे थे चित्रा सिंह, अनुराधा पौडवाल, चंद्रु आत्मा और साथी।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज इस कार्यक्रम में विषय है इंसानियत की सीख। आरेख आचार्य भगवान देव का है, वाचन स्वर अंजु पांगती का।
1: जंगल में मीठे पानी की नदी के किनारे एक संत की कुटिया थी। संत के प्रवचन सुनने प्रतिदिन कई भक्त आया करते थे। भक्तगण प्रवचन सुनने के बाद नदी का मीठा जल पीकर लौट जाया करते थे। एक दिन संत की कुटिया पर कोई भी भक्त प्रवचन सुनने न आया, क्योंकि आसमान की बिजलियां चमक रही थी और रुक रुक कर वर्षा हो रही थी। ऐसे माहौल में संत चुपचाप एक आसन पर बैठ भगवान का स्मरण कर रहे थे। तभी घोड़े पर सवार एक डाकू आया।

0: और घोड़े से उतरकर संत को मारने के लिए कुटिया में प्रवेश किया। डाकू का आक्रोश भरा चेहरा देखकर संत मधु मुस्कान के साथ बोले, बंधु तुम मुझे मारना चाहते हो? यदि तुम मुझे मारने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। डाकू ने अकड़ कर पूछा, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? संत मुस्कुराते हुए बोले, इस कुटिया के सामने जो आम का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है उसकी एक छोटी सी शाखा मुझे काट कर ला दो। ये सुनकर डाकू मन ही मन संत पर बहुत हंसा। नाम का संत है लेकिन अक्ल का बिल्कुल मूर्ख है। भला पेड़ की शाखा भी कोई मांगने की चीज है? प्राणदान भी तो मांग सकता था। डाकू ने तुरंत तलवार निकाली और पेड़ की छोटी सी एक शाखा काटकर संत को लाकर दे दी। कटी शाखा को देखकर संत ने डाकू से कहा, प्रिय बंधु तुमने मेरा आधा कार्य तो कर दिया और आधा कार्य और कर दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। इस शाखा को वापस वहीं वृक्ष पर जोड़ आओ। ये सुनकर तो डाकू का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। बोला, बाबा तुम तो निरे पागल हो, भला टूटी हुई शाखा को जोड़ना भी कहीं संभव है? ये तो अब कभी जुड़ ही नहीं सकती, कुछ और मांग लो। अब संत ने हंसते हुए कहा, बंधु मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो, जो तोड़ता है वो कमजोर है और जो जोड़ता है वो शक्तिशाली है। हाँ, अगर अब तुम चाहो तो मुझे जान से खुशी खुशी मार सकते हो, मैं मरने को बिल्कुल तैयार हूँ। संत के मुख से ऐसी बातें सुनकर डाकू घोर सोच में पड़ गया, मैंने तो कितने ही मासूम बच्चों और लोगों को काट डाला, जोड़ तो मैं किसी को भी नहीं सकता। वो संत के चरणों में गिर पड़ा और अपनी करनी पर बहुत पछताने लगा। संत ने डाकू को उठाकर गले से लगाया, उसे क्षमा कर कहा, जाओ आज से इंसानियतों से रिश्ता जोड़ो और जीवन का सही आनंद उठाओ, यही मानव समाज के प्रति सच्ची सेवा और मानवता है। बस उसी दिन से वो बदमाश डाकू सुधर गया और संत का सच्चा शिष्य बन गया।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी इंसानियत की सीख, इस विषय पर विचार आलेख आचार्य भगवान देव का, वाचन स्वर अंजू पांगती का।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीत पद प्रसारण। संगीतकार हैं सतीश भाटिया, गायक स्वर कविता कृष्णमूर्ति का।

सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीदे हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे

अभी तक आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसारण। संगीतकार थे सतीश भाटिया, गायक स्वर कविता कृष्णमूर्ति का था। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारी इस सभा के शेष और सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 8:10 पर हम आपको सुनवाएंगे

विशेष भेंट वार्ता विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर। प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र, उपकुलपति महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन से, इनसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुनील कुमार जोशी। कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। प्रदेश दर्शन, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे। ये कार्यक्रम हम आपको आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनवाएंगे। प्रातः 7 बजे आप सुन सकते हैं कुछ भूले बिसरे गीत। प्रातः 7:31 पर कार्यक्रम ब्रज माधुरी में आज सुनेगा रासलीला। लेखक होंगे स्वामी श्री राम शर्मा और प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की होगी। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि प्रातः 8:30 पर। प्रातः 9 बजे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाएंगे भेंट वार्ता नेत्रदान महादान सावधानी एवं सुझाव, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर एम के तनेजा। भेंट करता होंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आबोहवा आप सुन सकते हैं प्रातः 9:25 पर। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा पर्यावरण जागरूकता में आपकी भूमिका, जानकारी देंगे डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता। गांधी चर्चा आप सुन सकते हैं प्रातः 9:30 पर। प्रातः 9:45 पर हम आपको सुनवाएंगे वार्ता रक्षाबंधन वर्तमान परिपेक्ष में इस पर्व की प्रासंगिकता, वार्ताकार होंगी डॉक्टर दीपा अग्रवाल। संगीत रूपक सुनेगा प्रातः 10 बजे रेशम के धागे, लेखक रवि खंडेलवाल होंगे, प्रस्तुति सुरेश गुप्ता की होगी। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं प्रातः 10:30 पर। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दिन में 11:10 पर। दिन में 12 बजे सुनिएगा श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। अपराह्न 12:30 पर समय रहेगा ब्रज लोकगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे पंडित दामोदर शर्मा। बहनें अपना कार्यक्रम वनिता लोक सुन सकती हैं दिन में 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा रक्षाबंधन, साथ ही साथ विशेष कार्यक्रम सुनिएगा अनोखा बंधन रक्षाबंधन, प्रस्तुति सहयोग उषा पांडे और खुशबू मिश्रा का होगा। अपराह्न 2:30 पर आप सुन सकते हैं एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। अपराह्न 3 होगा हमारी प्रथम सभा का समापन, सांध्यकालीन सभा शुरू करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी के साथ। इस कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और विश्व संस्कृति दिवस। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता 30 त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा और हमारी जागरूकता, जानकारी देंगे श्री जतिन कुमार सिंह। ब्रज साहित्य कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:15 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं हास्य वार्ता जब हम पहली बार बूरो खाए भी गए, प्रस्तुत करेंगे कोमल प्रसाद शर्मा। संध्या 6:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे बाह्य परिजीवियों से पशु सुरक्षा और किसान क्रेडिट कार्ड। संध्या वंदन ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:30 पर। कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा संध्या 7:31 पर। रात्रि 8:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इस कार्यक्रम में सुनिएगा

0: विदुषी कमला बोस का ख्याल गायन। रात्रि 11 बजे होंगे हिंदी समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज विषय है साइलेज बनाने का तरीका। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: आज हम आपको साइलेज बनाने के बारे में बताएंगे। साइलेज जो बनाया जाता है, ये गीली अवस्था में चारे को सुरक्षित रखा जाता है, और जिस मौसम में आपके पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और बेमौसम के लिए उस चारे को हमको सुरक्षित रखना होता है, और इसको एक साइलेज विधि के माध्यम से ही हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, और जिससे कि बेमौसम में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध करा करके उनसे अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकें। तो हरे चारे को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है साइलेज बनाना। किन्हीं कारणों से जब हे बनाया जाना संभव नहीं होता है तब साइलेज बनाया जा सकता है। अधिकतर साइलेज हरी मक्का, ज्वार, चरी तथा जई जैसे हरे चारों की ही बनाई जाती है, जिसमें अन्य हरे चारे जैसे कि लोबिया, बरसीम की तुलना में कम नमी होती है, यानी कि शुष्क पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। साइलेज बनाने के लिए जमीन में गड्ढे खोदे जाते हैं। इन गड्ढों का साइज इस बात पर निर्भर करता है कि साइलेज बनाने के लिए हरा चारा कितनी मात्रा में उपलब्ध है तथा पशुओं की संख्या कितनी है। इन गड्ढों को साइलेज पिट कहते हैं। 1 घन मीटर के गड्ढे में करीब 3 से 3.5 क्विंटल कटा हुआ चारा भरा जा सकता है। हरा चारा जिसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा 28 से 40% होती है, कुट्टी की तरह काट लिया जाता है, और हरे चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कम होने की स्थिति में चारे को काट करके 24 घंटे के लिए खेत में खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे कि नमी की मात्रा कम हो जाती है। अच्छी गुणवत्ता की साइलेज बनाने के लिए हरे चारे की भली प्रकार कुट्टी काट लेनी चाहिए। कुट्टी का साइज करीब 1 इंच होना अति आवश्यक है। इस कुट्टी को पहले से तैयार किए गए गड्ढे यानी कि साइलेज पिट में भर दिया जाता है और अच्छी तरह से पैक किया जाता है। अच्छा पैक करने से हमारा अभिप्राय यह है कि उसके ऊपर कूद कूद करके अच्छी तरह उसको दबा दिया जाए, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाए। जब साइलोपिट जो है उसमें हरे चारे का लेबल जमीन के धरातल से करीब 1 फुट ऊंचा हो जाए, तब उस पर एक मोटा प्लास्टिक सीट ढक दिया जाता है और किनारों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती है, जिससे कि हवा का आवागमन बंद हो जाए, या यूं कहिए कि गड्ढा सील बंद हो जाए। इस अवस्था में करीब 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है इसको, और साइलेज बन जाने के बाद ऊपर बिछाई गई प्लास्टिक को एक कोने से हटा करके जरूरत के अनुसार साइलेज को निकाला जाता है। अच्छी साइलेज का रंग सुनहरे रंग का होता है, सुनहरा कुछ हरापन लिए हुए होता है, और उसमें एक मीठी सुगंध आती है। पशु ऐसी साइलेज को बहुत ही रुचि के साथ खाना पसंद करते हैं।
0: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में विषय था साइलेज बनाने का तरीका। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म काजल के इस गीत के साथ। आवाज़ आशा भोसले की थी, संगीत रवि का, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

शमशाद बेगम और मुकेश की आवाज़ों में आपने सुना ये गीत फिल्म मेला से। गीत रचना शकील बदायूनी की थी, संगीत नौशाद का।

कार्यक्रम में आ गया। ये सुनते हैं जौहराबाई अम्बालाबाई को, फिल्म रतन में। गीत रचना डी एन मधोक की, संगीत नौशाद का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपने सुना सुरैया की आवाज में ये गीत फिल्म अफसर से। इस गीत को लिखा नरेंद्र शर्मा ने, संगीत एस डी बर्मन का था। और इसी के साथ भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 150 केंद्रों सहित

देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से किया खेलो इंडिया संवाद, कहा सरकार आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज, प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों और सहायता चाहने वालों के लिए शुरू की हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 107 स्टार्टअप्स और 9 इंक्यूबेटर्स को सौंपी प्रोत्साहन राशि, कहा देश के अंदर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था वाला है उत्तर प्रदेश। और पारंपरिक हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कल खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया था। राजधानी लखनऊ के 9 अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के अलावा प्रदेश के सभी 75 जिलों में 150 से अधिक केंद्रों पर इसका आयोजन किया गया। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद उपस्थित युवाओं से संवाद किया और उन्हें खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उधर आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाना आवश्यक है। बरेली के रूहेलखंड विश्वविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहा

भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कल बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे या सहायता चाहने वालों के लिए हेल्पलाइन 1070 शुरू की है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। नेपाल में फंसे प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ने राहत और बचाव टीमों को सक्रिय किया है। बचाव अभियान के लिए एसडीआरएफ की एक प्लाटून भेजी गई है। इसके अलावा पीएसी की 26वीं बटालियन के 22 जवानों को भी नेपाल भेजा गया है। राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम से सीमावर्ती जिलों के हालात पर नजर रखी जा रही है। उधर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि प्रदेश के गोरखपुर जिले में बल की एक टीम तैनात की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्टार्टअप नीति के तहत 107 स्टार्टअप्स को 3,42,00,000 रुपए से अधिक और 9 इंक्यूबेटर्स को 1,79,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 पुस्तिका का विमोचन और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ भी हुआ। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था वाला राज्य है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में भूमि अधिग्रहण तथा निविदा और विभागीय समन्वय से जुड़े लंबित कार्यों का तत्काल समाधान करके सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज पारंपरिक हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने इस पवित्र पर्व पर अपनी सनातन सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पित होने की अपील की है। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को इस साल भी निःशुल्क बस यात्रा की सौगात दी है। महिला यात्री कल से इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं। महिलाओं को कल मध्यरात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और नगरीय बसों में एक सहयात्री के साथ निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री कल बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने कल नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से किया खेलो इंडिया संवाद। कहा, सरकार आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों और सहायता चाहने वालों के लिए शुरू की हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 107 स्टार्टअप्स और 9 इंक्यूबेटर्स को सौंपी प्रोत्साहन राशि। कहा, देश के अंदर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था वाला है उत्तर प्रदेश। और पारंपरिक हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

तक न पहुंच जाओ जिनमें अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

भैया, ब्रज की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ संस्कृति केवल परंपरा ना है बल्कि जीवन का उत्सव है। यहाँ की माटी में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृतियाँ, राधा कृष्ण को प्रेम और बाकी मधुरता संग ही लोक जीवन की सहज आत्मीयता आज भी जीवंत है। ब्रज की रासलीला, लोकगीत, भजन, होली, झूले और पारंपरिक उत्सव जाकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। ब्रज की बोली की मिठास, यहाँ के लोकगीतों की सुरम्यता और पर्व त्योहार इनकी एक रंगीन और अनोखी छटा देखने को मिले है। सांस्कृतिक धरतियों में स्थान देती वही जी ब्रज की धरती हमेशा ही स्मरणीय है, अनुकरणीय है। कण कण में श्री कृष्ण को वास है, स्वर में राधा है और हर उत्सव में प्रेम की अनुभूति है। और जय अनुभूति को हम आपको आनंद करवाए रहे हैं। आज हम आपको सुनवाए रहे हैं रासलीला, जाके अंतर्गत सुनिए गौरांग लीला। लेखक हैं स्वामी राम स्वरूप शर्मा, प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की।

0: रामदासों की जय।
1: अरे रामदास जी, कहो कहां से आ रहे हो?
0: अरे भैया कृष्णदास, बड़े दिनों में मिले हो। अरे हमारी जो पूछ रहे हो, हम कहां से आ रहे हैं? हम गए बद्रीनाथ केदारनाथ, चारों धामों में भ्रमण करते हुए आपके इस वृंदावन में आए हैं, परंतु वृंदावन में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आनंद हमारे रामलला के दरबार में है, अयोध्या में है, वह आनंद तीनों लोकों में भी नहीं है।
1: कैसी बात करो हो रामदास जी, अयोध्या में भलो कहां आनंद, जो आनंद श्रीधाम वृंदावन में है वह त्रिलोकी में कहूं नहीं है। चाहे द्वारिका ही आओ, बद्रीनाथ ही आओ, जगन्नाथ जी ही आओ, कहूं आनंद नहीं आवे है। कारण कि भगवान श्री कृष्ण समस्त देवतान में बड़े हैं, यासो उनको जो निज धाम है श्रीधाम वृंदावन, वह सबसे बड़ो है।
0: अरे कृष्णदास जी, क्यों प्रशंसा कर रहे हो अपने कृष्ण भगवान की? तुम्हारे कृष्ण भगवान है चोर जार शिखामणि, चोरों के सरदार हैं सरदार। अब बताइए, चोर की नगरी है, इसमें आनंद कहाँ?

0: आनंद तो हमारे अयोध्या धाम में देखो, आह कितना आनंद आता है। और ये आप मान लो कि आपके कृष्ण भगवान से हमारे राम लला बड़े हैं, क्योंकि वो राजा हैं।
1: कैसे बड़े हैं हमें बताओ तो सही, हम तो सुने कैसे बड़े हैं।

0: आपके कृष्ण भगवान से हमारे राम जी बड़े हैं। देखो हमारे राम जी का धनुष बड़ा, हमारे राम जी का मुकुट बड़ा, अब बताइए आपके भगवान पे क्या? वो एक बेलांद की बसुरिया है और एक मोर पंख लगा लिया सर में, बस अब बताइए कैसे बड़े हो जाएंगे?
1: कोई प्रमाणिक बात करो।
0: हाँ प्रमाणिक।

0: देखो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारे कृष्ण कन्हैया बड़े हैं, यहाँ धनुष की बात ना है रही, अस्त्र शस्त्र की बात थोड़ी है रही है, बात तो ये है रही है कि बड़े कौन हैं। आप कोई प्रमाण दो जासो पता चले कि आपके राम जी कैसे बड़े हैं।
1: अरे भैया कृष्णदास, प्रमाण तो आपके सामने है।

0: देखो भैया कृष्णदास, तुम्हारे भगवान का जो अवतार हुआ है वह हुआ है चंद्रवंश में, और हमारे राम जी का जो अवतार हुआ है वह हुआ है सूर्यवंश में। अब आप ही देख लो, जब हमारे सूनारायण समस्त कलाओं के सहित जब उदय होते हैं तो तुम्हारे चंद्रदेव वहां से भाग जाते हैं, यानी अपने को छुपा लेते हैं। हमारे सूर्यनारायण के सामने आपके चंद्रदेव का जो मुख है वो मलिन हो जाता है, दिखाई भी नहीं पड़ते कहाँ है। अब बतलाइए, जिसको देख करके भाग जाए वह बड़ा होता है, बताओ। इसलिए हमारे राम जी बड़े हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की।
1: अरे सूर्य बन

0: देखो रामदास जी, आपके भगवान राम सूर्य वंश में उत्पन्न भए हैं, तो जब सूर्य भगवान उदय हो हैं, तो अपने तेज के द्वारा समस्त प्रकृति को जराए बराए के भस्म कर दे हैं। परंतु जब हमारे चंद्र भगवान 16 कलान सहित उदय हो हैं, तो जो जरी भई सृष्टि है वाकु शीतलता प्रदान करके नवीन जीवन प्रदान कर दे है। अब आप ही विचार करो, जो काऊ को नष्ट करे वह बड़ो हुए कि जो काऊ को नवीन जीवन प्रदान करे वह बड़ो हुए? तो देखो, बड़ो तो वही हो है जो काऊ को नवीन जीवन प्रदान करे।
1: और सुनो,
0: सुनाओ।
2: अरे कृष्ण जा

0: भैया कृष्णदास।
1: हाँ रामदास जी,
0: एक बात बतलाओ।
1: पूछो।
0: आपके भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था?

0: मथुरापुरी में भयो हो कंस के कारागार में।
1: कारागार में जेल में?
0: हाँ।
1: देखो आपके भगवान का जन्म तो पीछे हुआ, जन्म लेने से पहले अपने माता पिता बसदेव देवकी को जेल में ठूंस दिया और वहां जन्म लिया। अरे प्रत्येक माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, होते कि नहीं? लेकिन आपके भगवान की जो माता पिता है ना बसदेव देव की, वे प्रसन्न नहीं हुए और दुखी हो गए कि पहले से हम इस जेल में पड़े हैं और इस बच्चे ने जन्म और ले लिया, अब इसको कहाँ छुपाएं, और जब कंस सुनेगा तो इसको समाप्त कर देगा। इस डर से, इस भय से वो अर्धरात्रि के समय मूसलधार वर्षा में एक सूप में डाल करके तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण को छुपा करके आए उस नंद के घर। अब बतलाइए ये तुम्हारे भगवान ने जन्म लिया और जिस समय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम ने जन्म लिया, अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई और जो याचक जिस इच्छा को लेकर के आया उसको वही वस्तु प्रदान करके उसको संतुष्ट करके महाराज दशरथ ने अपने द्वार से विदा किया। ऐसी बधाई हुई, ऐसी बधाई, ओहो कुछ मत पूछो, बड़ा आनंद आया। अरे जिसके जन्म को लेकर के माता पिता दुखी हो वह बड़ा होता है, जिसके जन्म को लेकर बधाई मनती है माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं वह बड़ा होता है। इसलिए हमारे राजा राम बड़े हैं। बोलो राजा राम चंद्र की
2: जय।
0: देखो रामदास जी,
2: अरे

0: देखो रामदास जी, आपके भगवान राम ने घर में ही जन्म ले लियो, घर में ही बधाई बट गई, काउ बाहर वारे पतो ही नहीं चलो कि कहा भयो। पर हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जासमें अवतार ग्रहण कियो तो माता पिता को तो आनंद प्रदान कियो और वहां गोकुल में जाए नंद बाबा यशोदा मैया को आनंद प्रदान कियो, समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कियो, त्रिलोकी में विदित है गयो कि भगवान श्री कृष्ण को जन्म है गयो और आपके भगवान राम है कायर, कायर की तरह घर में जन्म ले लियो, दुबक के बैठ गए। परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण ने सूरवीर, सूरवीरन की तरह वह कंस के कारागार को तोड़ते भाई और जाके गोकुल गांव पहुंच गए। या सो हमारे कृष्ण कन्हैया बड़े हैं, बोल कन्हैया लाल की जय।
1: अरे क्या कह रहे हो कृष्णदास, क्या हमारे राम जी कायर हैं और आपके कृष्ण जी सूरवीर हैं? अरे सूरवीर कहीं जेल के तारों को नहीं तोड़ते, हाँ चोर होते चोर, चोर डाकू तोड़ते जेलों को तो ए? अरे सूरवीर कहाँ के सूरवीर है?
2: और तो

0: भैया देखो कृष्णदास, तुम्हारे जो कृष्ण भगवान है ना, वो एक प्रजा है, यानी राजा कंस की रैयत है, प्रजा है, हैं? ये बात सत्य है?
1: सत्य है।
0: और हमारे प्रभु श्री राम वो एक राजा है, अयोध्या के राजा है। अभी तुम ही लगा लो, अपनी बुद्धि पर जोड़ दो कि राजा बड़ा होता है या प्रजा बड़ी होती है। इसलिए हमारे राजा राम बड़े हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय।

0: पुरी के राजा हैं, परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण के चरणन की पूजा तो 33 कोट देवतान को राजा जो इंद्र है ना वानेहू करी ही। यासो हमारे भगवान श्री कृष्ण केवल या मृत्यु लोक के नहीं अपितु वा देवलोक के हूँ राजा हैं। यासो हमारे कृष्ण कन्हैया बड़े हैं, क्योंकि मनुष्य के देवता तो हैं ही, उनके राजा तो हैं ही, परंतु देवतान के हूँ राजा हैं। अब आप विचार करो, जो मनुष्य को राजा हो वह बड़ो हो है, कि जो देवतान को राजा हो वह बड़ो हो है।
1: अरे भैया कृष्णदास क्यों मिथ्या भाषण कर रहे हो ए? अरे देखो इंद्र देवता ने पूजा तो की तुम्हारे भगवान की, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं की, उससे जबरदस्ती करवाई गई। अरे ये ब्रजवासी वो कार्तिक मास में इंद्र देव की पूजा किया करते थे, और तुम्हारे भगवान ने इंद्रदेव की पूजा छोड़वा करके स्वयं अपनी पूजा करवा ली, उसका भोजन छीन करके स्वयं भोजन पा लिया। अब बताओ जो बेचारा भूखा है वो तो गिड़गिड़ाएगा ही, वो तो पूजा करेगा ही, इसमें कोई विशेषता नहीं है तुम्हारे भगवान की।
0: रामदास जी भूखो गिड़गिड़ाओ ना करे, भूखे की थारी यदि छीनो तो वो सामने वाले को सिर फोड़ दे, गिड़गिड़ाओ ना करे।
2: अरे कृष्ण।

0: कुब्जा कृष्णदास, एक राजा कंस की दासी ही कुब्जा, जो वह को अंग टेढ़ो हो तो तुम्हारे भगवान ने वह कुब्जा को टेढ़ी सो सीधो कर दियो बस। और हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी चरण रज के द्वारा वो जो गौतम पत्नी अहिल्या शिला बनी भई परी ही वाकू पत्थर सो सुंदर स्त्री बनाए दियो। अब बता कौन बड़ो भयो?
1: तो एक जड़ को उद्धार कियो ना।
0: हाँ।
1: तो हम बता में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कौन को उद्धार कियो?
0: कौन को?
1: शिला

0: देखो रामदास जी, आपके भगवान राम ने केवल एक जड़ को उद्धार कियो हो, परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण ने एक नहीं दो दो जड़न को उद्धार कियो हो। जो यमलार्जुन के वृक्ष बने हुए नल कुंवर मणिग्रीव नंद बाबा के आंगन में ठाड़े हैं, उनको उद्धार कियो हो। तो आप विचार करो, जो एक जड़ को उद्धार करे वह बड़ो हुए है कि जो दो जड़न को उद्धार करे है वह बड़ो हुए।
1: अरे रेंद्रियो कृष्णदास, तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण वह जरासंध के डर सो भाग गए हैं, और तुम जैसे भक्तन ने उनको नाम रख लियो रण छोड़ भगवान। अरे जो युद्ध में पीठ दिखाए दे वह बड़ो हुए है, और जा समय हमारे प्रभु श्री राम ने वह रावण को वध कियो, अपने धनुष बाण के द्वारा वह को समाप्त ही कर दियो, पीठ नहीं दिखाई। जो पीठ दिखाए दे वह बड़ो हुए है, और जो संग्राम में मैदान में युद्ध करे वह बड़ो हुए। यासो हमारे राम जी बड़े हैं।
0: देखो रामदास जी, आपके भगवान राम ने जब रावण को मारे हो तो अपने संग बंदरन की सहायता लही, और थोड़े बहुत बंदर नहीं, पदम 18 यूथप बंदर, 18 पदम तो यूथपति है, इतने बंदरन की सेना की सहायता लेके तब जाके वह रावण को मारे हो। परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बिना काउ की सहायता के वह राजा कंस को मार दियो, ऐसो कहे हैं कि छाछ के पिवैया ने छत्रपति मारो।
1: अरे सुनो छत्रपति जी, हाँ तुम्हारे भगवान ने वो सात कोस को गोवर्धन अपने हाथ पे उठायो, हाँ। और वही गोवर्धन को हमारे भगवान के दासवान दास हनुमान जी ने उठायो। जा कार्य को करे तुम्हारो स्वामी, और वही कार्य को करे हमारे स्वामी को सेवक। अब बताओ तुम्हारे स्वामी के बराबर तो हमारे राम जी के सेवक हैं, हैं?
0: देखो रामदास जी, जब स्वामी में सामर्थ्य इतनी है

0: तो सेवक ने कछु करवे की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जा स्वामी में सामर्थ ना आए तो का करे बेचारे सेवक ने कार्य करनो ही पड़े।
1: आप जैसे सेवक रहेंगे तो स्वामी करनो ही पड़ेगा।
0: और देखो आपके भगवान राम ने समुद्र के ऊपर एक पुल बनायो हो, परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण ने वही समुद्र के भीतर एक विशाल नगर द्वारकापुरी को निर्माण कियो हो। आपके भगवान राम ने एक पुल बनाया वह बंदरन की सहायता थी, और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने एक विशाल नगर बनायो बिना काऊ की सहायता थी। अब यहाँ बात को तो विचार आप कर सको हो कि पुल बनानो ज्यादा बड़ो कार्य है कि नगर बनानो ज्यादा बड़ो कार्य है।
1: अब तुम ही बताओ, जब पुल नहीं बनतो तो नगर कहां थे बस जाता हो। हाँ, और सुनो,
0: हाँ।
1: तुम्हारे भगवान को एक मित्र हो गरीब सुदामा, बड़ो ही गरीब हो, और वो अपने मित्र से मिलवे गए हो द्वारकापुरी, तो भगवान ने वासु राजी खुशी तो नहीं पूछी, और बातें कहवे लगे, भैया बड़े दिनन में आयो मित्र, आजा भैया आजा, और यहाँ चारों ओर जल ही जल है, मैं समुद्र में बस रहे हूँ, यहाँ अन्न तो हुए नहीं है, मैं बहुत दिन से भूखो हूँ, तू कछु लाया होए तो मुझे खवा। तो वा के पास और तो कछु नहीं, वो पाव सिर तंदुले चावरे, और छीन झपट के वासो खा लिए, अपनो पेट भर लियो, जब अपने मित्र को दो लोग की संपत्ति दई, अब यहाँ जाओ। ओह, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जा समय शत्रु को भाई विभीषण हमारे प्रभु जी की शरण में आयो, आते ही राम तिलकते ही सारा, हाँ आते ही दोनों भुजान को उठा लियो और अपने हृदय से लगा लियो, और वाकु लंका को राज तिलक कर दियो, यानी राजा बना दियो। अब बताओ, तुम्हारे भगवान तो ऐसे पहले खाए पी के यानी कामी हैं, और हमारे जो भगवान है ना वो अकामी हैं, हाँ कोई भी कामना नहीं है। अब बता कौन बड़ो भयो, कामी या कामी?
0: रामदास जी, या में कौन सी बड़ी बात है, बड़ो भैया मार दियो वा को राज छीन के छोटे भैया को दे दियो। और यहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को दो लोक की संपत्ति दी, वह अपनी वा के भैया की छीन के वाय ना दी, या में कौन सी बड़ी बात है, एक भैया को राज छीनो दूसरे भैया को दे दियो। और सुनो, आपके भगवान राम जा समय जनकपुर दूल्हा वेश में गए, वहां जितने हु स्त्री पुरुष नर नारी है सबके हृदय में यह वासना उत्पन्न भई कि भगवान राम हमें पति रूप में प्राप्त हो, परंतु भगवान राम ने उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं करी, उनके हृदय में काम उत्पन्न कर दियो। परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ द्वापर में आए के वे जितने हु नर नारी स्त्री पुरुष है यहाँ आए के सब ब्रजगोपी बने, उनके संग महाराज पीड़ा करके उनके हृदय में सो काम जराए बराए के भस्म कर दियो और अपनो प्रेम प्रदान कियो। अब आप ही विचार कर लो, जो हृदय में काम उत्पन्न करे वह बड़ो हो है, कि जो काम को जराए प्रेम प्रदान करे वह बड़ो हो है। तो देखो बड़ो तो वही हो है जो काऊ को प्रेम प्रदान कर सके। या सो हमारी कृष्ण कन्हैया बड़े हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।

0: अरे निमाई।
1: हाँ माँ।
0: तू कहाँ ये हरी हरी बोल रहे हो है?
1: अरे
0: मैं ये कहाँ देख रही हूँ महाराज आप? अरे ये तो बाबरो है और ये बालक है। आप वृद्ध हो या बालक के संग बालक बन रहे हो?
2: माँ कहा बता मैं, आपके या बालक ने तो हमको बाबरो बनाए दियो है। यह बाबरो नहीं है, यह तो या संसार को बाबरो बनावे बारो है। धन्य है माँ आपने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दियो है, आपके लिए मेरो बारंबार प्रणाम है।
0: अरे रे नहीं महाराज, देखो आप महापुरुष हो, अब देखो आप भंडार में पधारो, वहाँ जाके प्रसाद पाओ। निमाई निमाई।

तो भैया अभी तक आप सुन रहे रासलीला के अंतर्गत गौरांग लीला, लेखक है स्वामी श्री राम शर्मा, प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की ही। और जय के संग आज को जय ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यही संपन्न करवे की हमें अनुमति दो। फिर ते पर्व त्योहारन की रंगीन जटा के संग आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक सभी सुनवे वाले श्रोतान को हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद अंग्रेजी में।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर 2 में से 1 ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ।

0: मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई। 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा। ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
1: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779810326117। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़

0: से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
2: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकर।
3: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकर।
1: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
4: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
6: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो है उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
5: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और

0: निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $2,00,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
2: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस: डेथ टोल इन डेवेस्टेटिंग नेपाल टिबेट फ्लैश फ्लड्स राइजेस टू 392 व्हाइल 1,468 पीपल रिमेन मिसिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। Center steps up efforts to bring back Indians stranded in Nepal. World's largest financial inclusion initiative, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, completes 12 years today. Festival of Raksha Bandhan being celebrated across the country. 57-day long annual Amarnath Yatra to conclude in Jammu and Kashmir. Finance Minister Nirmala Sitharaman to be on a 6-day visit to US beginning today.

समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुणाल कांजावाला की आवाजों में फिल्म सिलसिले से, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का। कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

दोस्तों, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम तेरे नाल लव हो गया। गीत रचना प्रिया पांचाल की, संगीत सचिन जिगर का।

कार्यक्रम की अगली रचना फिल्म तुम्बिन से आवाजें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की, गीत रचना फईज अनवर की, संगीत निखिल विनय का।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी

केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपने सुना ये गीत राहत फतेह अली खान और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम मिले ना मिले हम। गीत रचना जावेद अख्तर की, संगीत निर्देशन साजिद वाजिद का। और इसी के साथ कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है।

0: स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता। विषय है नेत्रदान महादान, सावधानी एवं सुझाव। इस भेंट वार्ता में डॉक्टर एम के तनेजा से बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम देखें तो आंखें हमारी बहुत अनमोल है। आंखें वो अंग हैं हमारे जीवन में जिनसे हम दुनिया देखते हैं, दुनिया की रंगीनी देखते हैं। दुनिया को देखने का नज़रिया हमें आंखें ही देती हैं, लेकिन किसी के आंख न हो या नज़र नहीं हो या दृष्टि नहीं हो तो उसके लिए दुनिया के क्या मायने हैं ये हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो किसी भी कारण से अपनी दृष्टि खो चुके हैं, जिनकी आंखें देखने में समर्थ नहीं हैं, कई बार हम अचानक दुनिया छोड़ते हैं या समय से भी छोड़ते हैं, तो अगर हम अपनी आंखों को दान लिख दें तो उन आंखों से हम अपने बाद भी दुनिया को देख सकते हैं। ये कितना बड़ा पुण्य का काम है और इसीलिए शायद जो

0: वो आँखों का दान है, हम महादान में कहते हैं, चाहे अंगदान हो चाहे आँखों का दान हो, उसको दान ही नहीं महादान कहा जाता है। तो कैसे आँखों का दान हम कर सकते हैं, क्या कुछ इसकी सामान्य प्रक्रिया है? जब आँखों का दान करते हैं तो कौन सा आँखों का पार्ट जो है वो लिया जाता है? तो आज हमारे साथ डॉक्टर तनेजा जी हैं, M.K. तनेजा साहब, मथुरा के वरिष्ठ आई सर्जनों में आपका नाम है, और बहुत दिनों से हमारे आपके बीच आते ही रहते हैं, लेकिन आज फिर हमने बुलाया है और उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब बताइए, जो आँखों के दान की बात है
1: हाँ
0: वो,
1: धन्यवाद साहब,
0: हाँ उसमें थोड़ा बताइए कि कितना पुण्य का काम है, कितना
1: बहुत
0: बड़ा काम
1: बहुत
0: है।
1: पुण्य का मतलब इतना पुण्य का काम है जो इंसान इस सुंदर संसार को देख नहीं पाता, वो केवल और केवल हमारी वजह से वो देख सकता है। केवल हमने करना क्या है, आँखों को अपना दान कर देना है। और वो दान का भी ये है कि वो मरणोपरांत में आँखों को, पूरी आँख को नहीं लिया जाता है, केवल एक जो ट्रांसपेरेंट जो श्वेत पटल है उसको लिया जाते हैं, बाकी आप पूरी आँख को नहीं निकालते हैं हम, उससे कोई चेहरे के अंदर की बनावट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है,
0: कोई विकृति नहीं आती
1: कुछ
0: है।
1: विकृति नहीं आती है। क्योंकि थोड़ा सा मिथ्या है कि सब निकलवाएंगे तो पूरी चेहरा खराब हो जाएगा, कुछ नहीं, हमको केवल 1 सेंटीमीटर का पार्ट लेना है आँख का, और वो आँखों को हम किसी दो लोगों की जिंदगी
0: रोशनी
1: रोशनी दे सकते
0: जी,
1: हैं।
0: तो ये जो सफेद पार्ट पता जी, जिसको सामान्य गांव की भाषा में पुतली बोलते हैं वो
1: पुतली बोलते हैं
0: जी।
1: सफेद, कॉर्निया हम अपनी लैंग्वेज में कॉर्निया बोलते हैं, हिंदी में इसको श्वेत पटल बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता नहीं है, उसके आगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो आयरिस, वो अलग कलर का था, ब्राउन कलर का, ब्लू कलर का, उसको निकाल के हम किसी कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, और वो हमको 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ही आई बैंक के अंदर पहुँचाना पड़ता है।
0: तो अब इसमें यह है कि जिस व्यक्ति को, एक तो आपने कहा कि जब हम ये दुनिया छोड़ रहे हैं तब किसी भी कारण से, चाहे अकस्मात या समय से,
1: समय
0: तो उस समय आपको फिर एक ये लिख के देना पड़ेगा कि मैं अपनी आंखों को दान करता हूँ, नेत्रदान करता हूँ
1: उससे पहले, यानी कि जब
0: जी।
1: वो जिंदा रहता है वो अपना एक प्लेज फॉर्म भरता है, उसमें उसका मेंशन होता है कि मैं मरने के बाद मेरी आंखों को निकाल दिया जाए।
0: तो उसमें फिर उसके परिवार वाले लोग उसकी
1: हाँ उस समय
0: सहमति के
1: फिर,
0: हिसाब से
1: हाँ उस समय जाते हैं उनके घर के अंदर, अगर वो हमको इन्फॉर्म करते हैं तो,
0: जी।
1: और वो भी ये प्रक्रिया जो है 2 से 4 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। और फिर जैसा भी पता है कि दुख का समय तो होता ही है, उस समय
0: हाँ,
1: उनको फिर समझाया
0: लेकिन
1: जाते हैं
0: पुण्य इसीलिए है कि आपके बाद भी वो आंखें किसी के
1: आप
0: काम आ रही हैं।
1: काम आ सकते
0: शरीर तो
1: हो।
0: जल ही जाना है, खत्म हो जाना है, लेकिन
1: हाँ
0: आंखों से आप दुनिया किसी को देखने का मौका दे रहे हैं। जैसे आपने कहा बड़ी सुंदर उसमें कि
1: बिल्कुल,
0: किसी व्यक्ति को जो दुनिया नहीं देख पा रहा उसको देखने का आप मौका दे रहे हो।
1: हाँ जैसे वो कहते हैं ना, चिता में जाएगी राख बनेगी, कब्र में जाएगी मिट्टी बनेगी, और नेत्रों का कर दो दान, किसी दो की जिंदगी रोशन हो
0: क्या
1: जाएगी।
0: बात है,
1: तो
0: तो
1: ये
0: दुनिया देखने का मौका
1: देव कमा
0: आप दे रहे हैं। तो ये
1: मिलेगा।
0: अब जैसे मथुरा जैसा शहर है, आप जैसे यहाँ सर्जन भी हैं और भी हॉस्पिटल है, तो यहाँ ये काम हो सकता है?
1: बिल्कुल होता है, हो रहा है यहाँ पे, इधर
0: हाँ।
1: आपके वृंदावन में श्रॉफ आई सेंटर है, वहाँ पे होता है ये, आई बैंक भी है उनका, और उनके दिल्ली से आते भी हैं ऑपरेशन करने के लिए,
0: जी।
1: इस ट्रांसप्लांट दैट इज कॉल्ड कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ये वो करते हैं।
0: तो बस आपको एक प्लेस देनी है, आप शपथ
1: एक
0: लेनी है कि भाई मैं जा रहा हूं तो
1: प्लेस
0: मेरे बाद
1: देना
0: मेरी
1: है,
0: आंखों से लोग दुनिया
1: और
0: देखें।
1: प्लेस देना है, ये प्लेस तो पूरी सोसाइटी का है, वो करें, मिल बैठ के बातें करें, भाई हम देंगे हम देंगे, तो थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन उतना कार्य हो नहीं पा रहा है। हमारे पास इस समय भारत में करीब 12 लाख लोग केवल श्वेत पटल की वजह से, कॉर्निया का है उस वजह से ब्लाइंड है, 12 लाख, और 25,000 पर साल बढ़ रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट के डाटा हैं, वो कहते हैं कि हमें 1 लाख पर ईयर करेंगे तब इसको हम जीत पाएंगे।
0: जी। अब इसमें लेकिन लाखों लोग प्रतीक्षा में हैं, लेकिन कई लाख लोग दुनिया छोड़ भी रहे हैं,
1: छोड़
0: हर
1: भी रहे,
0: साल छोड़ जाते हैं,
1: हाँ
0: और एक्सीडेंटल केस ही अगर हम देखें तो
1: वही हो
0: लाखों
1: गया।
0: लोग तो उसमें चले जाते हैं। तो एक व्यक्ति अगर शपथ लेना चाहता है, लिखा पढ़त करना चाहता है, दान करना चाहता है, तो कहाँ उसको जाके ये प्रक्रिया करनी
1: ये
0: पड़ेगी?
1: मैंने बताया, ये तो श्रॉफ में है,
0: हाँ
1: बाकी अपने जिला अस्पताल में भी इनकी प्रोसेस है,
0: हाँ
1: प्लेटफॉर्म वगैरह तो मिल जाते हैं,
0: हाँ वो कोई बहुत ज्यादा

0: कागज का कार्रवाई नहीं,
1: कुछ नहीं है, केवल आपने नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, साइन करने हैं, बस अपना फोन नंबर लिख दीजिए और किसी फैमिली मेंबर का एक साइन और करा लीजिए, तो बस वो करके।
0: और फैमिली मेंबर को भी मतलब परिवार में हम ये बता के रखेंगे भाई मैंने ये शपथ ली है,
1: बहुत जरूरी
0: है, मैं कैसे भी जाऊं लेकिन ये काम मेरे व्याप पे आप जरूर कर दीजिए।
1: इसीलिए जो उनके दूसरे से साइन कराते हैं तो वो कहते थे भाई आप भी तो उस समय आई थी, तो वो फिर यस कर देते हैं, फिर सब क्लियर हो जाए। पता है कि उस समय बड़ा कठिन होता है क्योंकि और लोग आ जाते हैं, फिर कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई अरे वो तो चश्मा लगाते थे उनकी आंख क्यों दे रहे हो, तो ये सब मिथ्या चीजें हैं। चश्मा लगाने वाला भी दे सकता है, अगर आपके ब्लड प्रेशर डायबिटीज है वो भी दे सकता है, किसी भी उम्र का दे सकता है।
0: वो आंख तो एक तरह से कैमरे का लेंस है,
1: कैमरे
0: जिसमें भी लगा दोगे वो काम करने
1: लगेगा। अरे नहीं नहीं, उनकी आंखें तो बन चुकी थी, तो कोई वो तो बनी हुई आंखों का नहीं होता, वो भी नहीं, हमें तो ऊपर का पार्ट चाहिए, बनने का काम वो मोतियाबिंद कैटरेक्ट वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। मोतियाबिंद का तो चलो चारों तरफ से ऑपरेशन हो जाता है, तो वो हम आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। इधर हमारे पास कोई आर्टिफिशियल चीज अभी सक्सेस नहीं हुई है, बनी हुई तो बहुत सारी चीजें हैं,
0: काम चल रहा है,
1: चल रहा है, लेकिन है नहीं,
0: लेकिन अभी वो चीज नहीं है जो नेचुरल हमारा वो है।
1: हाँ।
0: जो पुतली है वो अभी उसका कोई विकल्प नहीं है,
1: विकल्प
0: वो उसका आदमी की विल पावर ही या आदमी का दान ही वो काम आएगा। हाँ। इसीलिए शायद नेत्रदान महादान कर रहे हैं,
1: नेत्रदान महादान उसका ये जागरूकता का ये चीजें हैं, ये आपकी 25 अगस्त से और 8 सितंबर इतना लंबा टाइम दिया कि पब्लिक अवेयर हो जाए। हमने भी अपनी KM मेडिकल कॉलेज में इसकी सब गोष्ठी करी है, उसके ऊपर इस तरीके से
0: काम हो रहा है। आपको क्या लगता है सोसाइटी में अवेयरनेस तो
1: अभी अवेयरनेस नहीं है,
0: अभी तो टोटल बॉडी दान की भी बात हो रही है, उसमें आपका किडनी है, लिवर है, बहुत सारे, लेकिन आंखों का दान मुझे लगता है ट्रांसप्लांटेशन भी और उसका भी बहुत इजी हो गया है।
1: 1994 में एक्ट भी बन चुका है, लेकिन अभी कोई इतना हुआ नहीं, सक्सेस नहीं हो रहा है,
0: लोगों में जागरूकता
1: जागरूकता की कमी है,
0: नहीं आ रही है, जबकि कोई इसमें खर्चा नहीं है, कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा समय से जानकारी दे दो, परिवार का सपोर्ट हो जाए, और बिल तो आदमी जिसने कर दिया है वो कह ही गया है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन परिवार का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट हो तो थोड़ा सा काम हो जाता है,
1: हो जाएगा। देखिए बिल्कुल वर्ल्ड की बात भी नहीं, तो वर्ल्ड में तो अमेरिका इटली सबसे टॉप पे है जो आई डोनेशन एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास का कंट्री है श्रीलंका, बोले जाने पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता रहता है अपनी आई,
0: बताइए सिर्फ अवेयरनेस की
1: और
0: बात
1: कितना
0: है?
1: छोटा सा श्रीलंका। हाँ अवेयरनेस है, या वहाँ की वो है, कोई नियम होगा ऐसा बना होगा, यहाँ के पब्लिक की सोच ऐसी हो गई है। हमारे यहाँ पे जिस दिन जागरूकता और बढ़ जाएगी, हो सकता है कोई ब्लाइंड ना रहे कॉर्निया की वजह से, श्वेत पटल की वजह से।
0: तो अब चलते चलते थोड़ा सा बताइए कि जैसे किसी व्यक्ति की एक तो जन्मजात दृष्टि नहीं है, या किसी की किसी बीमारी की वजह से चली गई, किसी की दुर्घटना में चली गई, तो कौन से लोगों में ये सक्सेस हो जाता है?
1: एक तो चोट लगने पे ना जो सफ़ेद पटल है उसमें जख्म हो जाता है। अब जख्म तो हम दवाइयों से भर देते हैं, लेकिन उसके अंदर वो स्कार रह जाता है, उसी को हम कॉर्नियल ओपेसिटी कहते हैं, उससे उस मरीज को दिखता नहीं है। एक तो उन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी बच्चों में हो जाती है,
0: ध्यान नहीं दे रहे,
1: ध्यान नहीं देते हैं,
0: दीरे करके
1: उसके अंदर कॉर्निया का पूरा वो हो जाता है, उस केसेस में कर सकते हैं। कुछ जन्म से भी बच्चे जो हैं वो कॉर्नियल ओपेसिटी वाले ही पैदा होते हैं, जन्म से पेट से आते हैं।
0: अच्छा,
1: तो उनमें बहुत जरूरी है, उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं देखा।
0: हाँ।
1: अगर चोट वाले ने तो फिर भी अपना देख रखा, दूसरी आंख से भी काम कर सकते हैं, और जो पेट से आते हैं वो ज्यादातर दोनों आंखों में होती है।
0: हाँ।
1: तो इन लोगों के लिए बहुत,
0: तो उनमें भी ये सक्सेस हो जाता है,
1: बिल्कुल सक्सेस तो सब में
0: मतलब आंख तो है लेकिन वो उसका लेंस काम नहीं
1: करता, वो वाला लेंस हटा के
0: हाँ।
1: दूसरे वाला आपने जो दिया, जो जिसने प्लेस वो करा था उसको लगा देते हैं, उसको दिखने लग जाता है सब वो।
0: अच्छा, इसमें कोई उम्र का होता है कि उम्र, किस व्यक्ति की उम्र, किस व्यक्ति के
1: नहीं, कोई इसमें उम्र का बार नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी भी उम्र का दान कर सकता है, 70-80 जो भी कर सकता है, 50 साल 40 साल का, कोई उम्र का कुछ नहीं है। हाँ भाई, कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, रेबीज का कोई वो पेशेंट, सेप्टिसीमिया है, उस केस में नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैन बी ट्रांसफर हो सकती है।
0: हाँ, वो उसके
1: उसके ब्लड ग्रुप का, मेरा तो RH पॉजिटिव है।

0: आर एच नेगेटिव है मैं तो नहीं दे सकता, नहीं भाई किसी भी ब्लड ग्रुप का हो सब दे सकते हैं इसमें बहुत, लेकिन बस इच्छा कमी
1: इच्छा
0: है
1: हो,
0: या
1: जागरूकता हो,
0: जागरूकता।
1: सामाजिक एक वो हो, सहयोग हो, तो हम इस, और ऐसे लोगों का जो वाकई में मतलब बात करने में भी ऐसा लग रहा है
0: हाँ
1: कि जिसके नज़र नहीं है वो दुनिया को कैसे देखता होगा, कैसे
0: देख,
1: पढ़ता होगा,
0: हाँ
1: कैसे समझता होगा, तो
0: बिल्कुल
1: उसमें अगर कोई रोशनी आ जाए तो ये बड़ा पुण्य का काम, बड़ा समाज के लिए सार्थक काम, बड़े महत्व का काम है। तो इस नेत्रदान में जो डॉक्टर तनेजा हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि भाई आइए जुड़िए, और बिना सहयोग और बिना उसके तो कुछ
0: कुछ हो नहीं
1: संभव
0: सकता,
1: नहीं है,
0: ये है
1: सब
0: इसमें
1: एक
0: सहयोग
1: जन
0: की।
1: आंदोलन बने तो
0: हाँ
1: काम चलेगा।
0: जन आंदोलन बने, आप जन आंदोलन तो सरकार तो अपने प्रयत्न कर ही
1: कर ही
0: रही
1: रही,
0: है,
1: लेकिन समाज को आगे आना
0: समाज
1: पड़ेगा।
0: को आगे आना है।
1: तो श्रोता बंधु, आज हम बात कर रहे थे नेत्रदान पे, और कोई बहुत हमने साइंटिफिक बात नहीं की, लेकिन जागरूकता की बात है। ये जो अभी 25 से ये और 8 सितंबर तक का जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें इसीलिए है कि हम समझें, जाने, और हम किस तरीके से अपने जाने के बाद दुनिया को रोशन कर सकते हैं, दुनिया को कैसे आपकी आंखें फिर से आबाद रहेंगी, दुनिया देख पाएंगी, और एक दूसरे व्यक्ति के जिसके अंधेरा है जीवन में उसमें रोशनी ला पाएंगी, तो इस काम के माध्यम से हम फिर से जीवन में एक रोशनी ला सकते हैं। डॉक्टर तनेजा, आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
1: नमस्कार।
2: श्रोताओं, स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक आप सुन रहे थे भेंट वार्ता नेत्रदान महादान सावधानी एवं सुझाव इस विषय पर। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर एम के तनेजा, भेंट कर रहे थे ओपी सिंह।

0: श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, आज प्रातः 9:45 पर हम आपको सुनवाएंगे वार्ता रक्षाबंधन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस पर्व की प्रासंगिकता। वार्ताकार होंगी डॉक्टर दीपा अग्रवाल। दिन में 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे संगीत रूपक रेशम के धागे। प्रस्तुति सुरेश गुप्ता की, लेखक होंगे रवि खंडेलवाल। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला अनुप्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मऊ और कासगंज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का।
3: मऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले तथा अपने घर परिवार और मातृभूमि से विस्थापित हुए लोगों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ था, जिसकी विभीषिका आज भी लोगों की स्मृतियों में है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों और जमीन से वंचित होकर विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। उन्होंने देशवासियों से इतिहास को स्मरण करते हुए एकजुटता, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने का आह्वान किया। इसके पश्चात मंत्री ए के शर्मा के नेतृत्व में नगरपालिका कम्युनिटी हॉल से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मौन जुलूस भी निकाला गया। मऊ जिले में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्री ए के शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष

और बलिदान का स्मरण कराता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने जनपद के सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिवारों को याद कर नमन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता हमें बहुत कठिन संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। समाज के सभी वर्गों, जातियों एवं समुदायों के लोगों ने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि लोक सेवक के रूप में हम सभी को राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान देने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर विकास भवन परिसर में

0: का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता हमें बहुत कठिन संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। समाज के सभी वर्गों, जातियों एवं समुदायों के लोगों ने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि लोक सेवक के रूप में हम सभी को राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान देने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर विकास भवन परिसर में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने नगर पालिका परिषद मऊ में बनने वाले प्रदेश के 5वें आधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र का भूमि पूजन किया। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह केंद्र करीब 1.5 वर्ष में तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नागरिक सुविधा केंद्र का उद्देश्य केवल भवन का निर्माण कराना नहीं बल्कि लोगों को नगर पालिका की सेवाएं सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध तरीके से एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या, गाजियाबाद, गोरखपुर और लखनऊ के बाद मऊ में प्रदेश का 5वां आधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। यह केंद्र मऊ के लोगों के लिए आधुनिक नगरीय सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का निरंतर प्रयास है कि शहरों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले और उन्हें अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने तहसील मधुबन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिनटोलिया का पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति और उससे बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली जाएं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी बनाए रखने तथा जल स्तर एवं तटबंधों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद कर बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उनकी आवश्यकताओं की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क एवं सजग है तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। मऊ के कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी में किसानों की आय में वृद्धि एवं अनुन्मेषी फसल मखाना की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जनपद के विभिन्न विकास खंडों के किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों को मखाने की आधुनिक खेती, खेत की तैयारी, जैविक खेती, कीट प्रबंधन, उत्पादन एवं उससे होने वाले आर्थिक लाभ के संबंध में जानकारी दी।
1: मऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्रा का।
2: रक्षाबंधन के अवसर पर कासगंज जिले में माताओं, बहनों और बेटियों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल रही है। यह सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। सरकार के इस कदम की काफी सराहना एवं प्रशंसा की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 अगस्त को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की गई। योजना के तहत उन्हें परिवहन निगम की साधारण बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में कासगंज के विकास भवन सभागार में योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। रक्षाबंधन पर सरकार की इस पहल से कासगंज जिले की महिलाओं को यात्रा में आर्थिक राहत मिलने के साथ अपने मायके और परिजनों तक आसानी से पहुंचने की सुविधा मिल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के क्रम में जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज के निर्देशन में विभिन्न न्यायालयों द्वारा लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। यह अभियान 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराना है। मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत के साथ मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव हो सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शालिनी विधे ने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वे अभियान का लाभ उठाएं। वहीं वादकारियों को सलाह दी गई कि वे 30 दिसंबर 2026 तक अभियान का लाभ उठाते हुए मध्य

0: मध्यस्थता के माध्यम से अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने का प्रयास करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज द्वारा आगामी 12 सितंबर को जनपद न्यायालय परिसर में वृहद स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकृति के लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज रामेश्वर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत बैंक संबंधी मामले, भू राजस्व सर्विस में वेतन एवं भत्तों से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 NI Act के मामले, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद सहित अन्य संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। इसमें पक्षकार आपसी सहमति से अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वादकारियों से अपील की गई है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपने मामलों के शीघ्र एवं आपसी सहमति से निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। श्री सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते जनपद के तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रशासनिक एवं संबंधित विभागों की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों में आवागमन की समस्या को देखते हुए नाव एवं स्टीमर की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में परेशानी न हो।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: जिले की हलचल में आज आपने सुनी मऊ और कासगंज जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। आज इस कार्यक्रम में विषय है पर्यावरण जागरूकता में आपकी भूमिका। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता।
2: प्रकृति अत्यंत विशाल तथा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। यह प्राचीन काल से ही मनुष्य की हर आवश्यकता की पूर्ति निस्वार्थ भाव से करती आ रही है। पृथ्वी के गर्भ में अथाह ऊर्जा भंडार है। यदि मनुष्य बिना लोभ लालच के योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग करता रहे तो प्रकृति वर्षों तक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। परंतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बड़ी बेरहमी से तथा अविवेक पूर्वक कर रहा है, जिससे ऊर्जा संसाधनों का दुरुपयोग तो होता ही है, साथ ही प्राकृतिक संतुलन नष्ट होकर मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आज जबकि संपूर्ण विश्व पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के बारे में चिंतित है, देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस ज्वलंत समस्या के बारे में स्वयं जागरूक बने और पर्यावरण संरक्षित रखने में अपना सक्रिय योगदान करे। अपने पड़ोस, स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल के लोगों का पर्यावरण क्लब या मंच बनाएं, जिसमें समय समय पर सामाजिक पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर चर्चा करें। प्राथमिकता के आधार पर किसी पर्यावरणीय प्रायोजना पर काम भी प्रारंभ कर सकते।

सकते हैं। ऑफिस, शिक्षण संस्था, मंदिर अथवा सार्वजनिक स्थान के नोटिस बोर्ड पर समाचार पत्रों की पर्यावरणीय समाचार वाली कतरनें लगावें तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार बदलते रहें। इससे लोगों में पर्यावरणीय विषयों के बारे में रुचि बढ़ेगी। आप जब रेलगाड़ी या बस में सफर कर रहे हों, मूंगफली या केले आदि खाकर छिलके वाहन में फर्श पर न फेंकें। इससे वाहन में गंदगी तो फैलती है, साथ ही आपका कोई सहयात्री केले के छिलके से फिसलकर गिर भी सकता है। छिलकों या अन्य व्यर्थ पदार्थों को कागज की थैली में इकट्ठा करें तथा यात्रा समाप्ति पर उपयुक्त स्थान पर डालें। रेलगाड़ी, बस अथवा सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई धूम्रपान करता है तो उसे सम्मानपूर्वक मना करें। नहीं मानने पर जनमत तैयार कर संगठित रूप से विरोध करें। इसे रोकने के लिए कानूनी प्रावधान भी है। जब कमरों में कोई न हो, अनावश्यक रूप से टीवी, लाइट, पंखे आदि चलते हुए न छोड़ें। बल्ब की जगह ट्यूबलाइट व CFL काम में लें। अवसर मिलने पर वृक्षारोपण करें तथा दूसरों को भी वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित करें। याद रखें, वृक्ष लगाने के साथ साथ लगे हुए वृक्षों का संरक्षण भी आवश्यक है। कभी प्रकृति से अपने संबंधों के बारे में पूछें। यह सुंदर विश्व, यह प्राणदायिनी पर्यावरण आपकी बपोती नहीं है, वरन हमें पूर्वजों द्वारा दी गई अमानत है। हमें भी इसे सहज कर आने वाली पीढ़ी को सौंपना है, अर्थात हमारे पास उधार ली गई मूल रकम की भांति है। इसका संरक्षण हमारा पवित्र कर्तव्य है। कभी आत्मावलोकन करें, अपने आप से पूछें, मैंने प्राकृतिक संसाधनों का कहां कहां तथा किस प्रकार दुरुपयोग किया है। मैंने पृथ्वी, जल, हवा को कहां कहां तथा किस प्रकार प्रदूषित किया है। मैंने किस प्रकार निरीह जीव जंतुओं के आवासों को नष्ट किया है। यदि कहीं सार्वजनिक पाइपलाइन टूटी हुई है, लीक कर रही है, कहीं गंदगी का ढेर या मरा हुआ मवेशी पड़ा सड़ रहा है, तो इस प्रकार की स्थानीय समस्याओं के बारे में सक्षम अधिकारियों से बात करें। निवारण न होने पर समाचार पत्रों के माध्यम से आवाज बुलंद करें, अधिकारियों व जनता का ध्यान आकर्षित करें। सामान्यतया आदमी सोचता है कि इतने बड़े राष्ट्र एवं विश्वव्यापी अभियान में मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। याद रखिए, आप अच्छा या बुरा जो भी करते हैं, राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। आज इस कार्यक्रम में विषय था पर्यावरण जागरूकता में आपकी भूमिका। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज इस कार्यक्रम में विषय है परिवार और समाज में नारी के विषय पर गांधी जी के विचार।

कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रस्तुत हैं परिवार और समाज में नारी विषय पर गांधी जी के विचार। मेरा आदर्श ये है कि पुरुष पुरुष रहते हुए स्त्री बने और स्त्री स्त्री रहकर पुरुष बने। पुरुष के स्त्री बनने का अर्थ ये है कि वो स्त्री की नम्रता और उसके विवेक को सीखे, और स्त्री को पुरुष बनने का अर्थ है कि वो अपनी भीरुता छोड़कर हिम्मत वाली और बहादुर बने। जब तक स्त्री पुरुष दोनों विकारवश हैं, तब तक दोनों के लिए भय है। द्रौपदी बुद्धि का रूपक है और पांच पांडव वश में की गई पांचों इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियां वश में आ चुकी हैं और संस्कारी बनी हैं, अर्थात बुद्धि ने इंद्रियों का वरण किया है। जो धन कमाया जाता है उसमें पति पत्नी दोनों बराबरी के हकदार हैं। पति पत्नी की मदद से ही कमाता है, फिर पत्नी चाहे रसोई ही बनाती हो, वो दासी नहीं भागीदार है। यदि पति पत्नी के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करता हो तो पत्नी को पति से अलग रहने का अधिकार है। बालकों पर दोनों का समान अधिकार है, बड़े होने पर किसी का नहीं। पत्नी के नालायक होने पर उसका हक खत्म हो जाता है। यही बात पति के लिए भी है। संक्षेप में, स्त्री पुरुष के बीच प्रकृति ने जो भेद किया है और जो खुली आंखों से दिख सकता है, उसे छोड़कर दूसरे कोई भेद मुझे मान्य नहीं है। पुरुष ने स्त्री के प्रति अन्याय किया है और आज भी कर रहा है, पर आखिर इसका उपाय स्त्री के हाथ में है। स्त्री खुद अपने को अबला मानना छोड़ दे तो वो आज स्वतंत्र बन सकती है। शरीर से बलवान बलवान नहीं होते। रावण के समान राक्षस जो शरीर से बलवान था, निर्बल दिखने वाली सीता के सामने अपंग रहा। आपको याद है ना, सीता को वरदान था कि जो कोई उस पर कुदृष्टि डालेगा वो भस्म हो जाएगा। रावण इसे जानता था, अतः वो सीता को उठाकर तो ले गया पर उसका मलिन स्पर्श ना कर सका। इसके लिए तो उसे सीता से विनती करनी पड़ती थी। वो सीता को धमकाता था जिससे वो पसीजे, पर जब तक ना पसीजे तब तक शरीर से बलवान होने पर भी रावण बकरी के समान था। सीता शरीर से कुछ भी नहीं थी, फिर भी सिंहनी के समान थी। कहा जाता है कि स्त्रियों में ईर्ष्या और असहिष्णुता बहुत होती है, लेकिन पुरुषों में ईर्ष्या नहीं होती सो बात नहीं। इसी तरह ये भी नहीं कि सब स्त्रियां ईर्ष्यालु होती हैं। बात यह है कि स्त्री को 24 घंटे घर में रहना पड़ता है, इसलिए उसकी ईर्ष्या अधिक दिखाई पड़ती है। सच पूछा जाए तो स्त्री पुरुष के बीच किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानना चाहिए। दोनों के स्थान और कार्य भिन्न भिन्न हैं। दोनों की मर्यादा ईश्वर द्वारा योजित है। परिवार और समाज में नारी, इस विषय पर ये थे गांधी जी के विचार। और अब डीवी पलुस्कर के स्वर में बापू का प्रिय भजन।

श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में आज का विषय था परिवार और समाज में नारी के विषय पर गांधी जी के विचार। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: आइए सुनते हैं वार्ता। रक्षाबंधन वर्तमान परिपेक्ष में इस पर्व की प्रासंगिकता। वार्ताकार हैं डॉक्टर दीपा अग्रवाल।
1: उत्सव एवं पर्व हमारे राष्ट्र जीवन एवं संस्कृति की पहचान है। ये सुदीर्घ इतिहास, श्रेष्ठ परंपरा तथा प्राचीन संस्कृति का स्मरण कराकर समाज में स्नेह, संगठन एवं देशभक्ति के भाव का जागरण करते हैं। नव उत्साह, उमंग का वातावरण निर्माण होता है। समाज में आत्मीयता, समरसता, एकात्मता का निर्माण और राष्ट्र को सुदृढ़ करने का कार्य सहज ही में इन पर्व व उत्सवों के द्वारा हो जाता है। इनके माध्यम से हम समाज जागरण का भी कार्य करते हैं। हमारा देश प्राचीन युग से ही संस्कृति निष्ठ रहा है। हिंदू जाति आदि काल से ही संस्कृति की पुजारिन रही है। उसके पर्वों में उसकी संस्कृति निरंतर परिलक्षित होती रहती है। अधिकांशतः प्रत्येक मास में कोई न कोई पर्व होता ही है। मानव स्वभाव में एक ही ढर्रे पर चलने से जो नीरसता निर्माण होती है, उसके स्थान पर एक उत्सव के पास क्रमशः उत्सवों की मालिका हम में जीवन जीने की लालसा उत्पन्न कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे पूर्वजों ने समाज में परस्पर स्नेह, सौहार्द्र और समाज के मान बिंदुओं के रक्षण हेतु जो उत्सव व पर्व प्रचलित किए हैं, उनमें रक्षाबंधन एक प्रमुख पर्व है। इसका एक अन्य नाम श्रावणी पर्व भी है। इस त्यौहार को अलग अलग राज्यों में राखी पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा और कजरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। श्रावण का यह पावन पर्व प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र होता है। पहले इस पर्व पर ब्राह्मण तर्पण, श्राद्ध, उपाकर्म आदि क्रिया करते थे, परंतु धीरे धीरे इस पर्व का रूप बदला और इसका नाम रक्षाबंधन पड़ा। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षार्थ बंधन है। यह संस्कृत के दो शब्दों रक्षा यानी सुरक्षा, बचाव और बंधन यानी गांठ, डोरी से मिलकर बना है। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम, अटूट विश्वास और एक दूसरे की रक्षा करने के संकल्प का त्यौहार है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि लोग आज के दिन से वेद का पारायण अर्थात पाठ आरंभ करते थे, जिसे उपाकर्म कहा जाता था। वैसे तो वेद पाठ नित्य ही करना ब्राह्मण का कर्तव्य बतलाया गया है, पर वर्षा ऋतु में इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाती थी। पहले जनता व्यस्त रहती थी, श्रावण के अंत में अवकाश होता था, क्षत्रिय सेना भी इधर उधर नहीं जाती थी। वर्षा के कारण ऋषि मुनियों को भी जंगल में रहना असुविधाजनक था। इस प्रकार सब तरह की सुविधाएं मिल जाने से वेद पाठ और वैदिक तत्वों की व्यवस्था करने के लिए सभाओं की योजना की जाती थी। इसके उत्सर्जन या समाप्ति की तिथि पौष शुक्ला पूर्णिमा थी। इसी समय आश्रम के कुलपति राजा के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनको समाज के प्रति कर्तव्यों का स्मरण कराते थे। गुरु या पुरोहित अपने शिष्यों के हाथ रक्षा सूत्र बांधकर उसकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेते थे। इसके अतिरिक्त इस दिन ऋषि महर्षि उपाकर्म कराकर व्यक्तियों को विद्या अध्ययन कराना आरंभ करते थे। दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र मिलाकर पंचगव्य बनाते थे। इस दिन यज्ञोपवीत बदले जाने की भी परंपरा है। उपाकर्म संस्कार कराकर जब व्यक्ति अपने घर लौटते थे, तब बहनें उनका स्वागत करती थीं और उनके दाएं हाथ पर राखी बांधती थीं। कई जगह सूर्य को जल चढ़ाकर सूर्य की स्तुति की जाती थी तथा अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की पूजा की जाती थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन ब्रह्मचारी तथा द्विजों को उचित है कि ग्राम अथवा नगर के समीप पवित्र जलाशयों एवं नदी तट पर जाकर वे गुरु की आज्ञा अनुसार शास्त्रोक्त विधि से उपाकर्म करें। भारतीय संस्कृति के विकास में ऋषि मुनियों और स्त्रियों का बहुत योगदान रहा है। श्रावणी पर्व उन्हीं पवित्र आत्मा ऋषियों के स्मरण तथा

पूजन का दिन है। इस पर्व को सभी वर्ग के लोग मनाते हैं, परंतु जनमानस के अनुसार यह ब्राह्मणों का पवित्र त्यौहार है। रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका कोई एक निश्चित समय इतिहास में दर्ज नहीं है। यह सनातन संस्कृति का प्राचीन पर्व है, जिसकी शुरुआत से जुड़ी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार भविष्य और भागवत पुराण कहता है, माता लक्ष्मी ने पाताल लोक में राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ ले जाने का वचन ले लिया था। दूसरी कथा अनुसार महाभारत काल में शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटने पर रक्त बह निकला। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने इसी धागे के फर्ज को निभाकर द्रौपदी की लाज बचाई। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। असुरों की बढ़ती शक्ति से देवता परेशान हो गए। इंद्र की हार निकट देखकर उनकी पत्नी शची ने एक रक्षा सूत्र बनाया और उसे इंद्र की कलाई पर बांध दिया, जिससे इंद्र को विजय प्राप्त हुई और उनके जीवन की रक्षा हुई। एक कथा यह भी है कि पार्वती को भगवान विष्णु ने भी अपनी बहन माना था और शिव के साथ विवाह के समय भाई के रूप में सारे कर्तव्य निभाए थे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार रक्षाबंधन का उद्देश्य समुद्र देवता वरुण की पूजा करना था, इसलिए इस त्यौहार के साथ वरुण को नारियल का अर्पण, स्नान करना और समुद्र तटों पर मेले लगते हैं। आमतौर पर मछुआरे समुद्र देवता वरुण को नारियल और राखी अर्पित कर नारियल पूर्णिमा मनाते हैं। सामदेव के मंत्रों और गायन का रक्षाबंधन के पर्व से गहरा आध्यात्मिक और वैदिक संबंध है। प्राचीन काल में रक्षाबंधन से ही वेदों के पाठ, विशेषकर सामवेद के गायन का विधान था। प्राचीन ऋषि रक्षाबंधन के दिन वेदों की शुरुआत करते थे व देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सामवेद के मंत्रों का सस्वर गान करते थे। सामवेद के मंत्रों के उच्चारण से मन और वातावरण शुद्ध होता है। सामवेद के मंत्रों में देवताओं से रक्षा और कल्याण की प्रार्थना होती है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा सूत्र भी इसी मंगल कामना और सुरक्षा का आधुनिक रूप है। भगवान विष्णु के 16वें अवतार की हय ग्रीव जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। इस अवतार के संबंध में कथा है कि एक बार मधु और कैटभ नाम के दो शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण करके रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटभ का वध करके वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी हैं। ऐसा माना जाता है कि पंजाब के महान हिंदू राजा पुरुषोत्तम, जो राजा पौरस के नाम से प्रसिद्ध हैं, के हाथों सिकंदर पराजित हुआ। तो सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की जान बचाने के लिए राजा पुरुषोत्तम को राखी बांधकर अपने पति की सुरक्षा का प्रण ले लिया। सम्राट हुमायूं के शासनकाल में भी माना जाता है चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने अपने राज पर आक्रमण कर रहे सूबेदार अहमद शाह से सुरक्षा पाने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। अलग धर्म के होने के बावजूद सम्राट हुमायूं ने उनकी सहायता तुरंत की। रक्षाबंधन का मूल उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है। आमतौर पर लोग मंदिरों में या किसी धार्मिक अनुष्ठान में पुजारियों के पास जाकर अपने हाथों में पवित्र धागा बंधवाते हैं। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में भी लोग अपनी कलाई पर काला धागा बंधवाते हैं। इसी प्रकार वैष्णो देवी मंदिर में भी देवी की पूजा के बाद लोग अपने माथे पर लाल पट्टी बांधते हैं। ऐसा माना जाता है यज्ञोपवीत छाती पर बांधा जाने वाला पवित्र धागा भी पहनने वाले की रक्षा करता है, बशर्ते

उसकी पवित्रता बनाए रखी जाए। विवाह की अवधारणा में भी मंगलसूत्र दुल्हन के गले में बांधा जाने वाला और कंकना बंधन दुल्हन और दूल्हे के द्वारा एक दूसरे की कलाई पर बांधे जाने वाला धागा का भी समान आंतरिक महत्व है। इस प्रकार रक्षा सूत्र बांधने का रिवाज सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, इसे पत्नी अपने पति की सुरक्षा के लिए शिष्य गुरु के भी बांध सकते हैं। इंद्राणी ने इंद्र की रक्षा के लिए इसे बांधा था। यह बंधन केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह रस्म न सिर्फ प्रेम के बंधन को मजबूत करती है बल्कि परिवार की सीमाओं को भी पार कर जाती है। जब करीबी दोस्तों और पड़ोसियों की कलाई पर राखी बांधी जाती है तो यह सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इससे व्यक्ति की दृष्टि व्यापक होकर उसको अपने परिवार की सीमाओं से परे जाकर पूरी वसुधा को एक परिवार के रूप में देखने में मदद मिलती है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। कभी कभी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती हैं। रक्षाबंधन पर लगाए जाने वाला तिलक भी शरीर चेतना और उन दुर्गुणों के जाल पर विजय का प्रतीक है जो हमें नकारात्मक कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। कई जगह भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले बहनें तुलसी के पौधे पर और फिर पीपल के पेड़ पर भी राखी बांधकर प्रकृति की रक्षा की कामना करती हैं। राष्ट्र की रक्षा में रत सैनिकों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनको सम्मान दिया जाता है। कारागारों में बंदियों के हाथ में राखियां बांधकर उनको हृदय परिवर्तन करने का भी प्रयास किया जाता है। राखी के सुकोमल धागों में भाई बहन का अटूट स्नेह गुथा हुआ है। इन धागों में छिपा है नारी के सम्मान की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले वीर पुरुषों का इतिहास। इन पवित्र धागों से जन-जन के हृदय जोड़ने का नाम ही रक्षाबंधन है। श्रावणी का पर्व वर्ष भर में किए गए गलत कामों को स्मरण कर भविष्य में उनके न करने के लिए पूर्ण प्रायश्चित का आधार है। राखी सिर्फ एक रंगीन धागे का टुकड़ा नहीं है, यह स्नेह का वह सूत्र है जिसने भाई और बहन की आत्माओं को वचन के पवित्र बंधन में बांध रखा है। इसका मूल्य धन से नहीं आंका जा सकता, यह हमारी पारिवारिक संस्कृति की अप्रतिम झांकी है। कौन सा अन्य ऐसा देश है जहाँ भाई बहन के लिए प्रेम का ऐसा पावन प्रतीक खोजा गया है? यह पर्व सात्विक भावनाओं का बंधन है जो भाई को सिर्फ अपनी बहन की ही नहीं बल्कि दुनिया की हर लड़की की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध करता है। यह रंग बिरंगे धागे भले ही कच्चे हों लेकिन इनमें बंधा प्यार और विश्वास बहुत मजबूत होता है जो हर विपत्ति में रक्षा करता है। इसलिए हमारी संस्कृति में बहुत पहले से ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन से संबंधित जितनी भी कहानियां मिलती हैं उनसे पता चलता है कि लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी राखी का मान रखते हुए अपने वचन को भाया और अपनी बहन की रक्षा की। इस पर्व का यह भी संदेश है कि वास्तव में रक्षा तो परमपिता परमेश्वर ही करते हैं। हमें जो रक्षा करनी है वह 5 विकारों लोभ मोह काम क्रोध और अहंकार से करनी है। ये 5ों विकार हमारी आत्मा को तमो प्रधान बना देते हैं। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर सब बहन भाइयों को इन विकारों से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। सभी लोग इस मायावी संसार में अच्छे कर्म करते हुए नैतिक मूल्यों से युक्त जीवन बिताएं। समाज में अभी भी ऊंच नीच छूत अछूत के भाव विद्यमान हैं। हम अपने सामने भगवान श्री राम के आदर्श को रखें जिन्होंने निषाद राज का आतिथ्य भीलनी शबरी के वेर स्नेह के साथ ग्रहण किए। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम एक दूसरे की रक्षा करते हुए संपूर्ण समाज की रक्षा करेंगे व समाज में जाति वर्ग संप्रदाय के भेद के बिना सभी को रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा के माध्यम से राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का स्मरण कराएंगे व इसको सामाजिक समरसता पर्व के रूप में मनाएंगे।

यह संगठन की यह विघटन की दीवारों को गिराकर इंसानी रिश्तों को मजबूत करने की सीख देता है। समय के साथ रक्षाबंधन के पर्व ने वर्तमान परिपेक्ष में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। आजकल यह पर्व पारिवारिक संबंधों को मजबूती देने और समाज में एकता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को प्रकट करने के रूप में भी देखा जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित एक पारंपरिक रस्म नहीं है, बल्कि यह आपसी प्रेम, समानता, सुरक्षा और मानवीय मूल्यों का एक आधुनिक और विस्तृत प्रतीक बन गया है। यह त्योहार सभी बहनों व भाइयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इस दिन वे रिश्ते में पवित्रता के महत्व को पुनः स्थापित करते हैं। इस पर्व का मतलब केवल बहन की रक्षा तक सीमित न होकर उसके अधिकारों व भविष्य के लिए देखे गए सपनों की रक्षा करना भी होता है। यदि किसी बहन की कोई अभिरुचि है, योग्यता, प्रतिभा व बौद्धिक क्षमता है और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, तो उसे अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना यह भी भाई का कर्तव्य है। समय के साथ हर अच्छी बात व भावना के साथ कुछ न्यूनताएं भी जुड़ जाती हैं। सोशल मीडिया के युग में आज सभी पर्व हमारे कर्तव्य सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ही पूरे हो जाते हैं। कोई भी पर्व या सुअवसर हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी पोस्ट करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली जाती है और सामने वाला व्यक्ति भी यही समझता है कि उक्त व्यक्ति उनसे बहुत प्रेम और अपनापन रखता है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो स्टेटस लगाने के बजाय असली जिंदगी में उस व्यक्ति के प्रति पूरी ईमानदारी से रिश्ते को निभाया जाए तो जीवन ज्यादा सरल और सुख में बना रहेगा व रिश्तों की डोरी भी मजबूत होगी। लोग इन अनमोल क्षणों को आनंद पूर्वक जीने की बजाय सेल्फी लेने की होड़ में लगे रहते हैं, ताकि वो जल्दी से भाई बहन का प्यार लिखकर पोस्ट कर सकें। यह पर्व हमारी संस्कृति और विरासत को दर्शाता है, लेकिन आज के बदलते समय में इस त्योहार पर भी आधुनिकता हावी होने लगी है। आज तक यह परंपरा तो चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मूल्यों को खोते जा रहे हैं। पुराने समय की यह परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है, लेकिन इन रंग बिरंगे धागों में अब अपनत्व की भावना और प्रेम की गर्माहट कम होने लगी है। एक समय में जिस तरह की भावना और संवेदना राखी को लेकर थी, शायद अब उनमें रुपयों की दीमक लगने लगी है, जिसने धीरे धीरे रिश्तों में प्रेम की जगह दिखावा अहंकार ने ले ली है। आज के समय में रंग बिरंगे धागों की जगह सोने, चांदी व अन्य महंगी राखियों, मिठाइयां व उपहारों ने ले ली है, जिसके बदले में भाई को भी उसी के अनुसार सामाजिक व्यवहार का पालन करते हुए बहन को उपहार देना होता है। और इस प्रकार बहन भाइयों के बीच कभी न समाप्त होने वाली प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाती है, और फिर भाई भी अपने कर्तव्यों को समझने की बजाय केवल इस रिवाज को पूरा करने को ज्यादा सही समझते हैं। इस प्रकार आधुनिकता के इस दौर में प्रेम, सद्भावना और सांस्कृतिक विरासत से ज्यादा दिखावे ने ले ली है। फिर भी इस पर्व ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। भागदौड़ भरी जिंदगी और डिजिटल दौर में यह त्योहार रिश्तों को मजबूत रखने का एक सार्थक माध्यम है। व्यस्त जीवन शैली के बाद भी यह पर्व परिवार को एक साथ जोड़ता है। आज के डिजिटल युग में वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन राखी भेजने की सुविधा से दूरी होने पर भी रिश्ते में मिठास बनी रहती है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आइए हम भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद, संप्रदायवाद की दीवारें ढा दें तथा संकल्प लें कि हम सब भारत माता की संतानें हैं। यह भूमि हमारी माता है। सर्वप्रथम हमें इस बंधन की रक्षा करनी है। राष्ट्र रूपी शरीर के अंग सभी संप्रदाय, पंथ, प्रांत, भाषा, वर्ग आदि अंगों के प्रति एकात्मता का भाव दृढ़ करना रक्षाबंधन उत्सव का संदेश है। बहनें सभी भाइयों की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य व उज्ज्वल भविष्य की कामना करें तथा भाई भी अपनी बहनों के साथ संपूर्ण नारी जगत के मान सम्मान और अधिकारों की रक्षा का संकल्प लें, जिससे कि

0: सही मायने में राखी के दायित्वों का निर्वहन किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति में अपना अपना बल होता है, जैसे किसी में बुद्धि बल तो किसी में ज्ञान बल, बाहुबल, तपोबल, धन बल, सतीत्व बल आदि। अपने बल के अनुसार सामने वाले की रक्षा करना, ऐसा संकल्प इस पर्व के अवसर पर लिया जा सकता है। साथ ही श्रावणी के त्योहार को पुनः वास्तविक रूप में प्रचलित करें और इसके द्वारा समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा दें, जिससे कि युवा पीढ़ी का नैतिक व आध्यात्मिक विकास हो सके।
1: अभी तक आप सुन रहे थे वार्ता रक्षाबंधन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस पर्व की प्रासंगिकता। वार्ताकार थी डॉक्टर दीपा अग्रवाल। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संगीत रूपक रेशम के धागे। लेखक हैं रवि खंडेलवाल, प्रस्तुति सुरेश गुप्ता की।
0: एवं पर्व हमारे राष्ट्र जीवन
2: रेशम के, लीजिए सुनिए रवि खंडेलवाल का लिखा संगीत रूपक, संगीत निर्देशन और प्रस्तुति सुरेश गुप्ता की है।

गर्म तपती रेत का एहसास जब मानव हृदय को कर रहा हो व्यथित विचलित, सूर्य की किरणें धारा की गर्म तपती देह की ज्वालामुखी को कर रही हो और उद्वेलित, तब स्वयं अंतर हृदय आकाश से है एक टुकड़ा दूर बादल का कहीं से, आ निरंतर प्रेम रस बरसात कर। दे रहा आभास सावन के महीने का, जिंदगी को आज लय और ताल में साथी सुगमता से है जीने का। दे रहा आभास सावन के महीने का, एक टुकड़ा दूर बादल का कहीं से। देखकर अनुपम छटा छाने लगी काली घटा, पेड़ पौधे पशु पक्षी झूमने गाने लगे, दूर कोयल की निरंतर कूक मन पर हूक बन छाने लगी, और पपीहा भी निरंतर प्यू प्यू कर उठा देखकर अनुपम छटा। है मन मयूरा भी मेरा अब झूमने गाने लगा, है देखकर अनुपम छटा। जब लगी बहने लो ठंडी ठंडी फुआरों की है पुरवैया, दूर मैके से बुलाने हैं लगे आने बहन को आज भैया, और बहने भी इसी दिन की लगाए आस, खुश हो आज बाबुल की गली जाने लगी। किंतु कुछ बहने अभी भी जो होती हैं बाट भैया की, वो देखो तो उधर दूर छत की मुडेर पर एक बहन भैया की सुध में बैठी बेसुध, उमड़ खुमड़ कर आती हुई घटाओं को टकटकी लगाए देख रही है। देखो तो आंखों में उसकी शादी से पहले की यादें धीरे धीरे उभर रही हैं। बाबुल की गलियों में बीते अल्हड़ बचपन की वो यादें, संग सहेली भाई बहन के साथ बिताए जीवन के वो कुछ बसंत, और सावन के आंगन में बीते यौवन के क्षण वो अनंत, वो खुले खुले से आंगन में मदमस्त भाव से झूम झूम, झूले पर झूला झूल झूल खुलकर मल्हार गाना उसका, धीरे धीरे छोटा दे दे आकाश को छू जाना उसका। अब तो सबका सब लगता है ससुराल में उसको सपना सा, कैसे वो जेठ ससुर के आगे

के झूला झूले नाचे गए। ऐसे रस भीने सावन में किसका न करे मन जाने को पीहर की देहरी बरसाती। जब बाबुल भी भूले उसको तो भैया की ही सुध आए। टकटकी लगाए बादल के आते जाते टुकड़ों से वो। देखो यही संदेशा अपने भैया को भिजवाए।

ये सावन नारी के मन का उल्लास भरा मन भावन सा सुख के क्षण का साक्षी प्रतीक ये सावन नारी के मन का। देखो घर घर आंगन आंगन झूला झूले बहना का मन सावन की मतवारी ऋतु में अमुआ की डार परे झूला गूंजे मल्हार के स्वर मनहर। इस सावन में ही तो आते बहनों के ही त्योहार कई हरियाली मावस नाग पंचमी और हरियाली तीज संजोए राखी का त्योहार बहन भैया का अनुपम प्यार। वो देखो तो रंग बिरंगे कपड़े पहने गांव की कच्ची गलियों में शहरों की पक्की सड़कों पर है निकल पड़ी लेने राखी बहने अपने भैया के हित। टकटकी लगाई आया दिन राखी का सोहना प्यारा दिन। आओ आओ बहनों आओ आओ आओ सखियों आओ भैया को राखी पहनाओ फूलों के हार गूंथ लाओ भैया को राखी पहनाओ।

रक्षाबंधन का पर्व मनाते सभी पूर्णिमा को सावन की, इसको पारंपरिक रूप में पर्व श्रावणी भी है कहते। बहुत पुरानी एक कथा है पौराणिक भी, इंद्रलोक पर जब अधिकार किया चाहा दानव समूह ने, युद्ध हुआ तब देव असुर में, तब सुहाग की रक्षा के हित देव गुरु से इंद्रराज के हाथों में रक्षा के धागे बंधवाए थे इंद्राणी ने। रक्षा के इन धागों के पावन प्रभाव से दानव राज पराजित हो बंदी बन बैठे और इंद्र के सभा सदन में गूंजी तुरही विजय घोष की। पर्व श्रावणी का भारत के हर प्रदेश में कई रूप में प्रचलित साथी, वो देखो तो श्रीनगर से पहलगांव साधु सन्यासी छड़ी मुबारक लिए हाथ में पद यात्रा करते पहुंचे हैं। पहले साथी पंचतरणी, फिर चलकर हैं पहुंच रहे देखो तो साथी अमरनाथ स्वामी की अनुपम गुफा तलक में, जहां जाति और धर्म भेद से अलग थलग वे मानव मानव का है भाव प्रदर्शित करके शिवलिंग का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। वही सभी एकत्रित जन हैं, एक दूसरे के हाथों में देखो तो प्रिय बांध रहे हैं रक्षा के धागे मिलजुल कर। आज बहन भाई के स्नेह सूत्र का ही प्रतीक बन कर आया है पर्व श्रावणी का मन भावन। बड़ी बड़ी बहनों की तो बात निराली, पर छोटी छोटी बहनों ने भी अपने अपने भैया की देखो तो हाथों में बांधे साथ ही ये रेशम के धागे, ऐसा ही कुछ भाव लिए। वो देखो तो साथी गाता है चला आ रहा जनसमूह,

राखी का त्योहार जाति और धर्म भेद से ऊपर उठकर मानव को मानव के हित में जीने मरने का संदेशा दे जाता है। त्याग भावना को रग रग में भर जाता है। इसी भाव की एक कथा खुद ही संदर्भित हो जाती है। राखी की इस पावनता की साथी याद दिला जाती है। रानी कर्मवती के जब चित्तौड़ राज्य पर घिर आए संकट के बादल, तब रानी ने तुरंत मुगल सम्राट हुमायूं को भेजे रेशम के धागे अपना भाई बनाकर अपनी रक्षा का दायित्व सौंपने। देख हुमायूं रेशम के धागे को साथी, देख हुमायूं रेशम के धागों को साथी, तुरंत बहन की रक्षा के हित दौड़ पड़ा अपनी सेना ले। टक्कर लेकर शेर शाह से बादशाह ने रक्षा करके राज उदयपुर की साहस से रेशम के धागों का साथी मूल्य चुकाया यूं हंस हंस के। आज यही भावना संजोए हर भैया अपनी बहना की, रक्षा का दायित्व ग्रहण कर बंधा रहा रक्षा की धागे। और बहने भी भैया को हे प्यार भरे संबोधन दे दे, राखी की लाज बचाने के हित उसके दायित्वों का बोध कराती हैं प्रिय यूं गा गा कर।

विश्व शांति का भी प्रतीक है आर्यजनों में राखी का त्योहार। जगत के मानव मन में नफरत का उन्माद मिटाकर भर देता है प्यार, अनोखा राखी का त्योहार। देखो तो प्रिय गूंज रहे हैं दूर दूर तक अब भी मत्तिम मत्तिम से स्वर। देखो तो साथी हाथों में रेशम के धागे, छोटी सी बहनानी बांधे हाथों में रेशम के धागे।

आप सुन रहे थे रवि खंडेलवाल का लिखा संगीत रूपक रेशम के धागे। इस रूपक में गायक कलाकार थे सुधा स्वामी, हेमलता जौहरी, अलका भंडारी और सुरेश गुप्ता। वादक कलाकार थे लालजी प्रसाद, गोपाल प्रसाद शर्मा, प्रदीप कुमार सारस्वत, विजय कुमार केलकर और राम स्वरूप प्रभाकर। वाचन विमल अरोड़ा का था। संगीत निर्देशन और प्रस्तुति सुरेश गुप्ता की थी।

दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से पहचाने जाते हैं। कुछ रिश्ते दिखाई नहीं देते, फिर भी हमारी पूरी ज़िंदगी को थामे रहते हैं। और इन्हीं रिश्तों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत शब्द है बंधन। एक ऐसा धागा जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन दिलों को मजबूती से जोड़ देता है। माँ की ममता का बंधन, पिता के विश्वास का बंधन, भाई बहन के प्यार का बंधन, दोस्ती का बंधन और अपनों के साथ का बंधन।

श्रोताओ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म करण अर्जुन से। गीत रचना इंदिवर की थी, संगीत राजेश रोशन का। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से मजबूत होते हैं। कभी कोई रिश्ता हमें हंसाता है, कभी संभालता है, कभी हमारी गलतियों पर डांटता है, तो कभी बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाता है।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेलो की आवाजों में फिल्म दे दनादन से। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों की डोर चाहे दिखाई न दे लेकिन दिलों को मजबूती से जोड़कर रखती है। धागा भी हमें यही सिखाता है प्यार और विश्वास का सुंदर प्रतीक।

कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आवारापन का ये गीत मुस्तफा जाहिद की आवाज में। गीत रचना सईद कादरी की, संगीत निर्देशन प्रीतम का।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं एआर रहमान और इरशाद कामिल की आवाजों में, फिल्म का नाम तेरे इश्क में। गीत रचना इरशाद कामिल की, संगीत निर्देशन एआर रहमान का।

श्रोताओं, रिश्तों का बंधन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्यार भी हो, विश्वास भी और उम्र भर साथ निभाने का एहसास भी। जब भी आप उन रिश्तों को देखें, उनकी ओर देखकर हमेशा हमेशा मुस्कुराएं और उन रिश्तों को हमेशा मजबूत करने का प्रयास करें। बंधनों से परे एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जो सदा आपके चेहरे पर मुस्कान लाए।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया और आकृति कक्कड़ की आवाजों में ये गीत फिल्म अपने से। गीतकार थे समीर, संगीतकार हिमेश रेशमिया, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। निजी प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।
1: नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप?
2: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
2: कौन है वो?
1: अपने वो सभी श्रोता जो हमें सुनने के लिए रहते हैं बेकरार, और जिनसे फोन कॉल्स करने के लिए हम करते हैं मिन्नतें बार बार। तो चलिए देखते हैं आज के हेलो आकाशवाणी में ये पहला कॉल हमें किसने किया है। हेलो आकाशवाणी।
3: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, परिचय दे दीजिए अपना।
3: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी।
1: जी स्वागत है नेत्रपाल जी, कैसे हैं आप?
3: बहन जी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
1: बिल्कुल बढ़िया ही रहना चाहिए आपको तो, है ना? जी, तो अभी तो रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही होंगी घर में?
3: चलिए तैयार है, पूरी पूरी
1: तैयारी। पूरी पूरी है, बिल्कुल। तो चलिए पूरी पूरी तैयारी के साथ, पूरी और कचौड़ी के साथ, घेवर फैनी के साथ और सेवई और खीर के साथ भी मनाइएगा रक्षाबंधन।
3: बिल्कुल, आप भी बनाएं।
1: बिल्कुल, हम भी मनाएंगे, आप भी बनाइएगा, और आनंद से प्रेम के साथ में इस त्योहार को मिलजुल कर अपने भाई बहनों के साथ में हम सेलिब्रेट करेंगे। तो बताइए क्या सुनेंगे
3: आज? फिर जमुना किनारे।
1: जमुना किनारे कौन सा गीत सुनेंगे?
3: प्यासी प्यासी, प्यासी, प्यासी, प्यासी, प्यासी, प्यासी, प्यासी,
1: अच्छा

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही है?
1: आपका नियमित श्रोता साथी योगेश जांगड़े विमय तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, स्वागत है कार्यक्रम में, अभिनंदन है आपका। और बिल्कुल हम तैयार।

0: हैं, आप तैयार हैं उसी बात के
1: जी
0: लिए जिसका हमें इंतजार रहता है।
1: जी
0: तो चल गए, गीत तो आपको सुनवाएंगे ही, पर गीत आपसे पहले सुनेंगे भी। तो आज कौन सा गीत सुनाएंगे?
1: वैसे तो बहुत सारे गीत हैं। पिछले बार आपको हमारे राजकीय गीत सुनवाए थे। हाँ
0: हाँ, छत्तीसगढ़ का।
1: जी।
0: जी।
1: और इस बार एक कोशिश करते हैं एक लोकगीत, आपको पारंपरिक जो लोकगीत
0: वाह
1: हैं।
0: वाह, सुनाइए।
1: जी। मोरे दौना लखवा दे बिड़ो पान रे पान ठेला वाला, मोरे दौना लखवा दे बिड़ो पान रे पान ठेला वाला, बंगाल के बंगला पत्ती संग लगा दे चूना कत्था, लौंग लेची सौंख सुपारी डार दे ओ मजरदा मोरे दौना ला। जी।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा सा कोई गीत सुना है आपने, इसको आप ट्रांसलेट कीजिए।
1: ये जो हम लोग पान खाते हैं ना, उसी पर आधारित है।
0: चूना कत्था सब चाहिए पान
1: हाँ
0: में।
1: जी हाँ जी हाँ जी जी
0: हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो
1: जी
0: अच्छा गीत, और इसी के साथ आपकी पसंद क्या रहेगी?
1: हम एक चीज कहना चाहेंगे गीत बताने से पहले, लोगों की अक्सर शिकायतें रहती है फोन न लगने की, और
0: हाँ
1: हम तो बस 2-3 मिनट ट्राई करते हैं, हर बार हमारा फोन लग जाता
0: देखिए, आप कितने लकी हैं, पता नहीं
1: है।
0: लोगों के फोन क्यों नहीं लगते।
1: हमारे
0: आप,
1: 17,000 फोन कॉल्स होने को है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बधाई। अभी जल्दी से आपके 20,000 तक तो कम से कम पहुंच ही जाने चाहिए थोड़े बहुत दिनों में। हाँ
1: जी। और
0: जी,
1: अभी रक्षाबंधन नजदीक है, तो
0: हाँ
1: फिल्म तिरंगा से गाना उपलब्ध होगा तो
0: जी,
1: सुनवा देंगे, इसे समझो ना रेशम का तार भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए, पर ये मत कहिए कि आपने हमें नहीं पहचाना, हमने पहचान लिया है आपको।
1: बिल्कुल हमारा सौभाग्य है कि बैक टू बैक आपसे बात होने का मौका मिला है। आपसे पिछली रिकॉर्डिंग में भी बात हुई थी और इस रिकॉर्डिंग में भी, तो हम बड़े लकी हैं कि हमारी रश्मि दीदी से हमारी बात हो पाती है। हम बड़े खुश मिजाज हो जाते हैं उसमें जब आपका कार्यक्रम सुनते हैं तब।
0: जी, मैं चाहती हूँ कि आप हर पल हर क्षण मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि जीवन में हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रसन्नता का भाव ये बड़ा मुश्किल से आता है जीवन में।
1: मुस्कुराने की तो हर श्रोता को एक आदत सी डाल दी। जब आप कार्यक्रम में आती हैं तो श्रोता अपने आप मुस्कुराते मुस्कुराते और गुनगुनाते गुनगुनाते आनंद उठाती प्रोग्राम सुनते हैं आप।
0: ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे इतना प्रेम देने को।
1: ऐसा होता है कि जब मुस्कुरा के प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाए जाता है आपका,
0: हाँ
1: तो मुस्कुराते मुस्कुराते सुनना भी बनता है।
0: बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि हम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे श्रोताओं तक हमारी वो वाइब्स पहुंचनी चाहिए, है ना।
1: चलिए, तो हमारी तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से आकाशवाणी मथुरा के पूरे परिवार को, समस्त टीम को और सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब फिल्म का नाम तो मेरे को याद नहीं है दीदी, आशा जी का गाया हुआ बड़ा सुमधुर गीत है, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। मैंने पिछले समय फरमाइश की थी आपसे।
0: जी, बिल्कुल, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं जी, बता
1: मैं
0: दीजिए जी।
1: राजा राम तरकर बोल रहा हूँ बहन जी, भाई राम से, भाई बरारी मथुरा।
0: बरारी से?
1: हाँ जी, बरारी का
0: कैसे
1: राम
0: हैं
1: भाई राम।
0: जी, कैसे हैं राजा राम जी?
1: ठीक हूँ जी बहन जी।
0: जी, आपका नाम तो बहुत सुंदर है।
1: जी नाम तो आप लोगों की देन है, ब्राह्मणों की।
0: हाँ बिल्कुल, ब्राह्मणों की देन है। लेकिन देखिए, ये नाम जो है, जो भी बोलेगा आपसे संवाद करेगा, तो जाने अनजाने में भगवान राम को तो ऐसे ही मतलब याद कर
1: हाँ
0: लेगा,
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: है ना?
1: हाँ
0: तो इससे बढ़िया नाम क्या हो सकता है कि हमारे हमारे हमारे भगवानों के नाम पर अगर हमारे बच्चों के नाम होते हैं, हमारे घरों में नाम होते हैं, तो हम कम से कम दिन में 10 बार तो वो नाम सुमिर ही सकते हैं।
1: जी, हम ब्रजवासियों की तो ये विरासत में मिली है कि हम भगवान कृष्ण और राम के नाम पे अपने बच्चों को भी नाम रखते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, मैं समझती हूँ। हमारे पूरे ब्रजमंडल में हर गली मोहल्ले में एक ना एक बच्चे का तो नाम कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, गोपाला, कुछ ऐसा जरूर होगा।
1: होता ही है,
0: हाँ
1: हर
0: जी
1: हालत में होगा
0: जी तो चलिए, आज आप क्या सुनना चाहेंगे राजा राम जी?
1: जी। वो गाना सुना है, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद कर।
0: ठीक है। हेलो आकाशवाणी
1: नमस्कार मैडम।
0: जी, नमस्कार, परिचय दे दीजिए अपना
1: डी आर नावानी हूँ, चक्का बड़ा केंद्र से, चंदन
0: जी। स्वागत है कार्यक्रम में।
1: की लकड़ी, फूलों का हार, अगस्त का महीना, सावन की बहार, भैया की कलाई, बहना का प्यार, बुबारों को सबको रक्षाबंधन का त्योहार।
0: बिल्कुल, आपको भी रक्षाबंधन का ये त्योहार बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रेम और सौहार्द से भरे हुए इस पावन पर्व की। और बताइए आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुनाया, मेरी बहनें जो नहीं आ पाती हैं तो वह यही कहती है, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: राधे
0: राधे राधे जी।
1: दीदी मैं ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र गांव उस पार से वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी जी जी जी, तो वीरेंद्र जी स्वागत है कार्यक्रम में, और कैसे हैं आप?
1: दीदी ठीक है, थोड़ा परेशानी दीदी, थोड़ा बीमार हो गए थे, डॉक्टर की दवाई चल रही दीदी और घर पे ही हैं।
0: जी बिल्कुल, तो घर पर हैं, आराम कीजिए, अस्वस्थ हैं तो इसलिए और ज़्यादा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार संक्रमण आपके द्वारा आपके परिवार में या अन्य सदस्यों को भी फैलता है, तो इसलिए बेहतर होगा अपने खान पान का और अपने आराम का विशेष ध्यान रखिए। और देखिए, रही मन लगाने की बात, लोग कहते हैं ना कि भैया अब कितनी देर आराम करें, आराम करते रहें, तो भाई आराम के साथ साथ रेडियो सुनते रहिए। तो पसंद के गाने बजाने के लिए मैं हूं ना, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: दीदी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, सावन का महीना चल रहा है दीदी, तो हमको ये गाना सुनवा दीजिए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, ये दीदी ये गाना है।
0: ठीक है जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: दीदी हमारे दोस्त से बात कर लीजिए जरा। मैं
0: अच्छा जी, कराइए।
1: हेलो दीदी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
0: जय श्री कृष्णा जी, परिचय दीजिए अपना।
1: दीदी परिचय क्या दीदी, याद रहा बोल रहा हूँ मैं।
0: बिल्कुल, तो देखिए आपको अपना नाम तो बताना ही पड़ेगा ना।
1: तो दीदी देखिए, अब आप हमारी बहन हैं।
0: हाँ जी,
1: पिछली बार भी लगाया तो नहीं लग पाया फोन, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, चलो इसका लग गया इस व्यक्ति का, तो चलो मैं ही आपसे इसी वास्ते बात कर लेता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये होती है बचत करना, इसे कहते हैं बचत करना, आपसे सीखे कोई बचत करना। हाँ?
1: दीदी,
0: एक कॉल बच गई, समय बच गया फालतू का।
1: दीदी आप कैसी है ये बता, आकाशवाणी तो कैसी है?
0: बिल्कुल हम बढ़िया, आकाशवाणी परिवार बढ़िया, और उम्मीद करते हैं आप भी बढ़िया होंगे।
1: दीदी आप आई बाहर आई, आपका तो वो हिसाब है।
0: जी जी जी जी जी, और जी बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करके, तो पसंद तो आप दोनों की एक ही रहेगी?
1: हाँ दीदी पसंद हमारी यही रहेगी। और दीदी ऐसा है कि देखिए सावन का महीना आ गया है, और हम आप हमारी दीदी, हम आपके भाई।
0: बिल्कुल,
1: आप राखी बांधने हमारे घर आओ।
0: रक्षाबंधन के दिन ही सब बुला रहे हैं मुझे, क्या बात है। एक बहन कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ जाएगी।
1: दीदी आपकी पसंदता हम सब लोगों के लिए इतनी प्यारी है कि और दीदी आई तो समझ लो कि आप आए बाहर आई।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चमन जैसा खिलता है, चमन जैसा आकाशवाणी।
0: जी जी जी, तो बस आपकी इसी प्यार से मैं भी खिल उठती हूँ और हमारा कार्यक्रम भी खिल उठता है। तो बता दिया है आपने अपनी पसंद का गीत अपने दोस्त के माध्यम से, सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।
1: हाँ यही गाना है दीदी
0: जी। नमस्कार
1: नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
0: जय श्री कृष्ण।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी रश्मि शर्मा।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण।

हम सभी के प्यारे प्रभु श्री कृष्ण, जिनके चरणों में समर्पित करते हैं हम अपने सभी भावों को, अपने भक्ति के भाव को, प्रेम के भाव को, सखा भाव को, सभी भावों को लिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कान्हा के इस भक्ति रस के साथ।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना राधा की संगम फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम अर्पण में आइए अब चलते हैं भगवान शिव की भक्ति में अपने आप को जरा बोर करने के लिए, और नमन करते हैं इस भजन के साथ सावन के इस आखिरी दिन में भगवान शिव को।

श्रोताओं, आज का ये दिन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा का पावन दिन संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और ज्ञान विज्ञान की आधारशिला है। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत आदि अनेक महान ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं। आज के इस संस्कृत दिवस पर हम अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा से जुड़े और इस महान भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश साझा करें। आज की ये विशेष आवश्यकता है और जैसा भी हो, जहाँ तक हो, जो भी हमसे बन पड़े, वो संस्कृत भाषा के संरक्षण में अपना योगदान अवश्य दें, क्योंकि संस्कृत एक भाषा नहीं, एक संस्कृति है, एक पहचान है, एक श्रद्धा है। और जब मन श्रद्धा से भर जाता है, तब हम भाषा के माध्यम से ही अपने भावों को व्यक्त करते हैं। वो भाषा हमारी भक्ति की भी होती है। भक्ति के इस मार्ग पर चलते हुए हम आशीर्वाद

प्राप्त करते हैं माँ से, और माँ का आशीर्वाद हमें रोशनी देता है। वो केवल मंदिरों में विराजमान देवी नहीं ही, बल्कि हर माँ की ममता और हर बेटी की शक्ति में बसती हैं। आइए हम सब देवी माँ के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए सुनते हैं ये भक्ति संगीत।

श्रोताओं, मन में श्रद्धा हो और हृदय में विश्वास, जीवन की हर क्षण में प्रभु श्री राम का स्मरण हो, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे रोम रोम में राम बस गए हों। मर्यादा, प्रेम, त्याग और सत्य के प्रतीक प्रभु श्री राम का नाम भी जीवन में नई दिशा और अंधेरे में रोशनी दिखा देता है। तो आइए हम सब मिलकर भक्ति और श्रद्धा के इसी पावन वातावरण में सुनते हैं प्रभु श्री राम को समर्पित ये मधुर भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का यह पहला गीत सुमन कल्याणपुरी की आवाज में। फिल्म है रेशम की डोरी। इंदिवर की लिखी रचना है, संगीत है शंकर जयकिशन का।

सुमन कल्याणपुरी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेशम की डोरी में। और लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत में ये अगला गीत। फिल्म है धर्मयुद्ध। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है कुलवंत जैन ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में। अभी आपने सुना धर्मयुद्ध फिल्म का गीत, और लीजिए अब सुनिए छोटी बहन फिल्म में लता मंगेशकर को। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना छोटी बहन फिल्म का गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का ये अगला गीत, आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म है अंधा कानून। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में अभी आपने सुना अंधा कानून फिल्म का गीत। और ये जब सुनिए फिल्म संगीत में हेमलता की आवाज में गाया फिल्म संगीत का ये अगला गीत।

हेमलता किशोर में अभी आपने सुना हथखड़ी फिल्म का गीत, और लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का ये अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में गायक कलाकार है पंडित दामोदर शर्मा।

0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित दामोदर शर्मा की आवाज में गाए कुछ ब्रज लोक गीत।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
8: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
7: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
8: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित दामोदर शर्मा के स्वर में गाए कुछ ब्रज लोक गीत। इस कार्यक्रम में संगत कलाकार हैं बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर राजेश शर्मा, ढोलक पर संगत कर रहे हैं फिरोज, परकशन उमा कांत शर्मा का है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में गायक कलाकार थे पंडित दामोदर शर्मा, संगत कलाकार थे बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर संगत थी राजेश शर्मा की, ढोलक संगत थे फिरोज, परकशन पर उमा कांत शर्मा। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 1 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और 1545 लोग लापता हैं। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
2: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
1: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाकरा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति

0: किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,093 पर और निफ्टी 15 अंक बढ़कर 24,106 पर पहुंच गया। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 1:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में। अब से कुछ देर में यानी 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी नीतू सक्सेना। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा रक्षा बंधन। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अनोखा बंधन विषय पर वार्ता। प्रस्तुति सहयोग होगा ऊषा पांडे का, वार्ताकार होंगी खुशबू मिश्रा। साथ ही घरेलू टिप्स आप इस कार्यक्रम में सुन सकेंगे। दिन में 2:30 का समय रहेगा NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। आज शाम 5:30 का समय होगा युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी का। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा विश्व संस्कृति दिवस। साथ ही आप सुनेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विषय पर वार्ता। भेंट वार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगे तीज त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा एवं हमारी जागरूकता विषय पर जानकारी। इस विषय पर जानकारी देंगे जतिन कुमार सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मथुरा, जिनसे जानकारी प्राप्त करेंगे जितेंद्र सिंह। शाम 6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में हाथ से वार्ता का विषय होगा जब हम पहली बार भूरो खावे गए। वार्ताकार होंगे कोमल प्रसाद शर्मा। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा बाह्य परजीवी में पशु सुरक्षा, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड विषय पर जानकारी सुनेंगे। ओबी आधारित भेंटवार्ता में आप सुनेंगे ब्रज में खेती में बदलाव जरूरी विषय पर जानकारी। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संजीव गुप्ता, इनसे भेंट कर जानकारी प्राप्त करेंगे दिलीप यादव। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी में आज आप सुनेंगे। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा आज शाम 7:31 पर। रात्रि 8:10 पर आप सुनेंगे विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम। यह हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। विषय होगा विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय होगा विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर। इस विषय पर जानकारी देंगे प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र, उपकुलपति महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश। इनसे भेंट कर जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्टर सुनील कुमार जोशी, सह आचार्य हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नवरंग कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे प्रदेश दर्शन। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:30 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी विदुषी कमला बोस का ख्याल गायन। आप सुनेंगे राग होगा रागेश्वरी। तबला पर संगत रहेगी गुलाम साबिर की। सारंगी पर संगत हरिबाबू कौशिक का होगा।

एफएमएक्स 2.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराहन के 1:15 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं नीतू सक्सेना।

चंदन का टीका और रेशम का धागा, सावन की सुगंध और बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद और बहन का प्यार, मुबारक हो सबको रक्षाबंधन का त्योहार। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक में हमारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत और आपकी सखी नीतू सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई और बहन के पवित्र प्रेम, अटूट स्नेह और आपसी सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। रक्षाबंधन यह दर्शाता है कि भाई बहन का ये रिश्ता ऐसे पवित्र बंधन में बंधा हुआ है जो ताउम्र बना रहता है। बहनों, आज का शुभ दिन का जो पर्व है वो प्रति वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। आज की पावन पर्व की तैयारी सभी बहनें श्रावण मास लगते ही शुरू कर देती हैं। बाजार भी रंग बिरंगी राखियों और घेवर की मिठास से सज जाते हैं। बहनें बहुत उत्साह के साथ अपने भाइयों के लिए अलग अलग तरह के उपहार खरीदती हैं और भाई भी बहनों के लिए उपहार और दक्षिणा देने की तैयारी करते हैं। राखियां बहनों की शुभ सौगात है, राखियां भाई को आशीर्वाद है। बांधती जब भाइयों के हाथों पर, बहनों को होता अनूठा नाज है। जी हाँ बहनों, रक्षाबंधन की राखी कोई मामूली धागा नहीं है। ये राखी वो रक्षा सूत्र है जो भाइयों की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर उनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो बहनों, आज के शुभ अवसर पर सुनवाते हैं विशेष कार्यक्रम अनोखा बंधन रक्षाबंधन, जिसे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं उषा पांडे और खुशबू मिश्रा।

0: सावन की बौछारों के बीच पुष्प है खिला, भाई बहन के रिश्ते की है ये पावन बेला।
1: घर में है ऐसी चहल पहल जैसे कोई मेला, देखो तो बहनों के लिए गा रहा गीत भाई अलबेला।

0: लड़ना झगड़ना है इस रिश्ते की शान, रूठ कर मनवाना ही तो है इस रिश्ते का मान।
1: भाई बहनों में है बस्ती एक दूसरे की जान, करता है भाई ही बहन के पूरे अरमान।
0: श्रावण मास की पूर्णिमा में ऐसा ही एक पर्व मनाया जाता है, जिसमें पूरे देश के भाई बहनों का आपसी प्यार दिखाई देता है।
1: रक्षा बंधन नाम है जिसका, प्रबल होता है भाई से बहना का रिश्ता। एक सूत्र जो कवच बन जाता, पुरा काल से रक्षा सूत्र कहलाता।
0: भाई बहन के प्यार स्नेह को दर्शाते इस त्योहार की परंपरा आज लगभग हर धर्म में निभाई जाती है। धर्म मजहब से परे ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। किसी भी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद होता है विश्वास,
1: और यही विश्वास एक बहन अपने भाई पर रखती है। जब वो इस पर्व के दिन भाई की कलाई पर एक धागा जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं बांधती है, अपने हाथ में राखी बंधवाकर भाई यह प्रतिज्ञा करता है कि वो अपनी बहन की सदैव रक्षा करेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना हो। आंधी आए तूफान आए, कितने ही सावन बीत न जाए, एक भाई का वादा है ये, वो हर पल हर घड़ी अपना वचन निभाए।
0: राखी का धागा केवल रक्षा ही नहीं बल्कि प्रेम और निष्ठा से दिलों को भी जोड़ता है। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि यदि कोई बहन अपने भाई से मिल नहीं पाती तो भी डाक द्वारा उन्हें राखी अवश्य भेजती है।

की शुक्ल पूर्णिमा को पूरे विधि विधान से रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्राणी ने इंद्र से रक्षा सूत्र ब्राह्मणों द्वारा बंधवाने को कहा। और वाकई ऐसा करने पर देवता जो कि निरंतर हार रहे थे विजयी हुए। ब्राह्मणों द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाना आज भी प्रचलित है। राखी सलोना पर्व पावन मुदित घर परिवार है। आलोक भाई की कलाई पर देखो बहन का प्यार है।

रक्षाबंधन से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिसमें राखी बांधने वाली बहन नहीं बल्कि पत्नी या ब्राह्मण है। पौराणिक कथा अनुसार स्वयं इंद्राणी ने इंद्र की विजय के लिए श्रावण

0: रक्षाबंधन को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं। एक कथानुसार ग्रीक नरेश महान सिकंदर की पत्नी ने सिकंदर के शत्रु पुरुराज की कलाई में राखी बांधी थी ताकि युद्ध में उनके पति की रक्षा हो सके। और हुआ भी यही, युद्ध में पुरुराज को कई ऐसे अवसर मिले जिसमें उसने सिकंदर पर प्राणघातक हमला करना चाहा, पर कलाई पर बंधी राखी ने सिकंदर को प्राणदान दिया। कान्हा ने बंधवाई राखी, एक चीर में राखी हुई पाखी, द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया, भरी सभा में लाज रखी और पूरा किया।
1: पौराणिक कथा अनुसार माता लक्ष्मी ने भी ब्राह्मणी का रूप धारण कर राजा बलि की कलाई पर राखी बांधकर भगवान विष्णु जो कि राजा बलि के यहाँ चले गए थे उन्हें वापस मांग लिया। बधाई हो बधाई, राखी है आई, मेरी प्यारी बहना ढेर सारी मिठाई है लाई, सबसे सुंदर राखी उसने मेरी कलाई पर है सजाई, आई रे आई खुशियों की बेला आई।
0: ये त्योहार मुख्य रूप से भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन ये पूरे देश में एक ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। क्षेत्रीय उत्सव भिन्न हो सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन उन रीति रिवाजों का अभिन्न अंग बन जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड

बिहार में श्रवण या कजरी पूर्णिमा कहा जाता है। रक्षाबंधन दिवस अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाने वाला यह त्योहार एक ही संदेश देता है, राखी आई खुशियां लाई, बहन आज फूले न समाई, रोली और मिठाई इन सभी से थाली खूब सजाई, बांधे भाई की कलाई पे धागा, भाई से लेती है ये वादा, राखी की लाज भैया निभाना, बहना को कभी भूल न जाना, भाई देता बहना को वचन, दुख उसके सब कर लेगा हरण, भाई बहन को सबसे प्यारा है, राखी का त्योहार सबसे न्यारा है।

भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये त्योहार बहनों के दिल से निकलने वाली दुआ प्रार्थना आशीर्वाद का अनूठा संगम है। ये त्योहार स्त्री के दूसरे पहलू जिसे बहन कहा जाता है उसे दर्शाता है। राखी का इंतजार एक बहन पूरे साल करती है, नए नए वस्त्र खरीदना अपने लिए और अपने भाई के लिए। इस दिन बहनें अपने भाई के लिए तरह तरह की डिजाइनों वाली राखी खरीदती हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने की खरीदती हैं, चांदी की या फिर हीरे के नगों से जड़ी हुई सुंदर सुंदर कारीगरी वाली धागे को सजा धजा कर स्वयं भी बनाती हैं। और दिन हो न हो लेकिन इस दिन एक बहन की आतुरता देखते ही बनती है। सुबह सुबह नए नए कपड़े पहनकर थाली सजाकर थाली में रोली चावल राखी मिठाई दीप लेकर बहनें भाई को टीका करके राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाकर पानी पिलाती हैं और उनकी आरती उतारती हैं और उसी में अपने भाई की बलैया लेते हुए उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। फिर भाई उनकी रक्षा का वचन देते हुए उन्हें उपहार देते हैं। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन का प्यार। प्यारे भैया काहे कहना, राखी बांधो प्यारी बहना, आज न करना कोई तकरार, सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन।

0: सावन में मनाए जाने के कारण इसे सावनी या सलूनों भी कहते हैं। भातृ प्रेम को प्रगाढ़ बनाता रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अनकहे स्नेह शपथ का परिचायक है। ब्रज क्षेत्र अपनी परंपराओं और खान पान को लेकर पहले से ही काफी मशहूर है। खासकर रक्षाबंधन पर्व पर यहाँ की परंपराएं और भी जीवंत हो उठी। रक्षाबंधन पर बूरा खाने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दौरान गांव में खेल कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन होते हैं। घर घर आने वाले मेहमानों की दिन भर खातिरदारी होती है।
1: ब्रज की इन परंपराओं को आज के हाईटेक युग का मानो ग्रहण सा लग गया है। गांव में ये खेल आयोजन और बूरा खाने की रस्म धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज के आधुनिक तकनीकी युग एवं सूचना संप्रेषण युग का प्रभाव राखी जैसे त्योहार पर भी पड़ा है। कई सारे भारतीय आजकल विदेश में रहते हैं और उनके परिवार वाले अभी भी भारत या अन्य देशों में हैं। इंटरनेट के आने के बाद कई सारी ई कॉमर्स साइट खुल गई हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर मंजूर करती हैं और राखी दिए गए पते पर पहुंचा दी जाती है।
0: रविंद्रनाथ टैगोर ने तो रक्षाबंधन के त्योहार को स्वतंत्रता के धागे में पिरोया। उनका कहना था कि राखी केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, अपितु ये इंसानियत का पर्व है, भाईचारे का पर्व है, जहां जातीय और धार्मिक भेदभाव भूलकर हर कोई एक दूसरे की रक्षा कामना हेतु वचन देता है और रक्षा सूत्र में बंध जाता है। जहां भारत माता के पुत्र आपसी भेदभाव भूलकर भारत माता की स्वतंत्रता और उसकी उत्थान के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं।
1: आप भी इस त्योहार को प्यार के साथ मनाएं और इस दिन अपनी बहन को उसकी खुशियां उपहार स्वरूप दें। याद रखें, यह रिश्ता जितना मजबूत और प्यारा रिश्ता है उतना ही कमजोर भी, इसलिए रिश्ते की डोर को सदैव मजबूती से थामे रखें।

त्योहारों का ये मदमस्त महीना, उसमें भी श्रावण की पूर्णिमा रिम झिम फुहारों वाली ये काली काली झुकी हुई घटाएं एक ओर झूले का आनंद उठाती हुई दूसरी ओर अपनी भैया के आने की खुशी में

0: घर के चूल्हे पर पकवानों को पकाती वो बहना पकवानों की सौंधी सौंधी भीनी भीनी खुशबू से पूरे घर को महकाती और यही सोचती।
1: राखी पर शादीशुदा बहनों का वर्ष भर का इंतजार खत्म होता है। इस दिन बहनें पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने भाइयों के पास जाती हैं, या फिर उनका भैया यथा परिस्थिति अनुसार उनके पास आ जाता है। सीमा पर रहने वाला हर सिपाही अपनी बहना की राखी का इंतजार पलकें बिछाए करता है। ये राखी केवल एक धागा मात्र नहीं है, उन भाइयों की रक्षा का कवच है जो हर तरह की कुदृष्टि से उनकी रक्षा करती है और उन्हें उनके उद्देश्य से डगमगाने नहीं देती।
0: हर सावन में आती राखी, बहना से मिलवाती राखी, चांद सितारों सी चमकीली, कलाई को कर जाती राखी, जो भूले से भी न भूले, मन भावन क्षण लाती राखी, अटूट प्रेम का भाव धागे से हर घर में बिखराती राखी, सारे जग की अमूल्य चीजों से बढ़कर मोल रखाती राखी, सदा बहन की रक्षा करना भाई को बतलाती राखी।
1: हर बहना करती ईश्वर से यही प्रार्थना, भाई का जीवन हो सदा खुशनुमा, कभी न हो माथे पर दुख की लकीरें, भाई के जीवन की हो सदा सुंदर तस्वीरें। रिश्तों की धूम में है ये सबसे सुंदर संबंध,
0: भाई बहन के रिश्ते को जो बनाए अनूठा बंधन,
1: है वो निराला त्योहार रक्षाबंधन।
2: आइए मनाएं और करें सभी का अभिनंदन।
3: बहनों, आप सुन रही थी विशेष कार्यक्रम अनोखा बंधन रक्षाबंधन। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी उषा पांडे और खुशबू मिश्रा। बहनों, बरसात के मौसम में हमारी स्किन की, हमारे स्वास्थ्य की तो समस्या होती है, साथ में समस्या हमारे बालों की भी हो जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं पसीनों के कारण और बहुत ज़्यादा टूटते भी हैं। तो बहनों, इस समय सभी को बालों की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो बहनों, अगर हम कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाय डेली आजमाएं तो उससे हमारे बालों की समस्या बहुत जल्दी सही हो जाती है और हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि बहनों, केमिकल की अगर हम कोई भी चीज़ लगा लेते हैं तो उसके लिए थोड़े दिन के लिए तो हमारी बाल या स्किन कोई भी चीज़ों सही हो जाती है, लेकिन बाद में उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहनों, इसके लिए अलसी के बीज को उबाल कर उसके जेल को बालों में लगाने से बालों में चमक आती है। बहनों, अलसी के बीज हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। उसको हम उबाल लें और उसका जेल फटाफट निकाल के उसको, लेकिन हमें रखना नहीं है, तुरंत गर्म भी अलसी के बीजों का हमें जेल निकाल के उसे छान के और हम अपने बालों में लगा लें, उससे बालों में बहुत अच्छी शाइन आती है। ऐसे ही बहनों, जैसे मेथी दाना होता है और कलौंजी होती है, उसको अगर हम भिगो कर उसको पीस लें और उसका मास्क बना लें, और इस मास्क को अगर हम बालों में लगा दें और लगाने के बाद में आधा घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद में सादा पानी से सिर धो लें तो बाल सिल्की और मुलायम हो जाते हैं। बहनों, जैसे डेली यूज़ में आने वाला दही तो सभी के घर रखा ही रहता है। तो बहनों, अगर हम पे समय नहीं है ये सब कुछ करने का, तो हम दही का भी मास्क बना सकते हैं। दही को लेके फेंट लिया और उसको सिंपल तरीके से बस बालों में लगा लिया, उसके बाद में आधे या पौन घंटे बाद हम उसका सिर जैसे धो लेते हैं तो उससे हमारे बाल सिल्की शाइनी हो जाते हैं। तो बहनों, क्योंकि बाल रूखेपन से ही ज़्यादा टूटते हैं, जब हम अपने बालों में प्रॉपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घरेलू उपाय करते रहेंगे तो उससे हमारे बालों में जान बनी रहती है। ऐसे ही बहनों, एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा लेके उसका जेल निकाल के और अगर हम बालों पर लगाएं तो उससे भी बाल हमारे सिल्की और मुलायम रहते हैं। तो बहनों, यह तो थे कुछ हमारे घरेलू टिप्स। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। हम तो बस चलते चलते यही कहना चाहेंगे, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर हमें लगता है कि हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। इसीलिए बहनों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ अनुमति दीजिए नीतू को। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थीं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी नीतू सक्सेना। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 1:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में गाया कसम खून की फिल्म का ये गीत।
1: इसी

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे कसम खून की फिल्म का गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है अनपढ़, गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म का गीत। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, आज का अर्जुन फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत लिखा है अनजान ने, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में फिर उसके बाद हिंदी में, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 2400 घंटे पेट्रोलिंग

0: और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, X पर @AIR News हिंदी और Instagram पर AIR News।

0: एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
3: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102.2 लब्धों में का हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
1: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16 आना लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मित व्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
1: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
1: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
1: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
1: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
2: जी,
1: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
2: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
1: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
1: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
2: जी,
1: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
2: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
1: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
2: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं,
1: जैसे मोटे दीवारों वाले घर।
2: जी,
1: छायादार आंगन, हवादार कमरे।
2: जी,
1: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए।
2: जी,
1: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
2: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ

0: बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
1: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
0: जी,
1: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
0: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें।
1: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
0: जी,
1: वैसे विमलेश जी क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
0: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
0: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
1: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता,
0: जी,
1: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
0: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
1: जी
0: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
1: जी हाँ श्रोताओं, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
0: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
1: क्या सीख विमलेश जी?
0: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता।
1: जी
0: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
1: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
1: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
4: पिताजी,
3: क्या पता कब लोग सिधार जाऊं।
4: पिताजी, ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
3: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
5: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत हैं और ना कोई दूसरा काम।
4: जी
3: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
4: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
3: बेटा धीरेंद्र, देखो, धन दौलत जैसी चीजें स्थायी नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं।
4: जी।
3: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
4: जी पिताजी।
3: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
4: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
2: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे

0: और विचार किया।
1: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
2: हाँ, तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
3: भला वो क्या?
1: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को, स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
2: हाँ, ये ठीक रहेगा भैया।
0: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
1: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
2: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है, क्यों भाई धीरेंद्र?
3: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
1: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
0: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
1: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
3: हाँ,
2: आपका ऊंट खो गया है ना?
3: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
4: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
1: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
4: है?
1: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
4: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
3: नहीं नहीं,
4: अरे
3: नहीं,
4: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
3: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
4: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
1: नहीं,
4: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
1: वो
4: देखो, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
1: लेकिन
4: अरे, अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
1: क्या?
4: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
1: क्या कह?
0: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
4: मुझे कुछ नहीं सुनना।
2: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
4: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, अब चलो मेरे आगे आगे चलो। चलो चलो।
0: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
4: अब तुम सब राजा के पास चलो।
5: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
1: राजन, हम चोर नहीं है, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
6: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
5: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
6: तुम लोगों को कुछ कहना है?
3: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
6: अच्छा, तो ये बात है।
3: जी,
6: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
7: जी महाराज।
0: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
6: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
1: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
2: और महाराज,

0: वो अनार कच्चा है।
1: जब पेटी खोली गई, तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
2: खाइए खाइए, लीजिए।
3: जी महाराज,
4: धन्यवाद।
1: फिर पूछा,
5: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
2: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
6: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहां अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
7: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया, तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
5: वाह, बहुत खूब।
1: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
5: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
6: महाराज, वहां पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
5: क्या बात है?
2: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
5: अच्छा,
2: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
7: जी बहुत खूब।
5: लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
7: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
5: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
3: धन्यवाद महाराज।
2: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
5: मैं सचमुच चकित हूँ।
2: जी महाराज।
1: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
8: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।

0: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
1: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हाँ, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका

0: संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते, सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
1: सरला सरला बेटी, सरला बेटी।
2: अरे बाबूजी, आप
3: कहाँ खोई हो बेटी?
2: आप
3: जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
2: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। एक बात कहूँ?
2: जी
3: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की, पायलटों की बात करते हैं, तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
2: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
3: तो फिर देर किस बात की? लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
2: अच्छा,
3: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
2: पर
3: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
2: लेकिन बाबूजी, मैं धन्यवाद बाबूजी।
3: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
4: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
5: धन्यवाद सर।
4: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
6: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
4: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
7: सर, मैं बताऊँ सर?
4: हाँ, कहो।
7: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
4: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
7: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
4: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
2: हाँ, जी, सही बात।
4: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
2: सर, मैं बताऊँ?
4: हाँ, सरला तुम बताओ।
2: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
4: बहुत अच्छे सरला।
2: धन्यवाद सर।
4: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू सर।
0: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
8: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
0: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
9: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
2: बिल्कुल। I'm so excited. सरला मेरी
6: पहली
2: दोस्त
6: महिला

0: Yeah, landing
1: thing. Kamal.
2: Thank you.
3: Bahut zyada lagi.
2: Thank you. Dhanyawad.
3: Aap kitne acche tarike se chale gaye. Amazing.
4: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
5: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी।
4: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
5: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
4: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ाने रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
5: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
4: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
6: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को ये डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
4: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
7: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की प्रथम सभा भी यहीं पर संपन्न होती है। आज शाम 5:30 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं आपका रेडियो दोस्त अरविंद कुमार। दोस्तों, कहा जाता है भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कारों की संवाहक भी होती है, और जब भाषा

संस्कृत हो तो उसके साथ जुड़ जाती है भारत के हजारों वर्षों की ज्ञान परंपरा, दर्शन, साहित्य और जीवन मूल्य। वहीं दूसरी ओर हमारे त्यौहार केवल उत्सव नहीं बल्कि रिश्तों को सहेजने और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने के अवसर भी हैं। आज की बात इन्हीं दो महत्वपूर्ण विषयों पर, विश्व संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण भाषा है संस्कृत। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, संस्कृत काव्य, नाट्यशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, खगोल और दर्शन जैसे अनेक ज्ञान विषयों की समृद्ध परंपरा संस्कृत में विकसित हुई है। संस्कृत को केवल अतीत की भाषा मानना उचित नहीं होगा दोस्तों। आज भी संस्कृत में अध्ययन, अध्यापन, शोध और रचनात्मक कार्य निरंतर हो रहे हैं। विश्व संस्कृत दिवस संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता और उसके अध्ययन को प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। यह दिवस हमें अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम संस्कृत को केवल कठिन व्याकरण या प्राचीन ग्रंथों तक सीमित न समझें, बल्कि इसे अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ने के एक माध्यम के रूप में देखें। यदि हम ध्यान दें, माता पिता, मित्र, गुरु, विद्या, ज्ञान, शांति, संस्कार, इनमें से अनेक शब्द हमारे दैनिक जीवन में आज भी सहज रूप से प्रयोग होते हैं। संस्कृत का एक प्रसिद्ध वाक्य है, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनय प्रदान करती है। और यही संदेश आज के युवा जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। ज्ञान के साथ विनम्रता और आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों से जुड़ाओ। और अब बात उस पर्व की जो भाई बहन के स्नेह को समर्पित है, रक्षाबंधन। दोस्तों, रक्षाबंधन केवल कलाई पर बांधी जाने वाली एक राखी का नाम नहीं है, ये विश्वास, स्नेह, अपनत्व और जिम्मेदारी का प्रतीक है। भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लेता है। लेकिन आज रक्षाबंधन के इस भाव को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। रक्षा केवल भाई द्वारा बहन की नहीं, एक दूसरे के सम्मान, अधिकार, आत्मसम्मान और भावनाओं की रक्षा भी है। आज की युवा पीढ़ी के लिए रक्षाबंधन का संदेश यही हो सकता है कि रिश्ते केवल परंपराओं से नहीं बल्कि विश्वास और संवेदनशीलता से मजबूत होते हैं। भाई का रिश्ता बहन से बचपन की शरारतों से लेकर जीवन के संघर्षों तक साथ चलने वाला रिश्ता है। कभी नोक झोंक, कभी शिकायत, कभी हंसी और कभी भावनाओं से भरी खामोशी, इन सब के बीच ये रिश्ता अपनी आत्मीयता बनाए रखता है। और शायद इसीलिए राखी का वो छोटा सा धागा भावनाओं को इतना बड़ा संसार अपने भीतर समेटे होता है। दोस्तों, आज की बात के ये दोनों विषय हमें अपनी जड़ों और अपने रिश्तों से जुड़ने का संदेश देते हैं।

किशोर कुमार की आवाज़ में हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का आप गीत आप सुन रहे थे। रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत आरटी बर्मन का था। दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए

0: वे हम आपको सुनवा रहे हैं स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित एक साक्षात्कार, तीज त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा और हमारी जागरूकता। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मथुरा से बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जैसा कि शुद्ध एवं मिलावट रहित खाद्य पदार्थों का सेवन करना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, और जब भी बाज़ार में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसमें मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, और विशेषकर हमारे जब तीज त्यौहार आते हैं तो उस समय काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, और खाद्य सुरक्षा विभाग भी इस दिशा में काफ़ी सतर्क रहता है। और अभी विगत कुछ दिनों में अभियान चलाकर विशेष रूप से दुग्ध उत्पादों पर ध्यान दिया गया है, और छापेमारी की कार्रवाई कर ऐसे मिलावटी जो डेयरी उत्पाद हैं वो भी पकड़े गए हैं। तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी मथुरा श्री जतिन कुमार सिंह जी।
2: जी नमस्कार सभी श्रोताओं और आप सभी आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि त्योहारों पर थोड़ी मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, जिसके प्रति खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग मथुरा बिल्कुल सतर्क है और एकदम पैनी निगरानी बनाए हुए हैं, और हमारे द्वारा टीमों को गठित कर दिया गया है जो कि विभिन्न बाज़ारों में और कस्बों में जाकर निरीक्षण करेंगी, और दुकानों का निरीक्षण में अगर कहीं भी कोई संदिग्ध एक्टिविटी हमें मिलती है तो उस पर हमारी टीम द्वारा सैंपल सीजर और आगे अगर कुछ केमिकल पाए जाते हैं तो उसके आधार पर उस पर BNS की धाराओं में हम कार्रवाई भी की जाएगी। और जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से विभाग द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें हम लोगों ने पनीर की डेयरियों पे, पेड़ों पे, सॉस पे कार्रवाई की, और जिसमें हमने करीब 5,04,000 किलो पनीर, 10,000 लीटर दूध और 900 किलो पीड़ा जो अनुमानित कुल लगभग 40 लाख रुपए थी उसको नष्ट भी कराया गया था। और कई डेयरियों पे हमें कुछ अपमिश्रक जैसे टीनोपाल, रानीपाल और कोई वाइटनिंग एजेंट मिला, रंग कार्ड, सेफोलाइट, तो जहाँ हमें जो ऐसे हानिकारक केमिकल हमें जहाँ मिले थे तो वहाँ पे BNS की धाराओं में, सुसंगत धाराओं में उन पे प्राथमिकता भी दर्ज कराई। अभी तक हम लोग 4 लोगों पे, डेयरी वालों पे हम FIR भी दर्ज करा चुके हैं, और जो भी जहाँ जैसे ये केमिकल पाए गए और जो दूध और दूध पदार्थ को जैसे कि है कि हमारे एक्ट में उसको अपने मूल रूप में बेचने के लिए हमारे यहाँ अलाउड है। और अभी एक 15 अगस्त को हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा एक आदेश भी पारित किया गया है, अगर दूध और दूध पदार्थ जैसे आपका पनीर, खोया, घी, उसको अगर मूल रूप के अलावा उसमें किसी प्रकार की विजातीय वसा या कोई हानिकारक केमिकल, आपका सोयाबीन और भी ऐसे एमल्सीफायर, सर्फेक्टेंट मिला के अगर उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है उसके मूल रूप से और उसको आम जनमानस के लिए अगर बिक्री की जा रही है तो उसमें बड़े कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर कोई ऐसी डेयरी फर्म अगर ऐसा करता पाया जाता है तो वहाँ पे नमूना तो संग्रहण किया जाएगा, उसके अलावा जो भी हुआ उसका माल होगा सीज किया जाएगा, जो विनष्टीकरण होगा वो किया जाएगा, और उनमें BNS की धाराओं में FIR भी की जाएगी अगर कोई केमिकल की वहाँ हमें मौके पे पाया जाता है। तो एक यहाँ मथुरा जनपद के जितने डेयरी संचालक हैं जो कि पनीर, खोया का निर्माण करते हैं, तो उनसे एक अनुरोध है कि वो जो दूध और दूध पदार्थ बनाए उसको अपने मूल रूप में बनाए, उसमें किसी प्रकार की विजातीय वसा, कोई केमिकल उसका प्रयोग कदापि ना करें, क्योंकि अगर ऐसा प्रयोग करेंगे और मौके पे अगर निरीक्षण में पाया जाता है तो फिर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह यहाँ मथुरा के जो हमारे ब्रजवासी के आम जनमानस से हमारी एक अपील भी है कि अगर आपके आसपास आपको ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधियों के बारे में अगर जानकारी होती है या सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत आप हमें चाहे फ़ोन करके चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं, और जो सूचना हमें प्राप्त होगी वो गुप्त रखी जाएगी और हम लोग उसका कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा, और जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त है और उन पर हम लोग कठोर कार्रवाई कर सकेंगे।
1: जैसा कि आपने बताया कि जो दुग्ध पदार्थों में टीनोपाल जैसी जिनका इस्तेमाल विशेषकर कपड़ों की धुलाई आदि में होता है, इस तरह के जो हानिकारक जो केमिकल मिल रहे हैं तो इसका बहुत विपरीत असर पड़ता है लोगों के स्वास्थ्य पर। जहाँ इन खाद्य पदार्थ बच्चे भी सेवन करते हैं, बड़े लोग भी सेवन करते हैं, जिनकी वजह से वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, तो इस तरह के अपराध को आप किस तरह से देखते हैं?
2: जी ये बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है जो कि जनता के स्वास्थ्य के साथ ऐसे केमिकल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के कार्रवाई की जा रही है। उन पे विभाग द्वारा नष्टीकरण, जब्तीकरण के अलावा उन पे BNS की धाराओं में उस पे FIR करा के और उनको जेल

0: भेजा जा रहा है, और ऐसे जो केमिकल का प्रयोग करके बना रहे हैं उन पे कहीं भी कोई रियायत नहीं दी जा रही विभाग की तरफ से, कड़ी कार्रवाई उन पे हो रही है।
1: अभी हाल ही में जो राया में दूध का जो टैंकर पकड़ा गया और छाता में जो काफी मात्रा में जो पनीर पकड़ा गया, ये दो बड़ी कार्रवाई की गई, तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: जी, जैसे कि हमने बताया कि हमें इनपुट प्राप्त होते हैं कहीं से कि कहीं ऐसा कोई डेयरी चल रही है, कहीं चोरी छुपे जो कि गलत काम कर रहे हैं। तो ग्राम नगला उटावर में को मैं टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ बाहर से 2-4 दिन से अभी कोई डेयरी संचालन किया जा रहा है जो कि उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध है। टीम वहाँ मौके पर पहुँची, और मौके पर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देख के वहाँ पाया गया कि परिसर में स्किम मिल पाउडर, रिफाइंड केमिकल जो टीनोपाल, रानीपाल, आपके सेफोलाइट, सोयाबीन, इनका प्रयोग करके पनीर का निर्माण किया जा रहा था। तो टीम ने तुरंत मौके पे पनीर का संचालन बंद कराया, और वहाँ जो जितने भी वहाँ खाद्य पदार्थ और अपमिश्रक थे सबका नमूना संग्रह कर जाँच हेतु तुरंत प्रयोगशाला प्रेषित किए गए। वहाँ जो दूध था 3,000 लीटर उसको नष्ट कराया गया, जो पनीर था कम से कम 500 किलोग्राम लगभग उसको जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खुदवा के उसको पूरा नष्ट कराया गया, और जितने जो स्किम मिल पाउडर, सोयाबीन, रिफाइंड थे उन सबको सीज कर दिया गया। और जो वहाँ डेयरी संचालक था जो कि मूलतः पलवल हतीन का रहने वाला था, उसके खिलाफ शेरगढ़ थाने में प्राथमिकता दर्ज कराई गई।
1: जैसा कि अब तीज त्यौहार आ रहे हैं तो मिठाइयों की बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है, और ख़ास करके अब रक्षाबंधन आ रहा है तो घेवर बाज़ार में बहुत बिक रहा है, इसको लेकर भी नज़र रखी जा रही है।
0: जी, जैसे आगामी पर्व हैं, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, उसके लिए विभाग अपनी तैयारी कर चुका है। इनपुट जुटाए जा रहे हैं, अभी सूचना प्राप्त की जा रही है कि जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामग्री यूज़ करके जो लोग बनाते हैं या जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे पूरी नज़र बनी हुई है। और जो भी मथुरा शहर के जनपद के विभिन्न कस्बे हैं, गोवर्धन है, बरसाना है, वृंदावन है, मावन है, राया है, माट है, सब जगह टीमें जाएंगी, और वहाँ जा जा के वहाँ दुकानें, गोदाम सबका निरीक्षण किया जाएगा। और कोई संदिग्ध हमें वहाँ अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ें पाई जाती हैं तो नमूना भरने के साथ साथ जो वहाँ और कठोर कार्रवाई भी होती है वो उन पे की जाएगी। जैसा कि अभी कल भी हम लोग, हमारी टीम मौके पे रास्ते में चेकिंग कर रही थी तो एक दूध का टैंकर हमें मिला जिसको चेक किया गया था, वो अपने दस्तावेज दूध के क्रय विक्रय के नहीं दे पाया। संडे होने पे जब उसके दूध को खुलवा के चेक किया गया तो उसमें लगा कि गुणवत्ता सही नहीं है। फिर वहाँ बगल में एक डेयरी पे जाके उसकी दूध की चेकिंग करवा गई तो उसमें पुष्टि हुई कि उसमें स्टार्च की पुष्टि हुई और SNF और फैट भी कम था। जब हमें ये पुख्ता हो गया कि दूध में गुणवत्ता सही नहीं है, मानकों के अनुसार नहीं है, तो टीम द्वारा वहाँ सैंपल लेने के उपरांत जो 2,000 लीटर दूध था उसको वहाँ नष्ट करा दिया गया।
1: जब इस तरह की खबरें आम जनमानस में जाती हैं तो लोगों के मन में एक चिंता उत्पन्न होती है कि आखिर हम कैसे पहचाने कि कौन से खाद्य पदार्थ सही हैं। अधिकांश लोग डेयरी उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं दूध के रूप में, पनीर के रूप में, मावे के रूप में, तो कैसे इन खाद्य पदार्थों की पहचान कर सकते हैं?
0: जी, इसके लिए ये है कि आम जनमानस से हम ये अपील करेंगे कि जो आप प्रतिष्ठित दुकानदार हैं, जो विभाग के लाइसेंस लिए हैं, जो आपको बिल पे सामान देते हैं, तो आप उनसे ज़्यादा क्रय करें। और जो पैकेजिंग के दही है, पनीर है, प्रोडक्ट हैं, दूध हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं। उसमें आप पैकेजिंग देख सकते हैं कि वो कब निर्माण हुआ है, कहाँ से निर्माण हुआ है, उस पर वो कितना फैट का है, कितने SNF का है, ये सब चीज़ें ग्राहक जागरूक होकर खरीद सकता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रथम दृष्टया आप उसकी जांच जैसे कर सकते हैं, जैसे अभी इस समय खोए का ज़्यादा डिमांड रहती है तो खोए में बहुत जगह स्टार्च मिलावट की जा सकती है, तो स्टार्च का आप जो अगर आम ग्राहक है उसको भी जांच कर सकता है। एक उसमें सिंपल टेस्ट होता है कि आप टिंचर आयोडीन या आयोडीन आपको कहीं मिल जाती है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, अगर आप उसमें स्टार्च की कुछ बूंदें डालेंगे तो जो असली खोया होगा वो तो नीला रहेगा, लेकिन जो जिसमें मिलावट होगी स्टार्च की वो गहरा एकदम बैगनी टाइप और काला रंग का होने लग जाएगा, तो वो संकेत देता है कि इसमें खोए में मिलावट है। ऐसे ही आप दूध के लिए भी आप जब चेक करते हैं तो दूध में पानी की मिलावट है कि क्रीम खिंचा हुआ है, तो उसको आप कांच के सतह पे रखेंगे बूंद को, तो अगर वो प्योर दूध होगा तो पीछे अपने एक टेल छोड़ जाएगा, लेकिन अगर उसमें मिलावट है पानी की या उसमें फैट कम है तो वो बूंद बहुत जल्दी लुढ़क जाएगी और वो कोई पीछे अपनी कोई टेल नहीं छोड़ेगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं फैट के साथ छेड़छाड़ की गई या

0: नहीं मिलाया गया। तो ये कुछ त्वरित टेस्ट है जिससे हम लोग जान सकते हैं, और बाकी जो डिटेल एनालिसिस के लिए तो लैब से हम लोगों को पुष्टि करानी होती है।
1: आम जनमानस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, आम जनमानस के लिए यही संदेश है कि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, और विभाग की ये मंशा है कि गुणवत्तापूर्ण सुरक्षित खाद्य पदार्थ पब्लिक को उपलब्ध हो, और कहीं भी अगर आपको संदेह होता है कि कोई गतिविधियाँ हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, तो विभाग को आप जरूर सूचित करिए। और ये भी अपील रहेगी कि ज़्यादातर आप जो सामान लें वो बिल पे लें और देख परख के लें, उसको चेक करके लें, पैकेजिंग को अच्छे से देख लें, उस पे सारे वहाँ जो पैकेजिंग के वो मानक नियम पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तभी आप उसको सामान को खरीदें।
1: जी, उसमें ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति सस्ते खाद्य पदार्थ अगर
0: हाँ
1: बेच रहा है तो मिलावट की आशंका हो सकती
0: जी,
1: है।
0: इसमें आपने जो बताया तो इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि एक सीधा सा चीज़ है कि इस समय जो दूध की रेट है वो 60 से 70 रुपये लीटर के करीब है, गांव और शहरों को मिला के, और 1 किलो पनीर या खोया बनाने में अनुमानित 4-5 लीटर की हमें आवश्यकता होती है, और फिर जब वो बनाता है तो उसका ईंधन लगता है, लेबर लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, तो वो कॉस्ट जोड़ के आपको 350 के करीब भी कोई भी होगा उससे नीचे वो देगा तो उसको वो नहीं दे पाएगा। और
1: जी,
0: कोई आपको अगर कोई पनीर 200 रुपये, 250 रुपये या खोया दे रहा है तो संभवतः उसके साथ मिलावट या छेड़छाड़ की गई होगी। तो इसका भी ग्राहक जागरूक होकर चीज़ें इसको समझ सकते हैं कि सस्ते के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, अच्छी और गुणवत्ता का खरीदें।
1: श्रोताओं, हमारे साथ रहे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से सहायक आयुक्त श्री जतिन कुमार सिंह जी। और जैसा कि बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न तरह के अभियान चलाकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन आम जनमानस को भी इसमें कुछ बातों का ध्यान रखते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपने हमारे श्रोताओं के साथ ये जानकारी साझा की और उनको जागरूक भी किया, इसके लिए धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
2: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित भेंट वार्ता, तेज त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा और हमारी जागरूकता। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मथुरा से बातचीत कर रहे थे जितेंद्र सिंह। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

अरिशा चुनाए शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाजों में। इस गीत के साथ ही युववाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अरविंद को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल नदी के किनारों और बस्तियों में जीवित बचे लोगों और बाढ़ में बह गए शवों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध के टूटने की खबर ने एक बार फिर बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु

0: 21 तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की जिन्हें नेपाल से बचाया गया। ये तीर्थ यात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी अब कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीद है कि इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होगा। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो के अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान राजा हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संध्या 6:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक, जिसमें आज हास्य वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक होगा जब हम पहली बार बोरो खाए हुए गए। वार्ताकार होंगे कोमल प्रसाद शर्मा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण समय होगा 6:30। संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें चर्चा के विषय होंगे बाह्य परजीवियों से पशु सुरक्षा और किसान क्रेडिट कार्ड। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित भेंटवार्ता, ब्रज में खेती के बदलावी आवश्यक बदलाव, डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता से बातचीत करेंगे दिलीप यादव।

संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8 बजे आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। रात्रि 8:10 पर विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर आप सुन सकेंगे भेंट वार्ता। प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र, उप कुलपति महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश से, सह आचार्य हिंदू कॉलेज दिल्ली डॉक्टर सुनील कुमार जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। रात्रि 10 बजे सुन सकेंगे कार्यक्रम प्रदेश दर्शन, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा विदुषी कमला बोस का ख्याल गायन, राग होगा रागेश्वरी, तबले पर संगति गुलाम साबिर की, सारंगी पर हरिबाबू कौशिक की। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिलाते हैं, आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर विशेष भेंट वार्ता। प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र, उप कुलपति महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश से, डॉक्टर सुनील कुमार जोशी सह आचार्य हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की बातचीत। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रसारण समय याद रखिएगा रात्रि 8:10। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

समवेत स्वर में अभी आप सुन रहे थे बाल कृष्ण बाल की ये देशभक्ति परक रचना। इसी रचना के साथ ही देशगान का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:15 हुए हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए हास्य वार्ता, जब हम पहली बार बोरो खाए भी गए। वार्ताकार हैं कोमल प्रसाद शर्मा।
1: भैया बात दिनारी है गई है, अब तो बगत्ती में पानी है। ससुरार ते संदेशो आयो के मेहमान बूरो खाई जाए। जिस सुन के हमारा तो पाम छटंकी उठवे लगे, चूँकि जमाई लाल की अदाएँ और ससुरार की खातर जग जानी देश बखानी है। दामाद बनवे के ताही लोग कितेक उत्सुक रहे हैं, जी बताइवे की आवश्यकता ना है। कहवे को जी मतलब हुए है कि अगर दामाद बन के ठसक और अदा दिखाईवे को अवसर नाम तो कदाचित ही कोई समझदार आदमी ब्याह के ताई तैयार हो। तो ससुरार की जी खातर खुशामदी है जो दूर ते भूर के लड़ुआ की तरियाँ चमके है। और जाकू जो ना खावे वो रोवे है, और जो खाए वो पछतावे है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहो है कि फूले फूले फिरते हैं आज हमारा ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाँव। भैया अब अगारी की सुनो, हम पहली बार बूरो खाइबे की ताहीं ससुरार जाइबे की तैयारी करवे लगे। नए कपड़ा लत्ता सिम्बाइबे डार दे और जाइबे ते पहले सोचवे लगे कि कहूँ ऐसो न होए कि हमें दामाद की भांत व्यवहार करवाओ न आवे, कहूँ कछु चूक न है जाए। सो हम अपने एक अनुभवी मित्र से मिले और बूझी के भैया ससुरार में पहुँच के तुम कहा करते हैं और कहा कहो करते हैं। वो बोलियो कि भैया पिछली बार जब मैं अपनी ससुरार गया हो तो पहुँचत खे मैंने कही कि बहुत गर्मी है

छिड़काव होनो चाहिए। जब छिड़काव है गए हो तो मैंने कपूर मिलो भयो चंदन मोबायो, सो ये तेक चैन की वंशी बाजी के कछु बूझो मत। भैया बाकी जीवात हमने गांठ बांध ली और मैयो की जिस सीख वो हमने रट ली कि लाला पहली बार बूरो खाइबे ससुराल जाए रहो है, सो थोड़ो थोड़ो खइयो मत खाइबे में नाम निकासे आवे के रद्दू के नगरा को मेहमान तो मथुरा के चौबीनू जीत गयो। भैया अब अगारी कहवाल सुनो, हम सनूने ते एक दिना पहले बंठन के सज समर के बूरो खाइबे निकस परे, मैयो ने ले जाइबे के ताही बूरो और घेवर एक दिना पहले ही मंगाए दियो हो, वजन इते कह गयो हो कि हम तो गधा की तरियाँ लद गए। बहुत सामान सट्टे ले लाद के बस में हम ते कहा बीतना बीती ही बाकू और सुन लियो। हम बस को इंतजार करे हुए लगे एक खटारा बस आई, बस में बूरो खाईबारे न की भारी भी रही, बस रुकी तो दो चार बूरो खाईबारे जातरियाँ उतरे मानो अवई अवई जेल ते छूट के आए हों। हम अपनी जान को हथेली पर धर के बस में चढ़ गए, हमने पूरी बस में सरसरी सी निगाह घुमाई तो पता चलो कि कहूँ पाँव टेकबे की जगह ना आए, सो हम दरवाजे पर ठाड़े है गए, पर जिस ठाड़ो है वो हमको महंगो पड़ो चूँकि ड्राइवर के केहू प्रयास करवे पे वो बस चालू न भई, तो पाँच सात यात्रियों के संग हमको बस को धक्का लगामनो पड़ो। भैया बूरो खाइबे की होश ऐसी भयो करे है, बस चालू है गई तो हम अपने घेवर और बूरे को निरीक्षण करे हुए लगे, हमें अपनों हाथ ढूंढे में परेशानी भई चूँकि दस बारह हाथन के बीच में हमारो हाथ वाई तरियाँ फंसो भयो, जा तरियाँ कौरव सेना के बीच चक्र व्यूह में अभिमन्यु फंसो भयो। बस में कई यात्री विभिन्न योगासन को अभ्यास कर रहे हैं, कोई एक टांग पर ठाड़ो बहुलासन कर रहे हो, कोई यात्री जानबूझ के पीछे की महिला यात्री के ढिंगा सट्यो स्पर्श को सुख ले रहे हो, जात पात का कोई भेदभाव ना हो, अमीरी गरीबी सब समान, स्त्री और पुरुष की असमानता हो दूर है चुकी ही, ऐसी एकता को दर्शन करो अपने आप में गौरव का विषय हो। यात्री के आपसी विवाद थे बस के अंदर संसद भवन जैसा माहौल बन तो जा रहे हो, पर हमें कहा लेना देनो क्योंकि हमें तो बूरो खाइबे की लग रही है। भैया अब अगारी की सुनो, गोधन बाबा की ऐसी मेहर भई कि हम गऊ धूर के खन पे ससुराल पहुंच गए, अब तो घर में चहल पहल मच गई कि जीजाजी आए गए मेहमान आए गए बूरो खाइबे। हमने कही कि गर्मी बहुत है, चारपाई बाहर निकासो और छिड़काव करो चंदन लाओ। सिगरे जने अचंभे में पड़ गए और हमारी आज्ञा को पालन करते रहे। रात को भोजन में पूड़ी कचौड़ी सब्जी और कटेमा दही फसेमा बूरो, सो हमने मैयो की बात याद करके पूड़ी तो एक ही खाई पर वह कटेमा दही और फसेमा बूरे को सफाया कर दियो हो। भैया अब का भयो कि रात को हमें जाड़ो लगियो, हमारी कपकपी बंध गई, हम खाट पे थे उठ के वह छप्पर के नीचे जा लेटे जहाँ भैंस बंधी ही, बुआई खन कोई पेशाब करवे के ताई बितकू आयो और मुँह बैठ गयो, जहाँ हम चादर ओढ़े भूसके ऊपर लेटे भई हमने होली सीना कही कि नक धीमे थे, बुआ ने हमको पहचान लियो और बोलियो कि जमाई लाल न्या दुबके बैठे हो, तब हमको अपनी चूक मालूम पड़ी कि हमारो मित्र तो ससुराल गए हो बैसाख के महीना में और हम आए सावन के महीना में, पुरवैया ठंडी ठंडी हवा चल रही, पर भैया गनीमत जी रही कि वह भले आदमी ने कावते जिक्र नाई करी। भैया अब अगारी को अहवाल सुनो, दूसरे दिना सनूनो रच पच के हमारे ताई भोजन तैयार भई, पर हमने एक ही पूड़ी खाई और रात के भोजन में हूँ आधी कचौड़ी खाई, यूँ कहो कि हमारे संकोची स्वभाव ने और मैयों की सीख ने हमको भूखोई सुवाई दियो, पर नींद कोने आवे, हम आधी रात आऊँ तो पाँव पटकत रहे, हार के हमने घरवारी को होली सीना जगायो, बातें बोले कि देखो हमें तो बहुत जोरन की भूख लग रही है कछु खाइबे के ताही लाओ, वो बड़े सोच में पड़ गई कि अब आधी रात में कहाँ लाऊँ, फिर कछु देर पाछे बाकू याद आयो कि मैयो ने मो एक लड़ुआ दियो हो, सो वो आले में धरियो है बाकू लाए दऊँ, बा ने वो लड़ुआ लाए के हमको गाय दियो, हमें भूख लगी ही सो हमने वो साबुत लड़ुआ मोहड़े में धर लियो, इतकू का भयो के खटर पटर और बातनते बाकी भाभी जई परी और हमको बैठो देखो तो वाने बूझी के जीजा जी कहा बात है कैसे बैठे हो अब।

ते न तो लड़ुआई खायो गयो और न शर्म के मारे बाहरी निकासी हो। वाह खन सरहज ने सोची कि जीजा जी को काहे गयो, चों हूं हूं कर रहे और बाने अक करीना धक्क झट सीना हेला दे के सासू जी को जगा दियो। अब तो हल्ला सुन के ससुर सारे सारी सिगरे जग पड़े और जो बूझ तो वो हम हूं करते। अब सिगरे घबराए गए और बोले कि मेहमान को तो हूं की बीमारी लग गई है और उलायती सीना डॉक्टर को बुलवाओ। भैया अब अगारी की सुनो, गांव में एक झोला छाप डॉक्टर हो सो वो आए गए। डॉक्टर ने हमारो गाल देखो और बोलियो कि इनके तो बहुत बड़ा फोड़ा है गया, जा गाल को ऑपरेशन हो गो। ससुर जी बोले कि डॉक्टर साहब जो कछु हो जल्दी करो, मेहमान को कछु है न जाए। अब डॉक्टर ने हमारे गाल

जल्दी करो, मेहमान को कछु है न जाए। अब डॉक्टर ने हमारे गाल को चीरवे के औजार निकासे, सोई हमने वो लड़ुआ दूसरे गाल में धर लियो। भुजा गाल पर हाथ धरतो हम झट सीना दूसरे गाल में धर लेते। अब डॉक्टर बहुत परेशान है गया और बोलियो कि भाई जितो ऑटोमेटिक विलायती फोड़ा है, अब मैं कौन से गाल को ऑपरेशन करूँ, अब जे इलाज मेरे बस की बात ना है। और जी कह के वो ऐसो रफू चक्कर है गए हो जैसे गधा के सिरते सींग। भैया हो अब का भयो, अब बाकू सुन लो, सासू जी ये कैसे हूँ जानकारी मिल गई सो बिन्ने सिगरेन को भजाई दियो। और हमसे बोली कि मेहमान अब लड़ुआए होले होले खाई लो चाहे निकासे देव। भैया हमने ऐसो ही किया, तब हमारी सांस बगदी और फिर सिगरो घर जुड़े आयो। और हमसू सारी सरेज कहवे लगी कि त्यारी सासू ने त्यारी जान बचाई है, ना तो त्यारे गालन को मलिदा बन जा। तो सो अब ऐसो करो कि अपनी सासू जी की आरती उतारो। भैया अब ताऊ तो हमारी बोलती बन गई, पर अब तो हमसे रह गए और बुआखन अपनी झेप मिटाइवे की ताई हमने जी आरती गाई। ले तो सुनो।

0: भैयाओ अब अगारी को अहवाल सुनो। सनु ने ते दूसरे दिना मनु नौ सो कैउ तरिया के पकवान मिष्ठान बनवे लगे। खसबोई के मारे हमारे मोहरे में पानी आ जा तो सो हमने निश्चय कियो कि चो भूकन मरे जाने करी शरम वाके फूटे करम। जब हम भोजन के ताहीं गए तो कहा देखत हैं कि मोहल्ला परोस की हुरदंगी जोरियाइए सो देखत केम हमारी तो फूक निकस गई। बिन हरसंडीनु हमारो घेरा दे लियो बिन में कोई गोरी कोई कारी कोई लंबी कोई गट्टी कोई पतरी कोई मोटी ही सिगरीनु हंसी मजाक शुरू कर दई और कुफरन तनु बकें हमारे मौन धारणे देख के हमें नौचिवे खोसवे लगी। हमने सोची कि बीज बचैन मोहवे कू जाए सो गोधन बाबा ते डोल लगाई क्या तुमने द्रौपदी की लाज बचाई न कि तकू नजर मारो। भैयाओ इते एक में सासू जी आए गईं बिन ने हमारी आँखें में आंसू देखे सो सिगरी हुरदंगी नकू भयाई दियो। हम भोजन करवे लगे हमारे समूही सासू जी बैठ गई और सुनाए लगी कछु आ रखी कछु पा रखी खीर में घी अरके माओ सो बातन ही बातन में सिगरी खीरे सपूट गई। वह घी को ऐसा असर भय हो कि हमारी पोंख चढ़ गई और रात भर खेत की परकम्मा देते रही। धोतारे खन्ने की आँखें लगी जब आँख खुली तो सिगते पहले हमने अपना पजम्मा देखियो कि कहूँ अगारी ते गीलो और पिछारी ते पीरो तो ना है गयो। पर बरसाने वारी ने किरकिरी हेवे ते लाज राख ली और सासू जी ते विदा लेके अपने गांव की गैल नाप दई सो भैयाओ जे रहो एवाल जब हम पहली बार भूरो खाए गए।
1: जब हम पहली बार बोरो खाए गए अभी आप सुन रहे थे ये हास्य वार्ता। वार्ताकार थे कोमल प्रसाद शर्मा और अब लीजिए सुनिए ये ब्रज लोकगीत स्वर है रोहतास का।

अरे बहना, सोनो सरोनो कैसे। अभी आप सुन रहे थे रोहतास के स्वर में ये ब्रज लोकगीत। इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे संजीव अभ्यंकर और साथियों के सुरों में दशावतार फिल्म से विभक्ति रचना। आइए अब सुनते हैं गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के सुरों में काला बाजार से ये भजन।

गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे काला बाजार से ये रचना। आइए अब सुनते हैं फिल्म जोगन से गीता दत्त, गीता रॉय के स्वर में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे गीता रॉय के सर में जोगन फिल्म से ये भक्ति रचना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति संध्या वंदन की। स्वर है मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम है गोपी।

मोहम्मद रफ़ी के सुर में अभी आप सुन रहे थे गोपी फिल्म से राजेंद्र कृष्ण की रची ये भक्ति रचना, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं रूप किशोर शर्मा।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनवे वाले सभी भैया बहनान को रूप किशोर, आज भाई बहन के प्रेम को त्यौहार रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई। और भैया ब्रजांचल में तो रक्षाबंधन को त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जावे। और भैया त्यौहार कोई भी होए, त्यौहार सब सुख शांति के समृद्धि के प्रतीक होएं। सुख शांति समृद्धि के काजे हमें कछु न कछु अपनो काम धंधो करना पड़े। और बात करें अपने किसान भैयान की, तो भैया हमारे किसान भैयान के पास खेती के संग ही संग पशुपालन को भी काम होए। और पशुपालन में इन दिनान में जो बरसात के दिना होए, उनमें बाह्य परजीवी उनके शरीर पर लग जाओ करें, जैसे किलनी, जू, पिशू, मक्खी, मच्छर। और इन सबते अपने पशुओं को सुरक्षित रखवो, उनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन के काजें बहुत ही जरूरी होए। बाह्य परजीवी ते अपने पशु की सुरक्षा के काजें

जहाँ आप अपने पशु को बांधें व जगह को साफ रखें, जो आपको नौरो होए बाड़ो होए जहाँ पशु बंध रहे होए, वहाँ साफ सफाई को विशेष ध्यान रखें, वहाँ में कीचड़ न होए और आसपास गीलो न रहे। जो वाको फर्श होए या दीवार होए, उनमें जो दरार होए, उन दरारन को सब को सीमेंट ते बंद कर दें, क्योंकि जो किलनी जू होयो करें वो इन दरारन में छिप जावें। बाड़े में चूने को छिड़काव करते रहें, फर्श को अच्छी तरह से साफ रखें, पशु को भी साफ रखें। पशुशाला में शाम के समय नीम की पत्ती को धुआं करें, या हमारे जो फसल अवशेष होएं वाको भी धुआं कर सकें। पशुशाला को साफ और सूखी हवादार रखें। कपूर और नारियल को तेल मिलाकर जहां अपने पशु को किलनी लग रही हो वह जगह पे आप लगा सकें। भैया, पशु को मक्खी मच्छर से बचाव के काजें, आप शाम के समय नीम के पत्तान को तो धुआं कर सकेंगे, और अगर रह सके तो मच्छरदानी को भी उपयोग कर सकें। पशु को समय समय पे अपने पशु चिकित्सक की सलाह ते उनको परजीवी रोधी दवा, स्प्रे या डिप की भी व्यवस्था कर सकें। तो ये तो चर्चा रही भैया बाह्य परजीवियों से पशु सुरक्षा। और जब भैया पशु स्वस्थ रहेगो, मन प्रसन्न रहेगो, और जब मन प्रसन्न रहेगो तो भैया तीज त्यौहारों बड़े अच्छे लगो करें। और जब तीज त्यौहार अच्छे लगो करें तो बात चल रही है भैया हिंडोला झूलवे की। तो अलका राजेश के स्वर ते सजायो जी एक लोकगीत, जाकि बोलें हिंडोला झूलन अयो रे बलमा। तो भैया सुनो जा लोकगीत को।

0: हिंडोला झूलन अयो रे बलमा, जा लोकगीत को अपने स्वर ते सजाए अलका राजेश ने। और भैया बात करें अब खेती बाड़ी की, तो आज हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं। ब्रज में खेती में बदलाव जरूरी, ब्रज में खेती में बदलाव जरूरी। और आज के जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, और इनसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप यादव। तो भैया सुनो, जब भेंट वार्ता को ब्रज में खेती में बदलाव जरूरी।
1: किसान भैया हमारे संग हैं चंद्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति संजीव गुप्ता जी। आप एडीजी दलहन तेलहन भी रहे हैं, और देखो सीएस है कानपुर यूनिवर्सिटी की हम बात करें, चूंकि हम ब्रज से हैं, मथुरा से हैं, तो वेटनरी विश्वविद्यालय को बहुत बड़ा 1450 एकड़ को कृषि फार्म लंबे समय तक, कई दशकन तक सीएसए के अधीन ही रहे। वेटनरी की स्थापना के बाद में वो वेटनरी विश्वविद्यालय के अधीन आया। तो कानपुर और मथुरा, कानपुर कृषि विश्वविद्यालय और मथुरा को बहुत गहरो संबंध रहे हुए हमारे संग हैं गुप्ता साहब। आप दलहन के महारथी रहे हैं, और ब्रज की एक बड़ी समस्या है यहाँ खेती में, एक तो खारी पानी की समस्या ब्रजांचल में, मथुरा हो भरतपुर या इलाके में है, दूसरी नहरन के माध्यम से जो पानी आ रहा है दिल्ली और ऊपर के जो औद्योगिक इकाई है, वह पानी की वजह से भी बहुत सारे हैवी मेटल्स हमारे चारे में, हमारे दाने में आए हैं, और इनकी वजह से हर गांव में 5वें 6वें घर में किसान कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों के शिकार भए। तो एक तरफ खेती की चुनौती है, गेहूं धान को फसल चक्र किसान भैया ने अपना लिया है, जहाँ में 30-30, 40-40 मन की उपज की आवश्यकता रहे। कृषि को और किसान भैया को कैसे उबारे, यही विषय पर जानकारी और चर्चा हम करेंगे गुप्ता साहब।
2: किसान भाइयों, आज जो चर्चा का विषय रखा है कि हमारी कृषि संकट में है, किसान संकट में है, क्योंकि कृषि में हमने बहुत बदलाव देखे हैं, और अब ये जो बदलाव हैं ये बहुत तेजी से हो रहे हैं, और इन संकटों का कारण हमारा जो है गेहूं धान पद्धति को बार बार ले जाना खेत में तमाम समस्याएं पैदा कर रहा है, खास करके जो पानी की समस्या है, कीट व्याधियों की समस्या है, और ये बदलते तापक्रम में किस तरीके से हम अपनी कृषि को ठीक से कर रहे हैं इसकी समस्या है। जो हमारे 11 राज्य हैं कृषि के, जिनको हम हरित क्रांति के राज्य कहते हैं, वहाँ पे ये संकट और अधिक बढ़ रहा है। खाली यही संकट नहीं, उन मृदाओं में जो हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सूक्ष्म तत्व हैं, उनकी भी कमी होती जा रही है, और वो हमें पैदावार में परिलक्षित भी हो रही है। तो किसान भाई

0: तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी खेती को नया आयाम दें, कैसे हम उसको सुधारें, कौन कौन से हम क्रियाकलाप करें ताकि हम अपनी खेती को इस संकट से उबार लें। जो ब्रज क्षेत्र की खेती है, जो हमारे ब्रज का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे जो खारे पानी की समस्या बताई गई है और फिर भी गेहूं धान ले रहे हैं और जल स्तर भी हमारा कम हो रहा है, तो इन सब पर आज चर्चा करते हैं। तो दो बातों पे हम आज की पूरी चर्चा को केंद्रित करेंगे। पहला है कृषि विविधीकरण और दूसरा है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। तो इन दोनों विषय पे हम चर्चा करते हुए आप सभी का ध्यान आकर्षित करेंगे और किसान भाइयों से चाहेंगे कि इनमें से जो जो मूल तत्व हैं उनको ग्रहण करने की कोशिश करें। विविधीकरण की हम जब बात करते हैं, जो कि हमारे ख्याल से जो आज हम परिवेश देख रहे हैं, इस विविधीकरण में ही सारे समाधान। और जब हम विविधीकरण की बात करेंगे तो गेहूं धान के फसल चक्र में किसी भी तरीके से हमें दालों की खेती, किसी भी तरीके से तेलहन की खेती लेके आनी पड़ेगी। इससे हमारे दो फायदे हैं। पहला फायदा है कि हमारी खेती सुधरेगी, जो हमारे सुपोषक तत्वों का जो है वहां पर खेती में रख रखाव है या उसकी संगठनात्मक सुधार है वो सही होगा। और दूसरी चीज, जो कीट व्याधियों का जो एक संक्रमण आ रहा है, नई नई व्याधियां, नए नए कीट, उनसे भी हमारा बचाव होगा। किसान भाइयों, जब हम दलहन की बात करते हैं तो हमें दलहन की खेती लेनी है। आपके क्षेत्र में हमने देखा कुछ किसान भाई मक्का भी ले रहे हैं, क्योंकि मक्के का बाजार में भाव अच्छा मिल रहा है, मक्के को इथेनॉल में भी ले जा रहे हैं। तरह तरह के मक्के हैं, जैसे बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, इनका बाजार है, लेकिन उतना बढ़िया बाजार हमारे न दलहन का है न तिलहन का है, तो किसान आकर्षित होते हैं। किसान भाइयों, आपका भी अनुभव रहा होगा, हमारा भी अनुभव है कि बहुत दिन तक इस तरीके की खेती हमारे लिए लाभदायी नहीं है, क्योंकि मक्का जो है बहुत सारा जो है पोषक तत्व हमारी खेती से लेता है और हम उसका प्रबंधन नहीं करते हैं तो थोड़े दिनों बाद मक्का की खेती लाभदायी नहीं रहती। तो फिर हमें लौट के आना पड़ता है कि हमें कोई ऐसा फसल चक्र अपनाना पड़ेगा, ऐसा विविधीकरण का उपाय करना पड़ेगा जिसमें मक्का भी बनी रहे और हमारे पोषक तत्व का प्रबंधन भी बना रहे और एक खेती लाभकारी। तो मेज मस्टर्ड मूंग, एक मेज मूंग मस्टर्ड का जो हमारा एक कंसेप्ट था कि वो अगर हम सीक्वेंस में लें तो किस तरीके से हम मेज को भी ले सकते हैं। मेज के बाद हमारे जो पोषक तत्व हैं, खास करके नाइट्रोजन बहुत ज्यादा लेता है मेज, उसका भी संतुलन बना रहेगा और उसके बाद हम अपनी मस्टर्ड को भी ले सकते हैं।
1: यानी किसान भैया, मक्का, सरसों और मूंग, मतलब तीन फसल
0: ले सकते हैं और उस तरीके से हम सूक्ष्म तत्वों का भी प्रबंधन कर सकते हैं और खेत में जो भी समस्याएं होती हैं उनका भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें पानी पर आधारित खेती पर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पानी दुर्लभ हो रहा है और जब क्रिटिकल स्टेज होती है क्रॉप की तो वहां पानी मिलता नहीं और हमारा उत्पादन भी गिरता है, तो हमारे किसान भाइयों को वो लाभ नहीं मिलता। तो एक तो विविधीकरण का ये माध्यम हो सकता है कि हम किसी भी तरीके से दालों को और तिलहनी फसलों को अपने जो सीक्वेंस है क्रॉप का उसमें जो है हम उसमें समावेश करें। दूसरा जो है कि अलावा हमको जो लग रहा है जो क्लाइमेट चेंज का जो हमारे ऊपर असर आ रहा है कि कभी भी अचानक तापक्रम बढ़ जाना, कभी अचानक वर्षा हो जाना और किसी भी तरीके से किसान की खेती में कभी न कभी रिस्क जरूर रहता है वो नुकसान। तो इस क्षेत्र में मुझे जो है जो भी समस्या दिख रही है, चाहे जमीनी स्तर पे हो, चाहे सॉइल के पीएच के स्तर पे हो, चाहे न्यूट्रिएंट के स्तर पे हो, हमारा एक दूसरा प्रकल्प हो सकता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री को हम किसी तरीके से उसमें अपनाएं, जिसमें हम जो और भी चीजें हैं खाद्यान्न फसलों के अलावा, हमने दलहन तिलहन की बात तो की है लेकिन जो ट्रीज हैं, जो हमारी फॉडर क्रॉप्स हैं, इनका भी समावेश करें, क्योंकि इस क्षेत्र में फॉडर की बहुत ज्यादा संकट है
1: जी।
0: किसानों के जो भी हमारे मवेशी हैं उनके लिए चारे उपलब्ध नहीं है, चारों का भी संकट है। तो हम किसी भी तरीके से इसमें जो विविधीकरण के आयाम है उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री को भी लेके आए। तो एक तो विषय ये है,
1: कम से कम मेड़ पे अपने खेत की मेड़न पे ऐसे पौधा
0: मेड़ पे पेड़ लगाओ,
1: जैसे कि हमें 2-3 साल बाद, तो जैसे आपका मेरठ साइड में है, इधर बरेली साइड में है, लोग पॉपुलर है, यूकेलिप्टस है, इनकी खेती कर रहे हैं, तो जो आपके क्षेत्र में उपयोगी है
0: मेड़ पे पेड़ लगाइए, एक तो ये है। और मेड़ पे पेड़ के अलावा भी अगर हमारे पास कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम ऐसे हैं कि उन ट्रीज के बीच में, जैसे आंवला है, उसके बीच में भी खेती की जा सकती है कुछ फसलों की, तो ऐसे आयाम हमें देखने पड़ेंगे। तो एक तो विषय फसल विविधीकरण का है, उस पर ध्यान देना चाहिए और जहां कहीं भी आपको जानकारी मिले किसान भाइयों उसको लेके आगे बढ़ने की बात।
1: दूसरी बात, आपने प्राकृतिक खेती की कही, क्योंकि सरकार को भी जोर है और जो है लोग जो खाद्यान्न है या उत्पाद है, बाकी गुणवत्ता को लेके भी हेल्थ कॉन्शियस को लेकर भी थोड़े गंभीर हवे लगे हैं। तो प्राकृतिक

0: खेती के माध्यम से या प्राकृतिक उत्पादन के माध्यम से कैसे समाज की, किसान की, सबकी सेहत सुधर सके।
1: किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में जो हमारे लिए मेन चिंता का विषय है कि किस तरीके से हम जो अंधाधुंधी जो हम फर्टिलाइजर का, उर्वरकों का अपने खेतों में उपयोग करते हैं, इसके हमारे दुष्परिणाम बहुत बड़े। हम उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पोटैटो का, मतलब आलू का क्षेत्र है या गन्ने का क्षेत्र है, तो किसान भाई जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। जब उनको समझाते हैं कि भाई आप इतना क्यों डाल रहे हो, डीएपी की इतनी जरूरत नहीं है इन क्षेत्रों में, तो उनका कहना है कि हमारा बगल वाला इतना डालता तो मैं कोई कमजोर किसान हूं। तो ये जो है प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो सॉइल में जो भी कमियां हैं उनकी टेस्टिंग कराइए और उसके आधार पर जो भी संतुलित उर्वरक हैं उनका प्रयोग करिए। नेचुरल फार्मिंग का एक नया प्रकल्प आया है जिसमें हम बिल्कुल भी मना करते हैं कि कोई भी उर्वरक न डालें किसी भी तरीके से खेत में। हम नेचुरल फार्मिंग करें और जो नेचुरल फार्मिंग के जो घटक हैं जैसे बीजामृत, जीवामृत, गोबर की खाद और बिपाशा, तमाम घटक हैं उनको लेके हम नेचुरल फार्मिंग की कोशिश करें। किसान भाइयों, जब हम देखते हैं कि कोई भी हम पेस्टिसाइड या कोई भी उर्वरक या कोई भी केमिकल खेती में हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जो है खाद्य चक्र में जाता है और किसी न किसी तरीके से खेत का स्वास्थ्य तो खराब करता ही है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब करता है।
0: मानव और पशु दोनों,
1: मानव पशु और हमारी जो जमीन है, तीनों के स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो किसान भाइयों, एक तो संतुलित खाद और संतुलित केमिकल्स का प्रयोग करें, दूसरी चीज अगर हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं। एक चिंता रहती है किसान भाइयों की, नेचुरल फार्मिंग करेंगे, खाद नहीं डालेंगे, ये नहीं डालेंगे, तो उससे जो है उनकी उपज कम होगी। किसान भाइयों, शुरू में उपज कम होगी ये तो मैं भी आपसे कहूंगा, लेकिन कालांतर में धीमे धीमे जब हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो जब हमारी जो मृदा है उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है वो सक्रिय होंगे और अपनी जरूरत की जितने भी हमें तत्व हैं उनका निर्माण खुद ही मृदा के अंदर करेंगे। आज हमारे भारतवर्ष में और खासकर के उत्तर प्रदेश में जो सॉइल में कार्बन कंटेंट है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, वो बहुत कम है। उसकी वजह से मृदा के अंदर जो जीवाणु हैं उन जीवाणुओं की सक्रियता कम हुई है और जो है हमारी खेती में जो समस्याएं आई हैं, और जब जीवाणुओं की संख्या कम होती है तो बहुत से ऐसे कीट, जैसे हमने कहा दीमक, अगर हमारे वहां पे ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कम होगा खेत में तो जरूर दीमक परेशान करेगी। उसी तरीके से बहुत से ऐसे कीट हैं जो कि आकर्षित होते हैं और हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे नेचुरल फार्मिंग के घटक हैं, जीवामृत, बीजामृत, किसान भाई खुद ही अपने खेतों में बना सकते हैं, गोबर की खाद को खुद ही परिमार्जित कर सकते हैं और एनरिच कर सकते हैं और इस तरीके से अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। भारत सरकार नेचुरल फार्मिंग पे पूरे देश के लिए 6,000 करोड़ रुपए का उन्होंने धन आवंटित किया है और प्रदेश सरकार की भी स्कीम्स हैं, भारत सरकार की भी स्कीम्स हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनसे मिलें और उन स्कीम्स के जो भी घटक हैं उनको प्राप्त करके लाभ उठाएं। तो मेरे ख्याल से दो विषय वृक्ष क्षेत्र के किसानों के लिए, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन हो या नेचुरल फार्मिंग हो, कृषि का विविधीकरण हो या प्राकृतिक खेती हो, इसकी तरफ आकर्षित हों और वृक्ष की खेती की समस्याएं जो बढ़ती जा रही हैं उनसे अपने आप को निजात पहुंचाएं, यही मेरा कहना है आज के कार्यक्रम।
0: विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव गुप्ता साहब, और आपने जो समस्या है ब्रज क्षेत्र की, हमें कृषि विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को एक बेहतरीन समाधान बताया। निश्चित रूप से ये जानकारी आपको लाभ पहुंचाएगी और आपने सरकारी योजना के माध्यम से सेवा को लाभ लेवे की काजे भी जानकारी दी।
2: अभी भैया सुन रहे थे डॉक्टर संजीव गुप्ता को, जो जानकारी दे रहे ब्रज में खेती में बदलाव जरूरी, और इनसे बातचीत कर रहे दिलीप यादव। और भैया अब एक लोकगीत नीरज के स्वर में सुनो, अरे बहना जाऊंगी साजन के।

अभी भैया सुन रहे थे नीरज को, अरे बहना जाऊंगी साजन के देश। भैया बात करें किसान क्रेडिट कार्ड, जाको हम केसीसी क्यों करें। भैया हमें अपनी खेती में लागत लगानी पड़े पहले, और 4 से 6 महीना पीछे जब हमारी फसल पक जावे, वो बाजार में बिक जावे, जब हमारी आमदनी हो। अब समस्या आवे किसान भैयान के सामने के लागत के काजें, पैसा कहाँ तिलामे, काऊ साहूकार के पास जामे तो वो भैया ब्याज मोटी ले, या कौन ते पैसा को इंतजाम करें। इन सब समस्यान के समाधान के काजे सरकार ने शुरू करी जी योजना किसान क्रेडिट कार्ड, जाकू हम सब क्यों करें केसीसी जी। एक ऐसी योजना है जामे किसानन को खेती, पशुपालन, मछली पालन और अन्य जो कृषि से जुड़े हुए उद्योग हैं, उनके काजे बेहद कम ब्याज पर समय पर ऋण उपलब्ध कराया जावे, जहाँ में आपको खेती के रकवा और फसल के आधार पर आपको ऋण बैंक ते मिलो करे, लोन मिलो करे, और सामान्य तौर पे तो ब्याज 7% की होए, लेकिन आप वाकू उचित समय पे वाको भुगतान करके वा में 3% की छूट को लाभ ले सकें। या योजना को लाभ लेवे के काजें आप अपने नज़दीकी बैंक में जाए के संपर्क कर सकें, जाके काजें आपको कछु कागजातन की आवश्यकता होवे, जैसे अपनी खेती के कागज, जामे खसरा होए, खतौनी होए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और बैंक की पासबुक, जामे जो आपको बचत खाता होए, इन सब कागजन को लेके आप अपने नज़दीकी बैंक में संपर्क कर सकें, वहाँ फील्ड ऑफिसर होयो करें, या काम के काजें नियुक्त और फील्ड ऑफिसर से संपर्क कर सकें,

और अपने या केसीसी कार्ड को बनवा सकें। तो ये तो चर्चा रही भैया किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, और ये कि संग ही संग आज को ये ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम अब संपन्न हुए। सब भैया बहनान को रूप किशोर की राम राम।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 2023-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नेह बंधन कार्यक्रम में कहा, प्रदेश में महिलाओं को रोजगार में मिल रहा है बराबरी का अवसर। मुख्यमंत्री ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित, कहा राज्य में तैयार हो रहा है शिक्षा और कौशल विकास का इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में योजना की है अहम भूमिका। और नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट, बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई पर स्कूली बच्चियों ने राखी बांधकर स्नेह जताया। इस स्नेह बंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बच्चियों से संवाद किया और उपहार प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार बहनों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित कर आधी आबादी के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद करीब 75 वर्षों तक राज्य में केवल 12% महिलाएं नौकरी या रोजगार से जुड़ी थीं, लेकिन अब यह आंकड़ा 36% से अधिक हो चुका है।
3: इतनी बड़ी आबादी में केवल 12% महिलाएं ही नौकरी या रोजगार के साथ जुड़ पाई। आजादी के बाद से लेकर 75 वर्ष तक ये मामला थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये संख्या 12

0: फीसदी से बढ़कर के 36% से अधिक हो चुकी है। और हमने हर बड़े शहर में कामकाजी महिलाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।
1: प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज में रिजर्व पुलिस लाइन में महिला पुलिस अधिकारियों और आरक्षियों से राखी बंधवाई। प्रदेश के सभी कारागारों में भी रक्षाबंधन के पर्व पर उत्सव का माहौल रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए कारागार पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने गौतम बुद्ध नगर पहुंचकर कारागार में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और निरुद्ध महिलाओं से राखी बंधवाई। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के पावन पर्व को देखते हुए प्रदेश की सभी कारागारों के जेल अधीक्षकों को आवश्यक

0: प्रदेश के सभी कारागारों में भी रक्षाबंधन के पर्व पर उत्सव का माहौल रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए कारागार पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने गौतम बुद्ध नगर पहुंचकर कारागार में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और निरुद्ध महिलाओं से राखी बंधवाई। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के पावन पर्व को देखते हुए प्रदेश की सभी कारागारों के जेल अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
1: पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कारागार में हमारी जो बहनें हैं जिनके भाई कारागार में निरुद्ध हैं, यहाँ पर अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन का धागा बांध करके उनकी सलामती की दुआ मांगने आई हैं। और मैंने देखा यहाँ पर जो कारागार प्रशासन के लोग यहाँ के लोकल स्वयंसेवी संस्था से मिलकर के बड़े पैमाने पे उनके नाश्ते की खाने की व्यवस्था किया है।
0: वाराणसी में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भक्तों ने परंपरागत रूप से बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित कर उनका आशीर्वाद मांगा। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में निशुल्क बस यात्रा की सौगात दी है। महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा कल मध्यरात्रि तक जारी रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: कल से शुरू हुई इस सुविधा के पहले दिन 6 लाख से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया। वहीं महिलाओं के साथ सफर करने वाले 3,22,000 से अधिक सहयात्रियों को भी निःशुल्क यात्रा का लाभ मिला। परिवहन निगम ने 26 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उधर प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आज से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की शुरुआत हो गई है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र महिला यात्री को अपनी उम्र प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। यह व्यवस्था लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत लागू की गई है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे युवा तैयार करना है जो अपने ज्ञान और कौशल से अवसर पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जो युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में मददगार साबित हो रहा है।
3: आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां हर युवा को अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुरूप सीखने, अवसर पाने, उद्यम करने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है। हमने पिछले 9 वर्षों में शिक्षा और स्किल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, एमएसएमई और इंडस्ट्री तक एक ऐसा व्यापक इकोसिस्टम विकसित किया है जो युवाओं की क्षमता को अवसर, अवसर को रोजगार और आर्थिक समृद्धि में बदलने में सहायक हो सकता है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। अपने लखनऊ प्रवास के दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि कल रक्षा मंत्री बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 11वें

0: शांत समारोह में शामिल होंगे और 30 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनेंगे। नेपाल में बाढ़ के बाद बने हालात को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी पर निगरानी बढ़ा दी है। नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं भारत की ओर से बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से ज्यादा आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष बनाया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की एक्स मिल कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार देश भर में चीनी की कीमतों और स्टॉक पर कड़ी नजर रख रही है। उत्तर प्रदेश के मध्यम तेज गेंदबाज अयान अकरम को ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ खेले जाने वाले मल्टी डे मैचों के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 के दो मल्टी डे मुकाबले खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नेह बंधन कार्यक्रम में कहा, प्रदेश में महिलाओं को रोजगार में मिल रहा है बराबरी का अवसर। मुख्यमंत्री ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित, कहा राज्य में तैयार हो रहा है शिक्षा और कौशल विकास का इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में योजना की है अहम भूमिका। और नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट, बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
2: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
3: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।

शाम ढल रही है, आसमान पर दिन भर की रोशनी सिमट कर जैसे सुनहरी यादों में बदल रही है। और ऐसे में संगीत की कुछ मीठी धुनें अगर आपके साथ साथ हों तो शाम सिर्फ शाम नहीं रहती, शाम सुहानी बन जाती है। कुछ धुनें दिल को छू जाती हैं।

कुछ गीत यादों में बस जाते हैं, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो दूर बैठे अपनों को भी अपने पास ले आते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम शाम सुहानी के साथ मैं हूं अरविंद कुमार। आपकी फरमाइश, आपकी पसंद, आपकी यादों के नाम सजे की आज ये सुरीली शाम। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले हर गीत के साथ हो सकता है कोई पुरानी याद मुस्कुरा उठे, कोई भूला हुआ चेहरा आंखों के सामने आ जाए, या दिल चुपके से कह उठे, हाँ यही तो था मेरा पसंदीदा गीत।

ये सुदास और लता मंगेशकर की आवाज में त्रिशूल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिर के बोल थे खय्याम का संगीत निर्देशन था। और इस गीत को सुनने के लिए जो संदेश हमें प्राप्त हुए हैं उनमें श्रोताओं के नाम हैं

मजनू कटिला दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सपना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, वर्षा सुमन, मधु किरण, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीला बानो, एलिजा नायाब और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, अमीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ साइना और निवान शर्मा, वर्निंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का संदेश में मिला है, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, तेलंगाना हैदराबाद से कानकुला गोपाल, माहेश्वरी, प्रवलिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश, वाशी महाराष्ट्र से जुड़े हैं सुषमा, परिधि, मायरा,

चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक और इनके परिवारीजन। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान फरहान और समीरा। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य लाडू कोलक, नानक चंद्र मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और टुक्कू सिक्का। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नांद्रे, माथुराम पांचाल। बुलढाणा महाराष्ट्र के श्रोता हैं राजू माठी, गजानन माठी, संजय और ज्ञानेश्वर, देवेंद्र भटकर इनके साथ। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। लातूर के श्रोता हैं संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, प्रकाश जैन। शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन और कविता। करणवीन हाउस बठिंडा पंजाब से परम सिंह चौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, तपिंदर, वरिंदर, कुलदीप और अभिजीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है नागिन, आवाज लता मंगेशकर की।

सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय ओम कुमार गुंजेश, रिया कुमारी साक्षी, श्वेता रंजन, रजनेश कुमार, आनंद कुमार, अक्षय लाल और बुल्की वाली। मोताला महाराष्ट्र से राज गवई और वीर गवई। सेक्टर आठ कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रबिला और अनुश्री सैनी, मीरा सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़ी। भिवानी से कृष्णा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। कंवर कॉलोनी बढ़वा खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली का संदेश। उमाली से उद्धव धोरण, स्वरूपाताई, अनूप कुमार। सागर लखनदौन मध्य प्रदेश से लाडला चौबे, लाटली रिमझिम और सक्षम। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक।

संग ने जत शहर से अल्ताफ हुजरे सैफुल्लाह शबाहत किरत हुजरे और रेहान तरन तारण पंजाब को श्री गुरुदर्शन लाल चलुत्र सुनीता शमी रजनी और आकाश दी बिजनौर से मोहम्मद वक्कर फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू साजदारानी और हिना कौसर सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा सुनीता हर्ष विनीत और कृष्टि पटवा धनौरी तेलीवाला से निसार सलमरी नौशाद अयान और आलिया राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघो हरमन और इनके परिवारजन अंबाला हरियाणा से इन्होंने संदेश भेजा है। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता किसुतासु अर्णो आनंद सत्यम आनंद कटनी मध्य प्रदेश से अनिल ताम्रकार अमर ताम्रकार दिलीप वर्मा संजय सोनी अरुण कनौजिया पवन यादव संजीव वर्मा सुनील जैन रज्जक रजक लालू सोना मोनू हनी और इनके परिवारजन। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है काली टोपी लाल रुमाल। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। गीतकार है मजरू। संगीत चित्रगुप्त का है।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे मजरू, संगीत चित्रगुप्त का था।

जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह, आरती अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और करमजीत कौर का संदेश में मिला है। कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, कांति गुप्ता, रानी संगीता पासवान, मेघा मेनका मुखिया, भुलिया देवी गुप्ता और कलवा राजनगर से इन्होंने संदेश भेजा है। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान, आयशा, सबीहा और अनस रेहान, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक शर्मा का संदेश में मिला है। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और रिकेश साहू, विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीके, कैलाश, नीलमपुरी, रामा पालीपुरी और सुनील पाठक, लुधियाना पंजाब से इन्होंने संदेश भेजा है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से चन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता और इनके ढेर सारे साथीगण, कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और बेगम अफजल नागपुर महाराष्ट्र से, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से विजया सोपान तैड़े, मोहन करांगले, जीगांव विदर्भ से वसंतराव भोजनी और पी एस नवनकर, बरेली के श्रोता हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम नसरीन समा और माहिनूर अंसारी, किशनगंज बिहार से मोहनदास, आशा देवी, वर्षा, सुमन, कीर्ति भारती, भानुप्रिया, देवाश्री, मेघाश्री और माधुरी किरण, अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द और नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवनकर, निर्मला नारायण, इंग्ले सोपान ताड़े, आशीष मुर्रेकर और वसंतराव भोजने, मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लोबना और यश मंसूरी। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अलबेला फिल्म से चितलकर और साथियों की आवाजों में।

फरमाइश कभी पाउडर की फरमाइश कभी सर्कस की जिद है और कभी थिएटर की फरमाइश निकल

चितलकर और साथियों की आवाज़ों में अलबोला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोलते कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन था और इसी के साथ शाम सहनी प्रोग्राम से मुझे यानी अरविंद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संकेत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आरती मुखर्जी की आवाज में फिल्म गीत गाता चल से। गीत और संगीत रविंद्र जैन के हैं।

फिल्म से आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा हुआ गीत, इन्हें के संगीत निर्देशन में। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज सुमन कल्याणपुर की है, फिल्म का नाम है गीत प्रेम धवन की रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन।

फिल्म नरम गरम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपको बता दें, इस गीत को गाया आशा भोसले ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से होगा, से कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी है। विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर लीजिए सुनिए महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र से एक विशेष भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी।
1: नमस्कार। श्रावण पूर्णिमा के इस परम पावन मंगलमय एवं सांस्कृतिक महापर्व पर मनाए जाने वाले संस्कृत दिवस के इस विशेष विचार उत्तेजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत केवल विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक नहीं बल्कि भारत की सनातन ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टि, दार्शनिक चिंतन और सांस्कृतिक अस्मिता की सुदृढ़ आधारशिला है। वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, गणित, खगोल, व्याकरण, नाट्यशास्त्र तथा असंख्य ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत संस्कृत में ही निहित हैं। आज जब विश्व भारतीय ज्ञान परंपरा, योग, आयुर्वेद और सतत विकास के भारतीय दृष्टिकोण की ओर आकर्षित हो रहा है, तब संस्कृत की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। इन्हीं महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे मध्य उपस्थित हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र जी, जो शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा संस्कृत के संवर्धन के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता एवं विशिष्ट योगदान के लिए सुख्यात हैं। माननीय कुलगुरु जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं, संस्कृत दिवस मात्र एक स्मृति दिवस नहीं है बल्कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, ऋषि संस्कृति, सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव का भी उत्सव है। आपके विचार से संस्कृत दिवस मनाने के पीछे जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या हम कहें जो राष्ट्रीय महत्व है, उसको हम जानना चाहेंगे।
2: सर्वप्रथम संस्कृत दिवस की समस्त भारतवासियों को मंगल कामनाएं। संस्कृत दिवस समग्र देश में बहुत ही उत्साह के साथ अभी भी संस्कृत के पढ़ने लिखने वाले लोग, संस्कृतानुरागी गण मनाते हैं। भारत में काल का बड़ा महत्व है और हमारे भारतीय जो काल गणना है उस हिसाब से जो हमारे 12 मास हैं उनमें से श्रावण का जो मास है वह अत्यंत पवित्र मास है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है और इसी क्रम में श्रावण की जो पूर्णिमा तिथि है उसमें समस्त भारतवासी उसे संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। संस्कृत दिवस के रूप में इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य जो संदेश है वह यह है कि हम इस तिथि को सभी

0: संस्कृतानुरागी हम ऋषियों का पूजन करते हैं। पूजन के माध्यम से उन ऋषियों के योगदान का, उनके संदेश का, उनकी ज्ञान परंपरा का स्मरण करते हैं और हम श्रावणी उपाकर्म करते हैं सभी भारतवासी। संस्कृत इस देश की प्राणभूत भाषा है। यदि हमारा देश बोलता है तो उसकी जो वाणी है वह संस्कृत है, और वह संस्कृत है तो वेद है, संस्कृत है तो उपनिषद है, संस्कृत है तो स्मृति है, संस्कृत है तो रामायण है, संस्कृत है तो महाभारत है, अर्थात इन सभी धर्म ग्रंथों की, इन सभी शास्त्रों की भाषा संस्कृत है। तो हम इस तिथि को, यह जो कार्यक्रम करते हैं, वह नई युवा पीढ़ी को यह संदेश देने के लिए कि हमें संस्कृत केवल स्मरण के लिए नहीं, बल्कि संस्कृत हमारे भारत की संवाहिका है, संस्कृत हमारे संस्कार की संवाहिका है, संस्कृत हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान की संवाहिका है, संस्कृत योग की संवाहिका है, संस्कृत आयुर्वेद की संवाहिका है, संस्कृत हमारे सदाचरण की संवाहिका है। और यदि संस्कृत है तो भारत है। मेरी दृष्टि में संस्कृत और भारत ये दो नाम नहीं है, संस्कृत ही भारत है और भारत ही संस्कृत है। बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। कालिदास के बिना, वेद के बिना, गीता के बिना, रामायण के बिना हम भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं।
1: जी, निश्चित रूप से संस्कृत केवल अतीत की भाषा नहीं बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज का यह जो युग है वो विज्ञान का है, प्रौद्योगिकी का है, बल्कि वैश्वीकरण का यह युग है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि संस्कृत की जो समकालीन प्रासंगिकता है वह क्या है। आपके विचार से वर्तमान भारत और वैश्विक परिदृश्य में संस्कृत भाषा किन किन क्षेत्रों में नई संभावनाओं के साथ उभर सकती है?
0: सुनील जी, बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने की है कि संस्कृत ज्ञान और विज्ञान की भाषा है। हमारा समग्र जो दर्शन का साहित्य है वह समग्र विज्ञानमय है। अगर मैं एक संकेत के रूप में न्याय दर्शन की बात करूं तो न्याय दर्शन में सबसे पहले हम अपने विद्यार्थियों को बोधन कराते हैं कि 16 पदार्थ होते हैं, और हम वैशेषिक दर्शन के बारे में चर्चा करें तो कहते हैं कि 7 पदार्थ होते हैं। वो 16 पदार्थ हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ऐसे ही हम वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थों की चर्चा करते हैं तो कहते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। कल्पना कीजिए कि संस्कृत के इन ग्रंथों में कितनी बड़ी ज्ञान और विज्ञान की संपदा निहित है। भारत का बहुत सारा ज्ञान विज्ञान, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे हम आयुर्वेद के क्षेत्र में देखें, चाहे हम योग के क्षेत्र में देखें, तो यह सारा ज्ञान विज्ञान पहले से ही संस्कृत में निहित है। तो यह अतीत में हमारा जो ज्ञान विज्ञान था वर्तमान में भी अत्यंत प्रासंगिक है और इसका अत्यंत उत्तम भविष्य भी है। संस्कृत आज AI के लिए अत्यंत उपयुक्त भाषा है क्योंकि इसका बहुत समृद्ध तर्कसम्मत व्याकरण है और भाषा ही बहुत व्यवस्थित और बहुत तर्कसम्मत है। इस भाषा के शब्दों को और इस भाषा का पूरा जो विज्ञान है, पूरा जो इसका साहित्य है, वह भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज देश में बहुत सारे आधुनिक विषयों के साथ संस्कृत को जोड़ करके रिसर्चित की जा रही है, चाहे गीता का मैनेजमेंट के साथ हो, चाहे वास्तुशास्त्र का आर्किटेक्ट के साथ हो, चाहे वह वैदिक गणित का पूरा ज्ञान विज्ञान हो, और AI के साथ भी, जैसा कि अभी हमने सुना है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने AI को आधार मान करके BTEC का कोर्स प्रारंभ किया है। उन्होंने विधि शास्त्र को दृष्टि में रख करके 1,00,000 का कोर्स प्रारंभ किया है। सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम भी आरंभ किया है। इससे बहुत स्पष्ट रूप से हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि संस्कृत जितनी पुरातन है उतनी अधुनातन भी है और इसका प्रभाव भी लोगों के बीच में बहुत अच्छे से जा रहा है। लोग इधर उन्मुख भी हो रहे हैं और संस्कृत पढ़ने के प्रति बहुत अच्छी प्रवृत्ति भी आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी AI के इस पाठ्यक्रम की चर्चा की है। वो लगातार संस्कृत को समग्र विश्व में प्रचारित करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के संग्रहालयों में जाकर के वहाँ की मूर्तियों का अवलोकन करते हैं और वहाँ के लोगों को संस्कृत का संदेश देते हैं, वो सुभाषित के बारे में चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक अत्यंत स्वर्णिम अवसर है जब भारत का नेतृत्व ही संस्कृत के प्रति इतना समर्पित है।
1: प्रोफेसर मिश्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संस्कृत का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो आधुनिक तकनीकों के साथ समन्वय स्थापित कर मानवता को ज्ञान, संतुलन और सतत विकास की नई दिशा प्रदान कर सकता है, और यह परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक सशक्त सेतु है। प्रोफेसर मिश्र जी, हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति

0: G20 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष बल दिया जा रहा है। आपके विचार से भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल अवधारणा क्या है?
1: सुनील जी, जो शिक्षा की नीतियां बनी उनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस शिक्षा नीति के आने से पूरे भारत के अध्ययन की परंपरा को एक नई दिशा मिली है। ऐसा इसलिए हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से उसको स्थान दिया गया, क्योंकि भारत की जो एक विशद ज्ञान परंपरा है वो विद्याएं धीरे धीरे भारतीय ज्ञान परंपरा की माध्यम से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनको स्थान मिल रहा है। एक अच्छी बात है कि पूरे देश में इस समय नए नए पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे IKS भारतीय ज्ञान परंपरा में PG पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार हिंदू स्टडीज एक पाठ्यक्रम आया है जो पूरे देश में प्रायः 35 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदू अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रवर्तित हुआ है और उसमें समग्र भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन कराया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसमें आज हम भारत के वनस्पति विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हम आज भारत के भौतिक विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं और आज विश्वविद्यालयों में इस तरह के पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं कि जो आज फिजिक्स पढ़ा रहा है वो भारतीय फिजिक्स से भी परिचित हो, जो वनस्पति विज्ञान पढ़ा रहा है वो भारत की भी वनस्पति संपदा से अवगत हो। ऋषियों ने जो ज्ञान विज्ञान प्रवर्तित किया था उसको आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम में स्थान मिल रहा है और ये निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है, भारतीय विद्याओं के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा समग्र मूल्यपरक और जीवनोपयोगी ज्ञान की एक ऐसी परंपरा है जिसका मूल आधार संस्कृत है। प्रोफेसर मिश्री जी, जैसा कि हम जानते हैं उज्जैन को भारत की सप्त मोक्षपुरियों में विशेष स्थान प्राप्त है। यह नगरी प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य, दर्शन, खगोल और आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख केंद्र रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके विचार से संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवंत बनाए रखने में उज्जैन का ऐतिहासिक तथा समकालिक योगदान किस प्रकार का है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। उज्जैनी में भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था महर्षि शांदीपिनी के गुरुकुल में आकर। उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य की वो भूमि है जहाँ उनके दरबार में 9 रत्न थे जो अपने अपने विषय के प्रकांड पंडित थे, जिनके बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक प्रचलित है, धनवंतरि क्षपण कामर सिंह संकु बेताल भट्ट घट खरपर कालिदासः ख्यातो बराह मीरो नृपते शभायाम रत्नानि वै वररुचिर नौ विक्रमस्य। विक्रमादित्य की वह भूमि रही है और विक्रमादित्य के ये 9 रत्न वहां पर स्थान पाते रहे हैं। वह महाराज भर्तृहरि की भूमि रही है और उस भूमि पर सदियों से ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही। वहां भगवान महाकाल हैं जो कि विद्या के अधिपति देवता हैं। यह महाकवि कालिदास की भूमि रही है, कालिदास ने वहीं पर अपने काव्य का प्रणयन किया। स्कंद पुराण में एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि ने उज्जैनी में रह करके वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, इसलिए उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। उज्जैनी 7 पुरियों में एक प्रतिष्ठित पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैता, मोक्षदायिका, इन परिगणित 7 पुरियों में अवंती का अत्यंत महत्व है, उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। ऐसी पावन नगरी उज्जैनी में महर्षि पाणिनी के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित है जो संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में, व्याकरण के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, विभिन्न विषयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य वहां हो रहा है। उज्जैनी कुंभ भूमि भी है, यहां प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उज्जैन अतीत की गौरवशाली विरासत और भविष्य की ज्ञान यात्रा की प्रेरणादायी संगम है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज विश्व समुदाय भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद, दर्शन और जीवन मूल्यों के प्रति विशेष आकर्षण अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में संस्कृत भाषा भारत की जो सांस्कृतिक कूटनीति है, जिसे हम कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं, उसको किस प्रकार से और अधिक प्रभावशाली बना सकती है? इस दिशा में विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थानों तथा इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए?
1: बहुत अच्छी बात है ये कि भारत की जो संस्कृति है वह विश्व की समस्त संस्कृतियों को आत्मसात करके भी आज प्रतिष्ठित है। भारत की संस्कृति ऐसी है जिसमें किसी भी संस्कृति का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यह विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, यह सर्वे भवन्तु की संस्कृति है, और यह संस्कृति आती है संस्कृत से। संस्कृतम संस्कृतेर मूलम श्रेयसे समुपाश्यताम। संस्कृत संस्कृति की मूल है और कल्याण के लिए उसकी उपासना करनी चाहिए। भारत को जो प्रतिष्ठा मिली है संपूर्ण विश्व में, वो भारत की संस्कृति

से और भारत की भाषा संस्कृत से मिली है। तो यह जो विश्वविद्यालय हैं, जिन विश्वविद्यालयों में हम संस्कृत का अध्यापन कराते हैं, अध्ययन कराते हैं, वह वस्तुतः सही पूछिए तो भारत की हम संस्कृति का ही अध्ययन कराते हैं, संस्कृति और परंपरा का ही अध्यापन कराते हैं। और हमारी जो संस्कृति है वह सर्व कल्याण मूलक संस्कृति है। विश्व में कोई भी संस्कृति होगी वो हमारी संस्कृति से निश्चित रूप से उसे प्रेरणा मिलेगी। और इस कार्य में संस्कृत विश्वविद्यालयों का महनीय योगदान भी है। संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का जो जीवन है वह निश्चित रूप से अत्यंत सुसंस्कृत जीवन होता है, क्योंकि जो मूल गुण है, जो नीति है, जो सदाचरण है, वह संस्कृत के ग्रंथों से ही आती है। हम ही पढ़ाते हैं कि मातृदेवो भव, हम ही पढ़ाते हैं कि पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। हम

0: देवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। हम बताते हैं लोगों को कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरी सभी स्त्रियों पर माता की बुद्धि होनी चाहिए और दूसरे के द्रव्य में लोष्ठ की बुद्धि होनी चाहिए। हम अलग से छात्रों को ये बोध नहीं कराते, वो हमारे पाठ्यक्रम का पार्ट है। पढ़ते पढ़ते वो चीजें स्वयं सीखते हैं और एक सुसंस्कृत सुसभ्य नागरिक बनते हैं, और उनका निश्चित रूप से उनकी उपयोगिता, उनका महत्व केवल अपने क्षेत्र में नहीं है, वो जहां भी जाते हैं दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं और दूसरों को भी अपने सद्गुणों से आलोकित करते हैं।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर मिश्र जी, की संस्कृत विश्व को शांति, सह अस्तित्व और मानवीय मूल्यों का संदेश देने वाली एक दिव्य भाषा है। प्रोफेसर मिश्र जी, यदि हमें संस्कृत को केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित न रखकर जन जन की भाषा और जीवन का हिस्सा बनाना है, तो विशेष रूप से युवाओं में इसके प्रति रुचि और आत्मीयता को कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर हम आपके विचार चाहेंगे।
0: संस्कृत वस्तुतः भारत के किसी एक व्यक्ति की भाषा नहीं है, संस्कृत भारत के समस्त मनुष्यों की भाषा है, और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि यह विश्व की भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो गुण हैं, जो मूल्य हैं, वह किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र के नहीं है, अपितु वह सार्वभौम है। तो संस्कृत कभी थी भी जन जन की भाषा। यदि हम संस्कृत के अतीत के बारे में इसके ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखें, तो संस्कृत अतीत में जन सामान्य की भाषा थी। शंकराचार्य के समय आपको ऐसा प्रसंग मिलता है कि भगवान शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से मिलने गए, तो उन्होंने वहां के जन सामान्य लोगों से पूछा कि कुत्रालयो मंडन पंडितस्य, पंडित मंडन मिश्र का घर कहाँ है। संस्कृत जन सामान्य की भाषा थी, इसीलिए हम विश्व गुरु थे, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति सुसंस्कृत था, हर व्यक्ति सदाचरण संपन्न था, हर व्यक्ति सुसभ्य था, हर व्यक्ति परोपकारी सद्गुणी था। तो हमारे देश में यह संस्कृत को जन सामान्य की भाषा बनानी है, और इस समय जो हमारी भारत की नीतियां हैं, जो हमारे भारत का नेतृत्व है, संस्कृत को जन सामान्य में ले जाने के लिए प्रयत्नशील है, और इसके सकारात्मक संदेश भी मिल रहे हैं। संस्कृत भारती संगठन के द्वारा भी संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो संस्कृत की पृष्ठभूमि से नहीं है, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं है, लेकिन वो संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि भारत के सभी लोग संस्कृत में व्यवहार करेंगे, और वस्तुतः वही विकसित भारत होगा।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब संस्कृत आधुनिक जीवन का हिस्सा बनेगी, तभी इसका व्यापक जन आंदोलन संभव होगा। प्रोफेसर मिश्र जी, हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जिस संकल्पना के साथ जुड़े हैं और जिसके साथ पूरा देश जुड़ रहा है, ऐसे में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में आप संस्कृत की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं?
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी नेतृत्व का बहुत प्रशंसक हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विकसित भारत का अभिप्राय यह है कि हम केवल भौतिकता की दृष्टि से ही विकसित न हों, हमारे भारत की जो ज्ञान परंपराएं हैं वो भी विकसित हों, हमारे भारत का जो जीवन दर्शन है, हमारी भारत की जो चिंतन पद्धति है, हमारी भारत की जो रहन सहन है, हमारी भारत की जो व्यंजन है, हमारे भारत के जो त्योहार हैं, हमारे भारत की जो जीवन शैली है, वो सब विकसित होगी, तभी भारत देश विकसित है, ऐसा मैं समझता हूँ, वही विकसित भारत देश होगा। हमारे संस्कृत के इस प्रभाव से जो 2047 तक मुझे ऐसा लगता है कि समस्त शिक्षा पद्धति में संस्कृत संस्कृत भाषा के रूप में भले ना प्रवेश करे, लेकिन संस्कृत के जो विचार हैं, संस्कृत का जो चिंतन है, वह हिंदी भाषा के रूप में, बंगला भाषा के रूप में, उड़िया भाषा के रूप में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा के रूप में हमारे साहित्य में प्रवेश कर जाएगा। निश्चित रूप से संस्कृत का जो ज्ञान विज्ञान है, वह संस्कृत मुखेन और अन्य भाषा मुखेन हमारे जीवन में उसका अवश्य अवतरण होगा।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भविष्य का भारत तभी आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बन सकेगा जब अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक दृष्टि के साथ आत्मसात करे। माननीय कुलगुरु जी, आपने अत्यंत सरल, सारगर्भित और दूरदर्शी विचारों के माध्यम से संस्कृत दिवस के ऐतिहासिक महत्व, भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक प्रासंगिकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सांस्कृतिक कूटनीति, युवा शक्ति तथा विकसित भारत 2047 के संदर्भ में संस्कृत की भूमिका पर अत्यंत प्रेरणादायक दृष्टिकोण हम सभी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है। निसंदेह आपके विचार हमें यह संदेश देते हैं कि संस्कृत केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण की एक सशक्त आधारशिला है। हम आपके अमूल्य समय, प्रेरक विचारों और इस सार्थक संवाद के लिए हार्दिक आभार व्यक्त

0: करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर अभी आप महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र से ये विशेष भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। गीत संगीत की दुनिया में श्रोताओं कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कहानी जितनी याद रहती है उतने ही याद रह जाते हैं उनके गीत। और जब बात हो 1965 की फिल्म काजल की, तो संगीतकार रवि और गीतकार साहिर लुधियानवी की जोड़ी ने इसके गीतों में प्रेम, रिश्तों और संवेदनाओं, जीवन के अनेक रंगों को इतनी खूबसूरती से पिरोया कि आज भी ये गीत अपनी ताजगी बनाए हुए हैं। तो आइए आज के एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म काजल के तीन अलग अलग रंगों वाले गीत और साथ साथ जानते हैं इस फिल्म की कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव। सबसे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रुतो, फिल्म की कहानी शुरू होती है रानी माँ के परिवार से। उनके यहाँ काम करने वाला मुनीम अपने बेटे कौशल और बेटी माधवी के साथ रहता है। मुनीम के निधन के बाद रानी माँ कौशल और माधवी को अपने ही बच्चों की तरह पालती है। उनके अपने बेटे राजेश के साथ भी दोनों का रिश्ता भाई बहन जैसा होता है। राजेश बड़ा होता है और उसकी मुलाकात भानु से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन कहानी तब तक अचानक दर्दनाक मोड़ ले लेती है जब एक नौका दुर्घटना में कौशल की मृत्यु हो जाती है। एक भाई का चले जाना और पीछे रह जाती है उसकी बहन माधवी की दुनिया में एक गहरी रिक्तता। कभी हंसी से भरा घर अचानक स्मृतियों का घर बन जाता है। यही तो है जिंदगी, कभी पायल की झुनझुन, कभी आंखों की नमी, कभी मिलन की खुशी तो कभी बिछुड़ने का दर्द। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आशा भोसले की आवाज में घुंघरियों की यही रुझुन काजल की कहानी के उस संसार में हमें ले जाती है जहां रिश्ते केवल खून के नहीं बल्कि अपनत्व और विश्वास के भी हैं।

श्रोतो, राजेश कौशल की मृत्यु के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। दूसरी ओर समय आगे बढ़ता है और राजेश का विवाह भानु से हो जाता है, लेकिन विवाह के बाद घर के रिश्तों में पहले जैसी सहजता नहीं रहती। भानु को माधवी का घर में रहना पसंद नहीं आता। धीरे धीरे गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं और माधवी स्वयं को उस घर में अकेला महसूस करने लगती है, जिसे कभी उसे अपना घर समझा था। ऐसे समय में जीवन में किसी अपने का होना कितना जरूरी होता है। कभी कोई रिश्ता हमें संभाल लेता है, कभी किसी की आवाज जीवन में उम्मीद बनकर उतरती है। और अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसमें प्रेम की तलाश की किसी अपने के साथ चाहत व्यक्त करती है।

श्रोतो, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, प्रेम तो किसी के होने की उस अनुभूति का नाम है जो कठिन से कठिन समय में भी मन को सहारा देती है। लेकिन काजल की कहानी में माधवी के लिए मुश्किलें कम नहीं होती। भानु की गलतफहमियां

हद तक बढ़ जाती हैं कि माधवी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। अपने ही घर में स्वयं को असहाय और अपमानित महसूस करती है माधवी। जब दुख सीमा पार कर जाता है तो इंसान कभी कभी अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन श्रोताओं, हर विदाई के पीछे एक कहानी होती है। किसी बहन की विदाई हो, किसी बेटी की विदाई हो, या किसी अपने से बिछुड़ने का क्षण हो, कुछ आंखें कुछ कहती हैं और होठ चुप रह जाते हैं। और काजल में माधवी की जिंदगी में भी ऐसे ही भावनात्मक मोड़ से गुजरती है। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपने सुना काजल फिल्म के कुछ गाने। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है

0: कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
5: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
6: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
7: भारत सरकार ने जो योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप

0: साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की
1: कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
2: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी UGCnet.NTA.NIC.IN पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
5: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी

नवरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रंग जो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, रंग जो भावनाओं को स्वर देते हैं, और रंग जो कभी गीत बनकर दिल में उतर जाते हैं। किसी की फरमाइश में है प्यार का रंग, किसी के संदेश में दोस्ती की मिठास, कहीं यादों की खुशबू है तो कहीं रिश्तों की गर्माहट। श्रोताओ, आज के नवरंग कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके भेजे हुए संदेशों और आपकी पसंद के चुनिंदा फिल्मी गीत। आपकी फरमाइशें ही इस कार्यक्रम की धड़कन है श्रोताओ, और आपके संदेश ही इसके रंग। तो तैयार हो जाइए यादों की गलियों में घूमने के लिए, कुछ खूबसूरत लम्हों को फिर से जीने के लिए, और संगीत के उन रंगों में रंग जाने के लिए जो कभी पुराने नहीं होते। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अरविंद कुमार। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला। गीत गाया पत्थरों ने फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में गीत गाया पत्थरों ने, फिल्म का गीत। भरत व्यास की रचना थी, रामलाल का संगीत निर्देशन था। और इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुआ धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से, चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कृष्टि पटवा का। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि राजेश और शीतल राजेश। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गहवाड़कर, रही सरिता गहवाड़कर, प्रतिणा सिद्धांत, प्रिंस एकांश और टुक टुक गहवाड़कर। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अर्चा नबान और इनके परिवारीजन। सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज अनदीम, शमीम, ममता। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और चोड़ी लाइन मुंगेली से छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेश, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का संदेश में मिला है। डाबकी अकोला महाराष्ट्र से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। टाउनशिप 68 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला चीनू आसमा, दीपक श्याम अनुश्री और इनके परिवारीजन। कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सनाज, नाजिया, इब्राहिम सद्दाम। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनसुईया, पवन राजे जाधव, मंगेश शिंगले, संध्या और सुराज विराज। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का संदेश में मिला है। बिजनौर से मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, निशा और विशाल। फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल भारती।

बघेल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से इन्होंने संदेश भेजा है। और हमारे अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम अफजल, निप्पी साहनी, सुनीता साहनी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से जुड़े हैं टेरी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। हिसार हरियाणा से सज्जन जागणा, राजबाला और कार्तिक और वेदांश।

हेमलता और जसपीर जसपाल सिंह की आवाज़ों में कौन दिशा में है लेके चला रे बटोहिया, ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म नदिया के पार से। और अब कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों में, मदर इंडिया फिल्म से शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।

कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी कमला बोस का ख्याल गायन। राग है रागेश्वरी, तबले पर संगति की है गुलाम साबिर ने और सारंगी पर हरिबाबू कौशिक ने। आइए सुनते हैं विदुषी कमला बोस का ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे कमला बोस का ख्याल गायन, राग था रागेश्वरी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेल्थिन कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया।